सगले साज करत जगदीसै, ठगन हार अनठगदा ठगै, बिन मखर फिर उठ लागै। संत सभा मिल करो बखियान, सिमरत शास्त्र वेद पुराण, ब्रह्म विचार विचारे कोए, नानक तां की परम गत होए। राम कली महला पंजवा, जो तिस पावै सो थिया, सदा सदा हर की शरण आई, प्रभिन नाही आन बिया। रहाओ पुत्र कलत्र लखमी दिसै, इनमें किछु ना संग लिया, बिखैठ गौरी खाए भुलाना, माया मंदिर त्याग गया। निंदा कर कर बहुत विगुता, गर्भ जोन में किरत पया, पुरब कमाने छोड़ै नाही, जम दूत करा स्यो महा पया। बोले झूठ कमावे अवरा, त्रिसना बुझे बहुत हया, असाद रोग उपजया संत दुखन, देह बिनासी महा खया। जिन्हें निवाजे तिन्हीं साजे, आपे कीने संत जया, नानक दास कंठ लाए राखे, कर कृपा पार ब्रह्मया। राम कली महला पंजवा, ऐसा पूरा गुरदेव सहाई, जाका सिमरन बिरथा ना जाई। रहाओ दर्शन पेख धोए निहाल, जाकी तूर काटे जमजाल, चरण कमल बसे मेरे मन के, कार्य सवारे सगले तन के, जाके मस्तक रखे हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, पतो धारण कृपा निधान, सदा सदा जाइए कुर्बान। निर्मल मंत दे जिस दान, तजै विकार बिनसे अभमान, एक तिहाइए साध कै संग, पाप बिनासे नाम कै रंग। गुर परमेसर सगल निवास, घट घट रव रया गुणतास, दर्श देह तारो प्रभ्यास, नित नानक चितवै सच अरदास। राग राम कली महला पंजवा, घर दूजा दुपदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। गावो राम के गुण गीत, नाम जपत परम सुख पाइए, आवा गौण मिटै मेरे मीत। रहाओ गुण गावत होवत प्रगास, चरण कमल में होए निवास, संत संगत मैं होए उधार, नानक पाव जल उतरस पार। राम कली महला पंजवा, गुरपूरा मेरा गुरपूरा, राम नाम जब सदा सुहेले, सगल बिना से रोग कूरा। रहाओ एक अरादो साचा सोए, जाकी शरण सदा सुख होए, नींद सुहेली नाम की लागी भूख, हर सिमरत बिन सह सब दुख। सहज आनंद करो मेरे भाई, गुरपूरै सब चिंत मिटाई, आठ पहर प्रभ का जप जाप, नानक राखा होवा आप। राग राम कली महला पंजवा, पड़ताल करती जा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। नर नर है नमस्कारं, जलन थलन बस गगन।

बूझ ज्ञानी सतगुर की टेकै गुरमुख विरली एको जानिया आवन जाना मेट समाणिया जिनकै हृदय एकंकार सर्वगुणी साचा विचार गुर कै पाणे कर्म कमावै नानक साचे साच समावै। आराम कली महला पहला हठ निग्रह कर काया छिजै वरद तपन कर मन नहीं पीजै राम नाम सर अवरना पूजै गुर से मना हर जन संग कीजै जम जन दार जोहे नहीं साकै सरपन डस ना सकै हर कारस पीजै रहाओ वाद पड़े रागी जग पीजै त्रैगुण बिखिया जन्म मरीजै राम नाम बिन दुख सहीजै चारस पवन सिंहासन पीजै न्योली कर्म खटकर्म करीजै राम नाम बिन बिरथा सास लीजै अंतर पंच अगन क्यों तीरज तीजै अंतर चोर क्यों साध रही जै गुरमुख होए काया गड़ली जै अंतर मैल तीर्थ परमी जै मन नहीं सूचा क्या सोच करी जै किरत पया दोष का कौ दी जै आना खाहे देही दुख दी जै बिन गुर ज्ञान तृप्त नहीं थी जै मनमुख जन्म जन्म मरी जै सदगुर पूछ संगत जन की

की जय। राम कली महला पहला, अंतर उत्पुज अवर ना कोई, जो कही ऐसो प्रवते होई, जुगे जुगंतर साहिब साहि सोई, उत्पुत परलो अवर ना कोई। ऐसा मेरा ठाकर गहर गंभीर, जिन जपया तनि सुख पाया, हर कै नाम ना लगे जंपीर। रहाओ नाम रतन हीरा निर्मोल, साचा साहेब अमरिया तोल, जेवा सूची साचा बोल, कर दर साचा नाही रोल, एक बन में बैसे डूगरिया स्थान, नाम विसार पचाय अवमान, नाम बिना क्या ज्ञान ध्यान, गुरमुख पावे दरगह मान, हठ अहंकार करे नहीं पावे, पाठ पढ़े ले लोक सुनावे, तीर्थ परमस ब्याद ना जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे, जतन करे बिंद किवे ना रहाई, मनुआ डोले नर के पाई, जंपर बांधे लह सजाई, बिन नावे जियो जल बल जाई, सिद्ध साधक केते मुन देवा, हठ निग्रह ना तृप्तावे पेवा, शब्द विचार गह गुरसेवा, मन तन निर्मल अवमान्या पेवा, कर्म मिलाए पावे सच नाओ, तुम शरणागत रहो स्वभाओ, तुम ते उपजो भक्ति पाओ, जप जापो गुरमुख हर नाओ। हाँ मैं गर्व जाए मन पीना, झूठ ना पावस पाखंड कीना, बिन गुर शब्द नहीं कर बार, नानक गुरमुख तत् विचार। राम कली महला पहला, ज्यो आया त्यों जावे बौरे, ज्यो जन्मे त्यों मरण पया, ज्यो रस भोग किए तेता दुख लागे, नाम विसार पव जल पाया, तन तन देख तो गर्भ गया, कनक काम निसो हेत वधाए, हे की नाम विसार है परम गया। रहाओ जत सत संजम सील ना रखिया, प्रेत पिंजर में काष्ट पाया, पुन दान इस ना ना संयम, साध संगत बिन बाज जया, लालच लागे नाम विसारे हो, आवत जावत जन्म गया, जा जमत आए केस गहे मारे।

सुख संपत को आवत देख सागत मानो अवमान पाया जिसका हो तान तान सो फिर ले वै अंतर सहसा दुख पाया अंतकाल के साथ ना चल जो दिस है सब तिस है माया आदि पुरख परंपर सो प्रभ हर नाम हृदय लै पार पाया मुए कौ रोवै एक सह सुनावै पैसा गिर असराल पाया देख कुटुंब माया गृह मंदर सागत जंजाल पराल पाया जाए आए ता तने पठाए चाले तने बुलाए लया जो कुछ करना सो कर रहे आ बख्शन हार है बख्श लया जिने हो चाखिया राम रसायण तिन की संगत खोज पाया रिद सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया मुक्त पदार्थ शरण पाया दुख सुख गुरमुख सम कर जाना हर सोग ते ब्रगत भया आप मार गुरमुख हर पाए नानक सहि समाए लया आराम कली दखनी महला पहला जत सत संजम साज दृढ़ाया सा शब्द रस लीना मेरा गुरदयाल सदा रंग लीना अहनस रह एक लिव लागी साचे देख पतीना रहाओ रह गगनपुर दृष्ट समय सुर अनहद शब्द रंगीना सत बंद कुपीन भरपुर लीना जिहवा रंग रसीना मिले गुर साचे जिन रच राचे किरत विचार पतीना एक मैं सर्व सर्व मैं एका एह सतगुर देख दिखाई जिन की ए खंड मंडल ब्रह्मंडा सो प्रभ लिखन ना जाई दीपक ते दीपक प्रगासिया त्रिपवन ज्योत दिखाई सच्चा तखत सच महली बैठे निरपव ताड़ी लाई मोहे गया बैरागी जोगी कट कट किंगरी वाई नानक शरण प्रभु की छूटे सतगुर सच सिखाई राम कली महला पहला औहठ हस्त मड़ी कर छाया तरन गगन कल तारी गुरमुख केती शब्द उधारी संतो रहाओ ममता मार हूं मैं सुख त्रिपवन जो तुम्हारी मनसा मार मने मैं राख सतगुर शब्द विचारी सिंगी सुरत अनाहद वाजै घट घट जो तुम्हारी पर पंच बेण तही मन राखिया ब्रह्म अगर पर जारी पंच तत् मिल अहनस दीपक निर्मल ज्योत अपारी रव सस लौके होतन किंगरी वाजै शब्द निरारी शिव नगरी मैं आसन औदू अलख अगम्य पारी काया नगरी हो मन राजा पंच वसै विचारी शब्द रवै आसन कर राजा अदल करे गुणकारी काल बिकाल कहे कहे बपरे जीवत मुआ मन मारी ब्रह्मा विष्णु महेश एक मूर्त आपे करता कारी काया सोध तरै पव सागर आत्म तत् विचारी गुरसेवा तेसदा सुख पाया अंतर शब्द रव्या गुणकारी आपे मेल लय गुणदाता हों मैं तृष्णा मारी त्रै गुण मेटे चौथे वरतै एहा भगत निरारी गुरमुख जोग शब्द आत्म चीनै हृदय एक मुरारी मनुआ अस्त्र शब्दे राता एहा करनी सारी वेद बाद ना पाखंड औदू गुरमुख शब्द विचारी गुरमुख जो कमावै औदू जत सत शब्द विचारी शब्द मरै मन मारे औदू जोग जुगत विचारी माया मोह पवजल है अवदू शब्द तरै कुल तारी शब्द सूर जुगचारे उधारे शब्द सूर जुगचारे औदू बाणी भगत विचारी एह मन माया मोया औदू निकसै शब्द विचारी आपे बख्शे मेल मिलाए नानक सरन तुमारी राम कली महला तीजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद
ਸਰਮੈ ਦੀਆ ਮੁੰਦਰਾ ਕੰਨੀ ਪਾਏ ਜੋਗੀ ਖਿੰਥਾ ਕਰ ਤੂੰ ਦਇਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਵਿਭੂਤ ਲਾਏ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਤੀਨ ਪਵਣ ਜਨ ਲਿਆ ਐਸੀ ਕਿੰਗਰੀ ਵਜਾਏ ਜੋਗੀ ਜਿਤ ਕਿੰਗਰੀ ਅਨਹਦ ਵਾਜੈ ਹਰ ਸਿਉ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਏ ਰਹਾਉ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਪਤ ਕਰ ਝੋਲੀ ਜੋਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਭੁਗਤ ਪਾਈ ਧਿਆਨ ਕਾ ਕਰ ਡੰਡਾ ਜੋਗੀ ਸਿੰਘੀ ਸੁਰਤ ਵਜਾਈ ਮਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਆਸਣ ਬੈਸ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਲਪਨਾ ਜਾਈ ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਚੜ੍ਹੈ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਪੱਲੈ ਪਾਈ ਇਤ ਕਿੰਗਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਜੋਗੀ ਨਾ ਸਚ ਪੱਲੈ ਪਾਏ ਇਤ ਕਿੰਗਰੀ ਸਾਂਤ ਨਾ ਆਵੈ ਜੋਗੀ ਅਵਮਾਨ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ

मनसा मार मन सह समाणा बिन रसना उस्तत कराई, लोयन देख रहे बिस्मादी चेता दिष्ट लगाई। अदिष्ट सदा रहे निरालम ज्योति ज्योत में लाई, हाँ गुरसा लाही सदा अपना जिन साची बूझ बुझाई। नानक एक है बेनंती नाम गत पत पाई, राम कली महला तीजा हर की पूजा दुलंब है संतो कहना कछु न जाई। संतो गुरमुख पूरा पाई नामो पूज कराई रहाओ, हर बिन सब किश मैला संतो क्या हो पूज चढ़ाई। हर साचे पावे सा पूजा होवे पाणा मन वसाई, पूजा करे सब लोग संतो मन मुक्ताए ना पाई। शब्द मरे मन निर्मल संतो एह पूजा थाए पाई। पवित्र पावन से जन साचे एक शब्द लिव लाई, बिन नामे होर पूजना होवी परम भुली लोकाई। गुरमुख आप पछाणे संतो राम नाम लिव लाई, आपे निर्मल पूज कराए गुर शब्दी थाए पाई। पूजा करे पर विद नहीं जाने दूजे पाए मल लाई, गुरमुख होवे सो पूजा जाने पाणा मन वसाई। पहाने ते सब सुख पावे संतो अंते नाम सखाई, अपना आपना पछाणे संतो कूड़ करे वड्याई। पाखंड कीने जम नहीं छोड़े लै जासी पत गवाई, जिन अंतर शब्द आप पछाणे गत मित तिन ही पाई। एहो मनुआ सुन समाद लगावै ज्योति ज्योत मिलाई, सुन सुन गुरमुख नाम वखाणे सतसंगत में लाई। गुरमुख गावै आप गवावै दर साचै सोभा पाई, साची बाणी सच वखाणे सच नाम लिव लाई। पै भंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रभ अंत सिखाई, सब किश आपे आप वरतै नानक नाम वड्याई। राम कली महला तीजा हम कुचल कुचील अत अभिमानी, मिल सबदे मैल उतारी संतो गुरमुख नाम निस्तारी। सच्चा नाम वस्या कटे अंतर करतै आप सवारी रहाओ, पारस परसे फिर पारस होए हर जीव अपनी कृपा तारी। एक भेख करे फिर अभिमानी तिन जुए बाजी हारी, एक आंदन भगत करे दिन राती राम नाम उर तारी। आंदन राते सहजे माते सहजे हों मैं मारी, पै बिन भगत ना होई कभी पै पाए भगत सवारी। माया मोह शब्द जलाया ज्ञान तत् बिचारी, आपे आप कराए करता आपे बख्श भंडारी। तिस क्या गुणा का अंत ना पाया हों गावा शब्द विचारी। हर जियो जपी हर जियो सा लाही विचों आप निवारी, नाम पदार्थ गुरते पाया खुट सचे भंडारी। अपनिया भगतां नू आपे तुठा अपनी किरपा कर कल तारी। तिन साचे नाम की सदा भुख लागी गावन शब्द विचारी। जियो पिंड सब किश है तिसका आखण बिख बिचारी, शब्द लगे से जन निस्तरे पौजल पारे उतारी। बिन हर साचे को पार ना पावे बूझे को विचारी, जो तुर लिखिया सोई पाया मिल हर शब्द सवारी। काया कंचन शब्दे राती साचे नाए प्यारी, काया अमृत रही पर पूरे पाइये शब्द विचारी। जो प्रभ खोजे से ही पावे होर फूट मोए हंकारी, बादी बिन सह सेवक सेवै गुर कै हित प्यारी। सो जोगी तत् ज्ञान विचारे हम मैं तृष्णा मारी, सतगुर

अवर न करना जाई, आपे साजे सृष्टि उपाए, सिर सिर धंधा लाई, तिसै श्री वो ता सुख पावो, सतगुर मेल मिलाई। अपना आप यो पाए, अलख न लखना जाई, आपे मारजी वाले आपे, तिसनो तिल ना तुमाई। एक दाते एक मंगते कीते, आपे भगत कराई, सेवड़ भागी जिनी एको जाता, सच्चे रहे समाई। आप स्वरूप से आना आपे, कीमत कहन न जाई, आपे दुख सुख पाए अंतर, आपे परम पुलाई। वड्डा दाता गुरमुख जाता, निगुरी अंध फिरे लोकाई, जिनी चाखिया तिना साध आया, सतगुर बूझ बुझाई। एक ना नामो आप पुलाए, एक ना गुरमुख दे बुझाई, सदा सदा सा लाहो संतो, तिस दी वड्डी वड्याई, तिस बिन अवर न कोई राजा, करत पावस बढ़त बनाई। न्याओ तिसै का है सद साचा, विरले हुक्म मनाई, तिसनो प्राणी सदा त्यावो, जिन गुरमुख बणत बनाई। सतगुर भेटै सो जन सीजै, जिस हिरदय नाम वसाई, सच्चा आप सदा है साचा, बाणी शब्द सुनाई। नानक सुन वेख रया विस्माद, मेरा प्रभ रवया सर्ब थाई। रामकली महला पंजवा, अष्टपदियां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद किन्ही किया परवृत पसारा, किन्ही किया पूजा विस्तारा, किन्ही निवल

सगले उदार, ज्यों पावक संग सीत को नास, ऐसे प्रायतो संत संग बिनास, ज्यों साबनो कापर उज्जल होत, नाम जबतो सब ब्रह्म पौखोत, ज्यों चकवी सूरज की आस, ज्यों चात्रक बूंद की प्यास, ज्यों कुरंक नाद करन समाने, त्यों हर नाम हर जन मने सुखाने, तुमरी कृपा ते लगी प्रीत, दयाल पै ताय आए चीत, दया तारी तिन तारनहार, बंधन ते होई छुटकार, सब थान

राम कली महला पंजवा जी जंत सब पेखिए प्रभ सगल तुम्हारी धारणा एहो मन हर के।

काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बिदारणा। नाम जपत मन निर्मल होवै सुखे सुख गुदारना। भगत सरण जो आवै प्राणी तिस इहां उहां ना हारना। सुख दुख इस मन की बिरथा तुम ही आगे सारना। तू दाता सबना जिया का अपन किया पालना। अनक बार कोट जन ऊपर नानक वन्य वारना। राम कली महला पंजवा अष्टपदी एको अंकार सदगुर प्रसाद। दर्शन पेटत पाप सब नासै हर स्यों दे मिलाई। मेरा गुर परमेश्वर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंते होए सखाई। रहाओ सगल दुख का डेरा पन्ना संत धूर मुखलाई। पतत पुनीत की अखन पीतर अज्ञाना देर वंजाई। करण कारण समर्थ स्वामी नानक ते शरणाई। बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए एक शब्द लिवलाई। अंधकूप बिखिया ते काढ़ियो सात शब्द बने आई। जन्म मरण का सहसा चूका बाहुड़ कतो ना ताई। नाम रसायन एहो मन राता अमृत पी तृपताई। संत संग मिल कीर्तन गाया निचल वसिया जाई। पूरे गुर पूरी मत दीनी हर बिनयान ना पाई। नाम निधान पाया वड भागी नानक नरक ना जाई। काल सियाणप उकतना मेरी पूरे गुरु कमाई। जप तप संजम सुच है सोई आपे करे कराई। पुत्र कलत्र महा बिखिया मैं गुर सच लाए।

साची लवै बिंदे निमाणी, देह निमाणी लवै बाजहो, क्या करे वेचारिया। तुद बाज समर्थ कोय नाही, कृपा कर बनवारिया। एस ना होर थाओ नाही, शब्द लाग सवारिया। कह नानक लवै बाजहो, क्या करे वेचारिया। आनंद आनंद सब को कह, आनंद गुरु ते जानिया। जानिया आनंद सदा गुरते, कृपा करे प्यारिया। कर कृपा किलवे कटे, ज्ञान अंजन सारिया। अंदरों जिनका मुह टुटा, तिनका शब्द सच्चा सवारिया। कह नानक हो आनंद है, आनंद गुरते जानिया। बाबा जिस तू देह सोई जन पावै, पावै ता सो जन देह जिसनो, होर क्या करे विचारिया। एक भरम भूले फिरै दै दिस, एक नाम लाग सवारिया। गुर प्रसादी मन भया निर्मल, जिन्ना पाणा पावै। कह नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावै। आवहो संत प्यारे हो, अकथ की करह कहानी। करह कहानी अकथ केरी, कित द्वारे पाईऐ। तन मन तन सब सौंप गुर को, हुक्म मन्ने पाईऐ। हुक्म मन्यो गुरु केरा, गावो सच्ची बाणी। कह नानक सुनो संतो, कथियो कथ कहानी। ए मन चंचला चतराई किने ना पाया, चतराई ना पाया किने। तू सुन मन मेरिया, एह माया मोहनी जिन एत परम पुलाया। माया ता मोहनी तने कीती, जिन ठगौली पाईया। कुर्बान कीता तिसै विटो, जिन मोह मीठा लाया। कह नानक मन चंचल, चतराई किने ना पाया। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, एहो कुटुंब तू जे देखदा, चलै नाही तेरै नाले। साथ तेरै चलै नाही, तिस नाल क्यों चित लाईऐ। ऐसा कम मूले ना कीचै, जित अंत पछोताईऐ। सतगुरु का उपदेश सुन, तू होवै तेरै नाले। कह नानक मन प्यारे, तू सदा सच संभाले। अगमा गोचरा तेरा अंत ना पाया, अंतो ना पाया किने तेरा। अपना आप तू जान है, जी जंत सब खेल तेरा, क्या को आख वखाण है। आख है ता वेख है, सब तू है जिन जगत्यो पाया। कह नानक तू सदा अगम है, तेरा अंत ना पाया। सुर नर मुन जाने अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया। जी जंत सब तो दे पाए, एक वेख परसन आया। लभ लोभ अहंकार चूका, सतगुरु भला पाया। कह नानक जिसनो आप तुठा, तिन अमृत गुर ते पाया। भगता की चाल निराली, चाला निराली भगता केरी। बिखम मार्ग चलना, लभ लोभ अहंकार ता तृष्णा, बहुत नाही बोलना। खन्यो तिखी वालो निकी, एत मार्ग जाना। गुर प्रसादी जिनी आप तजिया, हर वासना समाणी। कह नानक चाल भगता, जुगो जुग निराली। ज्यो तू चलाए हे, तिव चलें स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे। जिव तू चलाए हे, तिवै चल है जिन्ना मार्ग पावहे। कर कृपा जिन नाम लाए हे, से हर हर सदा त्यावहे। जिसनो कथा सुना हे अपनी, से गुरुद्वारे सुख पावहे। कह नानक सच्चे साहेब, ज्यो पावै तिवै चलावहे। एहो सोहेला शब्द सुहावा, शब्दो सुहावा सदा सोहेला, सतगुरु सुनाया। एहो तिनकै मन वसिया, जिन तुरों लिखिया आया। एक फिरै कनेरे करै गल्ला, गली किने ना पाया। कह नानक शब्द सोहेला, सतगुरु सुनाया। पवित होए सेज ना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया। पवित माता पिता कुटुंब सहित स्यों, पवित संगत सवाइया। कहिंदे पवित सुन दे पवित, से पवित जिनी मन वसाया।
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ। ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ ਵਿਣ ਸਹਿਜੈ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਹਿ ਜਾਏ ਸਹਿਸਾ ਕਿਤੈ ਸੰਜਮ ਰਹੇ ਕਰਮ ਕੁਮਾਏ। ਸਹਿ ਸਹਿ ਜਿਉ ਮਲੀਨ ਹੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ, ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ ਹਰ ਸਿਉ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ ਇਹੋ ਸਹਿਸਾ ਇਹ ਵਜਾ।

राम कली सद एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोए भगत वछलते होलोए जियो गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोए जियो अवरो ना जाने शब्द गुर कै एक नाम ते आवे प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावे आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया जग अमरिया टालिया तोल ठाकर भगत ते हर पाया हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रपाह जियो सतगुर करे हर पह बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो पैज रखो हर जना केरी हर देहो नाम निरंजनो अंत चलदिया होए बेली जमदूत काल निखंजनो सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो हर तार कृपा सतगुर मिलाया तन तन कह साबाह जियो मेरे सिख सुनो पुत पाई हो मेरा हर पाणा आओ मैं पास जियो हर पाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाणा पावे आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गल मिलावे तुसी पुत पाई परवार मेरा मन वेखो कर निर्जाह जियो तुर लिखिया प्रवाणा फिरै नाही गुर जाए हर प्रपाह जियो सतगुर पाणै अपने बह परवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोग सी सो मैं मूल ना पाया मित पैजै मित बिकसै जिस मित की पैज पावे तुसी विचार देखो पुत पाई हर सतगुरु पैनावे सतगुरु प्रतख होंदै बहराज आप टिकाया सब सिख बंदप पुत पाई रामदास पैरी पाया अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो केसो गोपाल पंड सद्यो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबाण हर रंग गुर पावे पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल हर सर पावे हर पाया सतगुर बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जियो रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो सतगुर पुरख जे बोलिया गुर सिखा मन लई रजाए जियो मोहरी पुत सनमुख होया रामदास पैरी पाए जियो सब पवै पैरी सतगुरु केरी जिथे गुरु आप रखिया कोई कर बखीली निवै नाही फिर सतगुरु आण निवाया हर गुरह पाणा दी वडियाई तुर लिखिया लेख रजाए जियो कह सुंदर सुनो संतो सब जगत पैरी पाए जियो रामकली महला पंजवा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोए अड़ा मेरा साजनड़ा जानी अड़ा हर जानी अड़ा नैन अलोए अड़ा हर जानी अड़ा नैन अलोया कटकट सोया अत अमृत प्रे गूड़ा नाल होवंदा लहना सकंदा स्वाओ न जाने मूड़ा माया मदमाता होची बाता मिलन न जाई परम तड़ा कहो नानक गुरबिन नहीं सूजै हर साजन सब कह निकट खड़ा गोबिंदा मेरे गोबिंदा प्राण आधारा मेरे गोबिंदा कृपाला मेरे कृपाला दान दा तारा मेरे कृपाला दान दा तारा प्रापारा कट कट अंतर सोहने आ एक दासी तारी सबल पसारी जी जंत लै मोहने आ जिसनो राखै सो सच पाखै गुर का शब्द भी

महागर्भ मुठिया जलबाज मछली तड़फड़ावे संग माया रुठिया। कर पाप जोनी पै पीत होई दे सासन जाम जियो बिनवंत नानक ओढ़ तेरी राख पूर्ण काम जियो। सलोक सरदा लागी संग प्रीत मैं एक तिल रहन ना जाए मन तन अंतर रव रहे नानक सह सुभाए। कर गैलीनी सजन जन्म जन्म के मीत चरण दासी कर लई नानक प्रभित चीत। शंत रुत बरस सुहेलिया सावन भादवे आनंद जियो कण उन्नम बुठे जल थल पूरिया मकरंद जियो। प्रभ पूर रहया सर्ब ठाई हर नाम नवनित गृह परे सिमर स्वामी अंतर जामी कुल समूहा सब तरे। प्रेरंग जागे ने शिदर लागे किरपाल सद बख्शेंद जियो बिनवंत नानक हर कंत पाया सदा मन पावंद जियो। सलोक आस प्यासी मैं फिराऊं कब पेखा गोपाल है कोई साजन संत जन नानक प्रभ मिलनहार। बिन मिल बे सांत ना उपजै तिल पल रहन ना जाए हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए। शंत रुत सर्द अडंबरो असु कतके हर प्याह जियो खोजंती दर्शन फिरत कब मिलिए गुणताह जियो। बिनकंत प्यारे ने सूख सारे हार कंगण त्रिग बना सुंदर सुजान चतर बेती सास बिन जैसे तना। ईत ओत दह दिस्या लोकन मन मिलन की प्रभ प्यास जियो बिनवंत नानक तार कृपा मिलो प्रभ गुणताह जियो। सलोक जलन बुझी शीतल पय मन तन उपजी सांत नानक प्रभ पूर्ण मिले द्वितीया बिनसी प्रांत। साध पठाए आप हार हम तुमते नाहीं दूर नानक भ्रम पै मिट गए रमन राम भरपूर। शंत रुत सिसियर शीतल हर प्रगटे मंगर पोहे जियो जलन बुझी दर्श पाया बिन से माया त्रोह जियो। सब काम पूरे मिल हजूरे हर चरण सेवक सेवया हार डोर सिंगार सब रस गुण गाओ लाखा पेवया। पाओ भगत गोविंद बांशत जमना साकै जोहे जियो बिनवंत नानक प्रभ आप मेली तहना प्रेम बिश हो जियो। सलोक हर तन पाया सोहागणी डोलत नाही चीत संत संजोगी नानका गृह प्रगटे प्रभ मीत। नाद बिनोद आनंद कोड प्रे प्रीतम संग बने मन बाइंत फल पाया हर नानक नाम पने।

ओंकार शब्द उदरे ओंकार गुरमुख तरे ओ नम अखर सुनो विचार ओ नम अखर त्रिपवन सार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाओ सस्य सब जग सहज उपाया तीन पवन एक ज्योति गुरमुख वस प्राप्त हो वै चुन लै मानक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै सा समाले बिन साचे जग काचा तदै धर्म धरे धर्मापुर गुणकारी मन तीरा तदै तूल पड़ै मुख मस्तक कंचन पहे मनूरा तन तरनी तर आप जोनी तोल बोल सच पूरा करते की मित करता जाने कह जाने गुरसूरा ज्ञान गवाया दूजा पाया गर्भ गले बिख खाया गुरस गीत बाद नहीं पावे सुनिए गहर गंभीर गवाया गुर सच कहया अमृत लहया मंतन साज सुखाया आपे गुरमुख आपे देवे आपे अमृत पी आया एको एक कह सब कोई हम मैं गर्भ व्यापै अंतर बाहर एक पछाणे इउ कर महल सियापै प्रभ नेड़ै हर दूर न जान हो एको सृष्ट सवाई एक अंकार अवर नहीं दूजा नानक एक समाई इस करते कहो क्यों गह राखो अफरियो तुल्यो न जाई माया के देवाने प्राणी झूठ गौरी पाई लब लोभ मोहताज विगूते इब तब फिर पछताई एक सिरे वै ता गत मित पावै आवन जान रहाई एक आचार रंग एक रूप पौन पानी अग्नि असरूप एको पवर पवै तिहो लोए एको बूझै सूझै पत होए ज्ञान ध्यान ले समसर रह गुरमुख एक विरला कोल है जिसनो दे कृपा ते सुख पाए गुरु द्वारे आग सुनाए ऊरम तूरम ज्योत उजाला तीन पवन मैं गुर गोपाला ऊग व्या असरूप दिखावै कर कृपा अपने कर आवै ऊन बरसै निजर तारा उत्तम शब्द सवारण हारा इस एक का जाने पे ओ आपे करता आपे दे उगवै सूर असर संघार है उच्चो देख शब्द विचार है ऊपर आद अंत तिहो लोए आपे करे कथै सुने सोए ओहो विधाता मन तन दे ओहो विधाता मन मुख सोए प्रभ जग जीवन अवर ना कोए नानक नाम रते पत होए राजन राम रवै हितकार रण में लूजै मनुआ मार राधनंत रह रंग राता तीन पवन जुग चारे जाता जिन जाता सो तिसी जेहा अत निरमायल सिज सेहा रैसी राम हृदय पाए अंतर शब्द साच लिवलाए रोस ना कीजै अमृत पीजै रहन नहीं संसारे राजे राय रंक नहीं रहना।

चेतन नित नीत चिंतत ही दिशा सब कोए, चेता एक तही सुभोए चित वसै राच्य हर नाए, मुक्त भया पत स्यों कर जाए। छीजै देह खुलै एक गंड, छे अन देखो जगहंड, तू पिशाब जे सम कर जाना, बंधन काट मुक्त कर आना। छाया छूछी जगत पुलाना, लिखिया किरत तुरे परवाना, छीजै जोबन जरुआ सिरकाल, काया छीजै पई सिवाल। जापै आप प्रभु त्यो लोए, जुग जुग दाता अवर ना कोए, ज्यो पावै त्यो राखै राख, जस जाचौ देवै पत साख। जागत जाग रहा तुद पावा, जा तू मेलै ता तुझै समावा, जय जयकार जपो जगदीश, गुरमत मिलिया बीसा कीस। चख बोलन क्या जग स्यों वाद, चूर मरै देखै प्रमाद, जन्म मुए नहीं जीवन आसा, आए चले पहे आस निरासा।

हरी डोलत डोलत हे सखी फाटे चीर सिंगार डाहपन तन सुख नहीं बिन डर बिंठी डार डरप मुई कर अपने डीठी कंत सुजान डर राख्या गुरे अपने निरपव नाम वखान डूंगर वास तिखा कणी जब देखा नहीं दूर तिखा निवारी शब्द मानो अमृत पिया भरपूर देह देह आखे सब कोई जय पावे तै दे गुरु द्वारे देवसी तिखा निवारे सोए टंडोल टंडोलत टूंडत हाँ फिरी टह टह पमन करार पारे टहते टह पै हौले निकसे पार अमरा जाची।

जिन नाम दिया तिस सेव सा तिस बलहारै जाओ, जो उसारे सो ढांसी तिस बिन अवर ना कोए, गुर प्रसादी ते संभला तां तन दुख ना होए, हणा को मे

एव छूटै फिर फास ना पाए, बीरा बीरा कर रही बीर पै बैराए। बीर चले कर अपने बहन बरै जल जाए, बाबुल कह कर बेटड़ी बाली बालै ने, जे लोड़ै वर कमनी सतगुर सेवै ते है।

पाई। वर्ण भेख असरूप ना जापी, क्यों कर जप साचा, नानक नाम रते बैरागी। इब तप साचो साचा, हिरदा देह न होती औदू, तव मन सुन रह बैरागी। नाभ कमल अस्तंभ ना हो तो, ता निज घर बसतो पवन अनुरागी। रूप ना रेखिया जात ना होती, तव अकलीन रहतो शब्द सोसार। गौन गगन जब तब ना होतो, त्रिभवन ज्योत आपे निरंकार। वर्ण पेख असरूप सो एको, एको शब्द विडाणी। साच बिना सूचा को नाही, नानक कथ कहानी। कित कित बिद जग उपजै पुरखा, कित कित दुख बिन सजाई। हाँ मैं विच जग उपजै पुरखा, नाम विसरिया दुख पाई। गुरमुख होवै सो ज्ञान तत् विचारै, हाँ मैं शब्द जलाए। तन मन निर्मल निर्मल बाणी, सच रह समाए। नामे नाम रहे बैरागी, साच रखिया उरतारे। नानक बिन नामै जोग कदे ना होवै, देखो हृदय विचारे। गुरमुख साच शब्द विचारे कोए, गुरमुख सच बाणी प्रगट होए। गुरमुख मन पीजै विरला बूजै कोए, गुरमुख निज कर वासा होए। गुरमुख जोगी जुगत पछाणै, गुरमुख नानक एको जाणै। बिन सतगुर सेवे जोग ना होई, बिन सतगुर भेटे मुक्त ना कोई। बिन सतगुर भेटे नाम पाया ना जाए, बिन सतगुर भेटे महा दुख पाए। बिन सतगुर भेटे महा गर्भ गुबार, नानक बिन गुरमुआ जन्म हार। गुरमुख मन जीता हम मैं मार, गुरमुख साच रखिया अवतार। गुरमुख जग जीता जमकाल मार बिदार, गुरमुख डर गए नाया वैहार। गुरमुख मेल मिलाए सो जाने, नानक गुरमुख शब्द पछाणै। शब्द का

अज्ञान का भ्रम कटी है ज्ञान प्राप्त होए, नानक एको नदरी आया जै देखा तै सोए पौड़ी, सच्चे तख्त रचाया बैसण कौ जाई, सब किश आपे आप है गुर शब्द सुनाई, आपे कुदरत साजियां नू कर महल सराई, चंद सूरज दोए चानने पूरी बणत बनाई, आपे वेखै सुने आप गुर शब्द ते आई, वाह वाह।

अभ्यागते है ना आखिया न जे पर कर भोजन करे न उदरे कारण अपने बहले पे करे न। अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौण करे न पाल लहन सौ अपना निज कर रहन करे न। पौड़ी अंबर तरत विछोड़िया न विच सच्चा असराओ कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ सब सच्चा हुक्म वरतदा गुरमुख सच समाओ। सच्चा आप तख्त सच्चा बह सच्चा करे न्याओ सब सचो सच वरतदा गुरमुख लख लखाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला।

रैन आयर मह सब किश है कर्मी पल्ले पाए नानक नौ निद पाई है जे चले तसैर जाए महला तीजा सहजे सतगुर ना सेवियो विच होमै जन्म बिनास रसना हरसना चखियो कमला होयो परगास बिख खादी मन मुख मुआ माया मोहे विनास इक सहर के नाम विण त्रिग जीवन त्रिगवास जा आपे नदर करे प्रभ सच्चा ता होवै दसन दास ता अंदन सेवा करे सतगुरु की कबे न छोड़ै पास ज्यों जल मैं कमल अलिपतो वरतै त्यों विचे ग्रह उदास जन नानक करे कराया सबको ज्यों पावै तिवहार गुणतास पौड़ी छत्ती जोग वारसा आपे गणत कीनी आपे सिरट सब साजियां नो आप मत दीनी सिमरत सास्त साजियां पाप उन गणत गणीनी जिस बुझाए सो बुझसी सच्चे शब्द पतीनी सब आपे आप वरतदा आपे बख्श मिलाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई सलोक महला।

करै पुन दान का करे शरीर सो गृही गंगा का नीर। बोले ईश्वर सत स्वरूप परम तंत में रेख न रूप महला पहला। सो अवदूती जो तूपै आप पिखिया पूजन करै संताप। औहठ पटन में पिखिया करै सो अवदूती शिवपुर चढ़ै। बोले गोरख सत स्वरूप परम तंत में रेख न रूप महला पहला। सो उदासी जे पाले उदास अर्ध उर्ध करे निरंजन वास। चंद सूरज की

बोले चरपट सत स्वरूप परम तंत मैं रेख न रूप महला पहला सो बैरागी जे उल्टे ब्रह्म गगन मंडल मैं रूपे थम अहन से अंतर रहते आन ते बैरागी सत समान। बोले पार्थर सत स्वरूप परम तंत मैं रेख न रूप महला पहला क्यों मरे मंदा क्यों जीवे जुगत कन पड़ाए क्या खाजे भुगत आस्त नास्त एको नाओ कौन सो अखर जित रह आओ धूप छाव जे सम

निरंकार जो रहे समाए, काहे पीखिया मंगण जाए। पौड़ी हर मंदिर सोई आखिया, जिथों हर जाता मानस देहे गुरबचनी पाया। सब आत्म राम पछाता, बाहर मूल ना खोजी है कर माहे विधाता। मन मुख हर मंदिर की सार ना जाननी, तिन्नी जन्म गवाता। सब मैं एक वर्तदा गुर शब्दी पाया जाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा, मूर्ख होवै सो सुने। मूर्ख का कहना, मूर्ख के क्या लखण है, क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओहो जे मुग्ध है अहंकारे मरना। एतक माने सदा दुख, दुखी मैं रहना। अत प्यारा पवै खूहे क्यों संयम करना। गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना। हर नाम जपै आप उदरे ओस पिछे डुबदे पी तरना। नानक जो तिस पावै सो करे, जो दे सो सहना। महला पहला नानक या खैरे मना, सुनिए सिख सही। लेखा रब मंगेसिया, बैठा कड वही। तलबा पवसन या किया, बाकी जना रही। अजराइल फरेस्ता होसी आए तई, आवन जान न सुजई। पीड़ी गली फही, कूड़ ने खुट्टे नानका, ओड़क सच रही। पौड़ी हर का सब शरीर है, हर रवर या सब आपै। हर की कीमत ना पवै, किश कहण ना जापै। गुर प्रसादी सालाही है, हर भक्ति रापै। सब मंत्र हरिया होया, हंकार गवापै। सब किश हर का खेल है, गुरमुख किसे बुझाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला, सहंसर दान दे इंद्र रोवाया। परशुराम रोवै घर आया, अजय सो रोवै पीखिया खाए। ऐसी दरगह मिले सजाए, रोवै राम निकाला पया। सीता लखमण विछड़ गया, रोवै दैसर लंक गवाए। जिन सीता आंदी डौरू वाए, रोवै पांडव पए मजूर। जिनकै स्वामी रहत है दूर, रोवै जन्मे जा खोए गया। एकी कारण पापी पया, रोवै शेख मसाइक पीर। अंतकाल मत लागे पीड़, रोवै राजे कन पड़ाए। कर कर मांगे पीखिया जाए, रोवै किरपन संचय तन जाए। पंडित रोवै ज्ञान गवाए, बाली रोवै नाहे पतार। नानक दुखिया सब संसार, मन्ने नाओ सोई जन जाए। औरी कर्म ना लेखै लाए, महला दूजा। जप तप सब किश मन्ने, अवरकारा सब बाद। नानक मन्या मन्नी, बुझिए गुर प्रसाद। पौड़ी काया हंस तुर मेल, करतै लिख पाया। सब मैं गुप्त वर्तदा, गुरमुख प्रगटाया। गुण गावै गुण उच्चरै, गुण महे समाया। सच्ची बाणी सच है, सच मेल मिलाया। सब किश आप

रामकली की वार महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला पंजवां जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। हर नामो मंत्र दरड़ाएंदा कटे हों मैं रोग नानक सतगुर तिना मिलाया जिन्ना तुरे पया संजोग। महला पंजवां एक सज्जन सब सज्जना एक वैरी सब वाद गुरपूरै देखा लिया विणना मैं सब बाद। साकत दुर्जन परमिया जो लगे दूजे साध जन नानक है प्रभु जिया गुर सतगुर कै प्रसाद। पौड़ी थटन हारे थाट आपे ही थटिया आपे पूरा साहो आपे ही खटिया आपे करपा सार आपे रंग रटिया कुदरत कीमना पाए अलख ब्रह्मटिया। अगम अथाह बेअंत परै प्रटिया आपे वड पात साहो आप वजी रटिया। कोई न जाने कीम केवड मटिया सच्चा साहब आप गुरमुख प्रगटिया। सलोक महला पंजवां सुन सज्जन प्रीतम मेरे आ मैं सतगुर देहो देखाल हाँ तिस सेवी हाँ तिस देवा मन अपना नित हृदय रखा समाल। एकस सतगुर बाहरा त्रिक जीवन संसार जन नानक सतगुर तिना मिलायो।

कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो जो मिले प्रीतम मोहे, गुरपुरे में लाया जत देखा तत सोए, जन नानक सो प्रभ सेवया तिस जेवड़ियावर ना कोए पौड़ी। देवन हार दा तार कित मुख सालाही है, जिस रखे कृपा तार रिजक समाही है, कोई न किस ही वस सबना एक तार, पाले बालक वांग देके आप कर, करदा अनंत विनोद किशु ना जानी है, सर्वतार समरथ हों तिस कुर्बानी है। गाइए रात दिनंत गावन जोगया, जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगया। सलोक महला पंजवां, भीड़ो मोकलाई कीतियां न सब रखे कुटुंब नाल, कारज आप सवारियां न सो प्रभ सदा संभाल। प्रभ मात पिता कंठ लाएंदा लहुड़े बालक पाल, दयाल होए सब जी जंतर हर नानक नदर निहाल। महला पंजवा विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखा कै दुख देह नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख। गुरवण तिण हरिया कीतिया, नानक क्या मनुख पौड़ी। सो ऐसा दातार मनो ना विसरै, कड़ी ना मोहत चसा तिस बिनु ना सरै। अंतर बाहर संग क्या को लुक करै, जिस पत रखै आप सो भव जल तरै। भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै, सो पूरा प्रधान जिसनो बल धरै। जिसै जराए आप सोई अजर जरै, तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमंत्र है। सलोक महला पंजवा, तन सो राग सुरंगड़े अलापत सब तिख जाए, तन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे नाओ। जिन्नी एक मन एक आराध्या, तिन सदबलिहारै जाओ। तिन की धूड़ हम बांश दे करमी पल्ले पाए, जो रत्ते रंग गोविंद कै हौ सदबल।

तू सुन सच संदेशा साई सुहागण साई पागण जय पिर कृपा तारी पिर अवगुण तिसके सब गवाए गल के गर सेती लाए सवारी कर्महीन तन करै बिनंती कद नानक आवै वारी सब सुहागण माणै रलियां इक देवो रात मुरारी महला पंजवा काहे मन तू डोलता हर मनसा पूर्ण हार सतगुर पुरख ते आए तू सब दुख विसारण हार हर नामा आराध मानो सब किल विख जाहे विकार जिनको पूर्व लिखिया तिन रंग लगा निरंकार ओनी छड्या।

व्यापया दुर्मत कबुद कमूड़ा मन लागा तिसमोहा ठगै सेती ठगरा ले आया साथ पे इको जिहा। सतगुर सराफ नदरी विच दो कड्डै ता उगड़े आया लोहा बहु तेरी थाई रलाए रलाए दिता उगड़िया पड़दा अगे आए खलोहा सतगुर की जे सरणी आवै फिर मनूरो कंचन होहा। सतगुर निर्वैर पुत्र सत्र समाने औगण कटे करे सुध देहा नानक जिस तुर मस्तक होवै लिखिया ते सतगुर नाल सनेहा अमृत बाणी सतगुर पूरे की जिस कृपाल होवै तिस हृदय वसेहा आवन जाना तिसका कटी है सदा सदा सुख होहा पौड़ी जो तुद पाणा जंत सो तुद बुझई जो तुद पाणा जंत सो दर गै सिजई जिसनो तेरी नदर हम मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई जिसकै स्वामी वल निरपव सो पई जिसनो तू कृपाल सच्चा सो थई जिसनो तेरी माया ना पोहै अगनई तिसनो सदा दयाल जिन गुरते मत लई श्लोक महला पंजवा कर कृपा कृपाल आपे बख्श लै सदा सदा

जिस मिलिया पूरा गुरु सो सर प्रतारण, जिसनो लाए सच ते सच संभालण, जिस आया हथ निदान सो रहया पालण, जिसनो इको रंग भगत सो जानण, ओ सबना की रेण बिरही चारण, सब तेरे चोज विडाण सब तेरा कारण। श्लोक महला पंजवा। उस्तत निंदा नानक जी मैं हब मंजाई, छोड़या हब किज त्यागी, हब्बे साख कूड़ावे डिठे तौ पल्ले तैंडे लागी। महला पंजवा। फिरदी फिरदी नानक जीओ हों फावी थी, बौद्ध सावर पंदा ताहों सुख सुखाली सुती जा।

पानी पवन में लाया, शास्त्र ना होता वेद ना होता, कर्म कहां तेरे आया। खेचर पूचर तुलसी माला, गुर प्रसादी पाया, नामा प्रणवै परम तत् है, सतगुरु होए लिखाया। आराम कली कर दूजा, बनारसी तप करै, उल्ट तीर्थ मरै, अग्न दह काया कल्प की जय। असमेध जग की जय, सोना गर्भदान दी जय। राम नाम सर तऊ न पूजै, छोड़ छोड़ रे पाखंडी, मन कपट ना की जय। हर का नाम नित नित ली जय रहाओ। गंगा जौ गोदावर जाइय, कुंभ जौ केदार नाइय, गोमती सहस गौ दान की जय। कोट जौ तीर्थ करै, तन जौ हिवाले गारै, राम नाम सर तऊ न पूजै। अस दान गज दान, सहजा नारी भूम दान, ऐसो दान नित नित की जय। आत्म जाओ निर्...

निर्मल निर्वाण पद चीन लीजै, जथ रथ राय नंद, राजा मेरा राम चंद, प्रणव नामा तत रस अमृत पीजै, राम कली बाणी रविदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनपौ पाओ न दर्श, लोहा कंचन हिरन होए कैसे, जौ पारस नाम परस, देव संसय गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मत्सर, इन पंचों मिल लूटे रहाओ। हम बड कब कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एह बुद्ध कबे ना नासी, कहो रविदास समय सबे नहीं समझस, भूल परे जैसे बौरे, मोहे आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे, राम कली बाणी बेणी जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एड़ा पिंगला और सुख मना, तीन बसाए कठाई, बेणी संगम तह पिराग, मन मज्जन करे तिथाई, संतो तहा निरंजन राम है, गुरगम चीने बिरला कोए, तहा निरंजन रमैया होए रहाओ। देव स्थान क्या निशानी, तह बाजे शब्दया नाहद बाणी, तह चांदना सूरज पौन ना पानी, साखी जागी गुरमुख जानी, उपजै ज्ञान दुरमत शीजै, अमृत रस गगन अंतर पीजै, एस कला जो जाने पे ओ, पेटे तास परम गुरदेओ, दसम द्वारा अगमया पारा, परम पुरख की घाटी, ऊपर हाट हाट पर आला, आले पीतर थाती, जागत रह सो कवो ना सोवे, तीन तलोक समाध पलोवे, बीज मंत्र लै हृदय रह, मनुआ उल्ट सुन महंग है, जागत रह ना अलिया पख, पांचो इंद्री बस कर रख, गुर की साखी राख चीत, मन तन अर्प कृष्ण प्रीत, कर पल्लव साखा बिचारे, अपना जन्म ना जुए हारे, असर नदी का बंदे मूल, पच्छम फेर चढ़ावे सूर, अजर जरै सो निजर चरै, जगन नास्यो गोष्ट करै, चौ मुख दीवा जो द्वार, पलू अंत मूल बिचकार, सर्व कलाले आपे रहै, मन मान करत नामे गुहै, मस्तक पद्म द्वाले मणि, माहे निरंजन त्रिपवन तणी, पंचे शब्द निर्मायल बाजे, टुलके चवर शंख कान गाजे, दल मल दैतो गुरमुख ज्ञान, बेणी जाचे तेरा नाम, राग नट नारायण।

नारी पुरख पुरख सब नारी सब एको पुरख मुरारे संत जना की रेन मन पाई मिल हर जनो हर निस्तारे ग्राम ग्राम नगर सब फिरया हृदय अंतर हर जन पारे सरदा सरदा उपाय मिलाए मोको हर गुर गुर निस्तारे पवन सूत सब नीका करया सतगुर शब्द विचारे निज कर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारे तौ गुण ईस वर्ण नहीं सको तुम मंदर हम निक कीरे नानक कृपा करो गुर मिलो मैं राम जपत मन धीरे। नट महला चौथा। मेरे मन भज ठाकर अगम अपारे हम पापी बहु निर्गुण यारे कर कृपा गुर निस्तारे रहाओ। साधु पुरख साध जन पाए एक बिनो करो गुर प्यारे राम नाम तन पूंजी देवो सब तिशना भूख निवारे पचै पतंग मृग भृंग कुंचर मीन एक इंद्री पकर संघारे पंचभूत सबल है देही गुर सतगुर पाप निवारे शास्त्र वेद सोध सोध देखे मुन नारद बचन पुकारे राम नाम पढ़ो गत पावो सतसंगत गुर निस्तारे प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी जिव सूरज कमल निहारे मेर सुमेर मोर बहु नाचे जब उन वै कहनु कनहारे साकत गौ अमृत बहु सिंचो सब डाल फूल बिस्कारे ज्यो ज्यो निवै साकत नर सेती शेड़ शेड़ कड्डै विख खारे संतन संत साध मिल रही है गुण बोलै पर उपकारे संत है संत मिलै मन बिकसै ज्यो जल मिल कमल सवारे लोभ लहर सब स्वान हल्क है हल्क्यो सब है बिगारे मेरे ठाकर कै दीबान खबर होई गुर ज्ञान खड़ग लै मारे राख राख राख प्रा मेरे मैं राखो कृपा तारे नानक मैं तारे अवर ना काई मैं सतगुर गुर निस्तारे शक्का एक

अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद, अनक जतन कर रहे हर अंत नाही पाया, हर अगम अगम अगाद बोध आदेश हर प्रबराया रहाओ, काम क्रोध लो मोह निर्चगर ते चगराया, हम राख राख दीन तेरे हर सरन हर प्रभ आया, शरणागति प्रद प्रभ पालते हर भगत वच्छल नाया, प्रहलाद जन हर नाख पकड़िया हर लाख लियो तराया, हर चेतरे मन महल पावन सब दुख पंजन राया, पौ जन मरण निवार ठाकर हर गुरमति प्रभ पाया, हर पतत पावन नाम स्वामी पौ भगत पंजन गाया, हर हार हर उतारे हो जन नानक नाम समाया।

लो कर्म विधाता ललाट लिखे पाया गुर साधु गुर बचनी मंत्र राता हर प्रभे आए मिले सुख पाया सब के लिख पाप गवाता राम रसायन।

माथोर कही हर अगम अगम अगाध तुही ऊच मूचो बहवा पार सिमरत नानक तरे सार माली गौड़ा महला पंजवा इही हमारे सफल काज अपने दास को लेहो निवाज रहाओ चरण संतै माथ मोर नैन दर्श पेखो निस्पोर हस्त हमरे संत टहलो प्राण मन तन संत बहलो संत संग मेरे मन की प्रीत संत गुण बसे मेरे चीत संत आज्ञा मन है मीठ मेरा कमल बिकसे संत डीठ संत संग मेरा होए निवास संतन की मोह बहुत प्यास संत बचन मेरे मन है मंत संत प्रसाद मेरे बिखे हंत मुकत जुगत एहा निधान प्रभ दयाल मोहे देवो दान नानक कहो प्रभ दया तार चरण संतन के मेरे हृदय मजार माली गौड़ा महला पंजवा सबके संगी नाही दूर करन करावन हाजरा हजूर रहाओ सुनत जियो जास नाम दुख बिन से सो कियो विश्राम सगल निद हर हर हरे मुन जनता की सेव करे जा कै घर सगले समाहे जिसते बिरथा कोई नाहे जी जंतर करे प्रतपाल सदा सदा सेवो कृपाल सदा धर्म जा कै दीबाण बेमोहताज नहीं किश काण सब किश करना अपने आप रे मन मेरे तू ता को जाप साध संगत को हौ बलिहार जास मिल होवे उधार नाम संग मन तन है रात नानक को प्रभ करी दात माली गौड़ा महला पंजवा दो पदे एको अंकार सतगुर प्रसाद हर समर्थ की सरना जियो पिंड तन रास मेरी प्रभ एक कारण करना रहाओ सिमर सिमर सदा सुख पाईए जीवन का मूल रव रहया सरबत ठाई सुख मोह स्थूल आल जाल बेकार तज सब हर गुणा नित गाओ कर जोड़ नानक दान मांगे देहो अपना नाओ माली गौड़ा महला पंजवा प्रभ समरथ देव अपार कौन जाने चलत तेरे किशंत नाही पार रहाओ एक खिन है था प्यो थापदा कड़ पन करने हार जेत की न्यो पार जना प्रभ दान दे दातार हर सरन आयो दास तेरा प्रभ ऊच अगम मुरार कड़ ले हो पौ जल बिखमते जन नानक सद बलिहार माली गौड़ा महला पंजवा मन तन बस रहे गोपाल दीन बांधव भगत वच्छल सदा सदा कृपाल रहाओ आदि अंते मद तू है प्रभ बिना नाही कोए पूर रहया सगल मंडल एक स्वामी सोए करन हर जस नेत्र दर्शन रसन हर गुण गाओ बलिहार जाए सदा नानक देहो अपना नाओ माली गौड़ा बाणी भगत नामदेव जी की एको अंकार सतगुर प्रसाद तन तान्यो राम बेन बाजै मदर मदर तुन अनहत गाजै रहाओ तन तन मेघा रोमावली तन तन कृष्ण उंडै कंबली तन तन तू माता देव की जह ग्रह रमैया कवलापति तन तन बन खंड बिंद्रा बना जय खेलै श्री नारायणा बिन बजावै गोदन चरै नामे का स्वामी आनंद करै मेरो बाप माधो तू तन केसो सांवलियो बीठ लाए रहाओ कर तरे चक्कर बैकुंठ ते आए गज हस्ती के प्राण उधारी अले दो शासन की सभा द्रुपती अंबर ले त्यो बारी अले गोतम नार अहल्या तारी पावन केतक तारी अले ऐसा अदम अजात नाम देओ तो शरणागत आई अले सबै कट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे रहाओ एकल माटी कुंजर चीटी
ਭਾਂਜਨ ਹੈ ਬਹੁ ਨਾਨਾ ਰੇ, ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ, ਕਟ ਕਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਰੇ। ਏਕਲ ਚਿੰਤਾ ਰਾਖਿਆ ਅਨੰਤਾ, ਔਰ ਤਜੋ ਸਭ ਆਸਾ ਰੇ, ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਮਾ ਪਹਿਨੇ ਕਾਮਾ, ਕੋ ਠਾਕਰ ਕੋ ਦਾਸਾ ਰੇ। ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਾ ਜੁਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਲੋਕ ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ, ਹੋਏ ਰਹਾ ਸਦ ਧੂਰ, ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਤੁਹਾਰੀਆ, ਪੇਖੋ ਸਦਾ ਹਜੂਰ। ਸ਼ਬਦ ਪਿੱਛੋ ਰਾਤੀ ਸੱਦੜਾ, ਨਾਮ ਖਸਮ ਕਾਲੇ, ਖੇਮੇ ਛਤਰ ਸਰਾਏ ਚ ਦਿਸਨ ਰਥ ਪੀੜੇ, ਜਿਨੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿਨ ਕਉ ਸਦ ਮਿਲੇ। ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕਰਮਹੀਣ ਕੂੜਿਆਰ, ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇਰਾ, ਅੰਧਾ ਪਰਮ ਭੂਲਾ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਰਹਾਉ। ਸਾਧ ਕੀਤੇ ਦੁਖ ਪਰ ਫੋੜੇ, ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਮਾਏ।

गया सो जो बनो धन पछताणी, तू दाना साहिब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा। पंडित नानक अंदेसा यही, बिन दर्शन कैसे रवो स्नेही। मारू महला पहला, मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाम सुपागा। गुर की बचनी हट बेकाना, जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चतराई। साहिब का हुक्म ना करना जाई रहाओ, मां लाली प्यो लाला मेरा, हाँ लाले का जाया। लाली नाचे लाला गावे, भगत करो तेरी राया। पीए ता पानी आनी मीरा, खाहे ता पीसन जाओ, पखा फेरी पैर मलोवा, जपत रहा तेरा नाओ। लून हरामी नानक लाला, बख्शै तुद वड्याई, आ जुगा दया पदाता, तुद बिन मुक्त ना पाई। मारू महला पहला, कोई आखे पूतना, को कह बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा। पया दीवाना साहका, नानक बौराना।

तौ दीवाना जानिए जा एकाकार कमाए, हुक्म पछाणे खसम का दूजी अवर सियाण पकाए। तौ दीवाना जानिए जा साहिब तरे प्यार, मंदा जाने आप कहो अवर भला संसार। मारू महला पहला एहो तन सरबरया भरपूर, मनुख फिरै से जाने दूर। सो तन वखर नाम हृदय हमारा, जिस तू देहे।

हेत के बंधन तोड़ ना साके ता जम करे खुआरी जियो। ना हो करता ना मैं किया अमृत नाम सतगुर दिया। जिस तू देह तसे क्या चारा नानक शरण तुम्हारी जियो। मारू महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जह बैसाल तै बैसा स्वामी जय भेजै तै जावा। सब नगरी मैं एको राजा सबे पवित है थावा। बाबा देह वसा सच गावा जाते सहजे सही समावा रहाओ। बुरा भला किश आपस ते जानिया ए सगल विकारा। एहो फरमाया खसम का होवा वरतै ओ संसारा। इंद्री तात सबल कहियत है इंद्री किस्ते होई। आपे खेल करे सब करता ऐसा बुझे कोई। गुरप्रसादी एक लिव लागी दुबदा तदे बिनासी। ज्योतिष पाणा सो सतकर मानिया काटी जमकी फासी। पणत नानक लेखा मांगे कवना जा चूका मन अभमाना। तास तास धर्म राय जपत है पै सच्चे की सरना। मारू महला तीजा आवन जाना ना थी निज करवासा होए। सच खजाना बख्शिया आपे जाने सोए। ए मन हर जियो चेत तू मनो तज विकार। गुर कै शब्द ते आए तू ता सच लगी प्यार रहाओ। ऐथे नावो भुलिया फिर हथ कथाऊ ना पाए। जोनी सब पवाईयन बिष्टा माए समाए। वडभागी गुर पाया पूर्व लिखिया माए। अंदर सच्ची भगत कर सच्चा ले मिलाए। आपे सृष्ट सब साजियां नू आपे नजर करे। नानक नाम वड्याईयां जय भावें तैं दे।

साध संगत गुण उचारण हर नाम अमृत पाथ करो कृपा मुरार माधव सुन नानक जी वै गाथ मारू अंजलि महला पंजवां कर सतवां एको अंकार सतगुर प्रसाद संजोग विजोग तुरों ही हुआ पंच तात कर पुतला किया साहे कै फुरमायड़ जी देही विच जियो आए पया जिथे अगन पखे पड़हारे ऊर्द मुख मह गोबारे सा सास माले सोई उथे खसम छड़ाए लया विचों गरबै निकल आया खसम सार दुनी चितलाया आवै जाए पवाई है जोनी रहना किथी थाए पया मेहरवान रख लयन आपे जी जंत सब तिसके थापे जन पदार्थ जिन चलिया नानक आया सो परवान थिया मारू महला पंजवां वैदो ना वाई पहनो ना पाई एको सहाई राम हे कीता जिसो होवै पापा मलो धोवै सो सिमरो प्रधान हे घट घटे वासी सर्व निवासी अस्थर

सोई सोहेला पालिया। ग्रह राज में नरको दास करोदा, बहुविद वेद पाठ सब सोदा। देही मैं जो रह अलिपता, तिस जन की पूर्ण कहली है। जागत सूता परम विगुता, बिन गुर मुक्त ना होई है मीता। साध संग तुटे हो बंधन, एको एक निहाली है। कर्म करे ता बंदा, नह करे ता निंदा। मोह मगन मन व्यापिया चिंदा, गुर प्रसाद सुख दुख सम जाने। घट घट राम हयाली है, संसार में सहसा व्यापै। अकथ कथा गोचर नहीं जापै, जिसे बुझाए सोई बूझै। ओह बालक वांगी पाली है, छोड़ बह तो छूटै नाही। जो सिंचै तो पौ मन माही। इस ही मह जिसकी पत राखै, तिस साधु चौर ढाली है। जो सूरा तिस ही होए मरना, जो भागै तिस जोनी फिरना। जो वरताए सोई पल मानै, बुझ हुक्मै दुरमत जाली है। जित जित लावै तित तित लगना, कर कर वेखै अपने जचना। नानके पूर्ण सुखदा ते, तू देहता नाम समाली है। मारू महला पंजवां, बिरखै हेठ सब जंत इकट्ठे। एक तत्ते एक बोलन मिठे। अस्त्या दोत पया उठ चले, ज्यों ज्यों औध विहानियां। पाप करेंदड़ सर पर मुठे, अजरा ईल फड़े फड़ कुठे। दोजग पाए सृजनहार, लेखा मंगे बाणियां। संग न कोई पहिया बेबा, माल जोबन तन छोड़ वंजेसा। करण करीम न जातो करता, तिल पीड़े जो कहानियां। खुस खुस लैंदा वस्त पराई, वेखै सुने तेरे नाल खुदाई। दुनिया लब पया खात अंदर, अगली गल न जानिया। जम जम मरै मरै फिर जम्मै, बहुत सजाए।

आपे पौन पानी बेसंतर आपे मेल मिलाई है आपे सस सूरा पूरो पूरा आपे ज्ञान त्यान गुरसूरा काल जाल जम जो है ना सकै साचे सुन लिवलाई है आपे पुरख आपे ही नारी आपे पासा आपे सारी आपे पिड़ बांधी जा खेल आपे कीमत पाई है आपे पवर फुल फल तारवर आपे जल थल सागर सरवर आपे मशकश करनी कर तेरा रूप ना लखना जाई है आपे दिनस आपे ही रहनी आप तीजे गुर की बैनी आद जुगाद अनाहद अंदनो कट कट शब्द रजाई है आपे रतना नूपा मोलो आपे परखे पूरा तोलो आपे किस ही कस बख्से आपे दे लै पाई है आपे तनख आपे सरबाणा आपे सुगड़ स्वरूप सियाणा कहता बगता सुनता सोई आपे बंत बनाई है पौन गुरु पानी पित जाता उधर संजोगी धरती माता रैन दिन सदोए दाई दाया जाखे लैखे लाई है आपे मछली आपे जाला आपे गऊ आपे रखवाला सर्ब जिया जग जो तुम्हारी जैसी प्रभ फरमाई है आपे जोगी आपे भोगी आपे रसिया परम संजोगी आपे वे बाणी निरंकारी निरपव ताड़ी लाई है खानी बाणी तुझे समाणी जो दिसै सब आवन जानी सही साह सचे व्यापारी सदगुर बूझ बुझाई है शब्द बुझाए सदगुर पूरा सर्व कला साचे परपूरा अफरियो वे प्रवाहो सदा तू ना तिस दिल ना तुमाई है काल विकाल पहे देवाने शब्द सहज रस अंतर माने आपे मुक्त तृप्त वरदाता भगत पाए मन पाई है आप निरालम गुरगम ज्ञाना जो दिसै तुझ महे समाना नानक नीच

जय गुण प्रगासं जति सती संतोखी आपे आपे कार कमाई है। जिस करना सो कर कर वेख कोई न मिटे साचे लिख है। आपे करे कराए आपे आपे देवड़े आई है। पंच चोर चंचल चित चाल है पार कर जो है कर नहीं पल है। काया नगर टह टह टेरी बिन शब्द पत जाई है। गुरते बूझै त्रिपवन सूझै मनसा मार मन स्यों लूझै। जो तुद सेवै से तुद ही जेहे निरपव बाल सिखाई है। आपे सुरग मच पयाला आपे जो सुरूपी बाला जटा बिकट बिकराल सुरूपी रूप ना रेख्या काई है। वेदक तेबी भेद ना जाता ना तिस मात पिता सुत प्राता। सगले सैल्यो पाए समाए अलखना लखना जाई है। कर कर था की मीत कनेरे कोई ना काटे अब गुण मेरे। सुर नर नाथ साहिब सब ना सिर पाए मिले पौ जाई है। भूले चूके मार्ग पावे या भुलाए तू है समझावे।

ताड़ी लाई अपरिया पार है। तुंदुकार निरालुम बैठा ना तद तंद पसारा है। जुग छत्ती तिन वरताए जुत सपाणा तवै चलाए। जिसै शरीक न दिसै कोई आपे अपरिया पारा है। गुप्ते बुझो जुग चतवारे घट घट वरतै उधर मझारे। जुग जुग एका एकी वरतै कोई बुझै गुर विचारा है। बिंद रगत मिल पिंड सरिया पौन पानी अग्नि मिल जिया। आपे चोज करे रंग महली होर माया मोह पसारा है। गर्भ कुंडल में उर्द ध्यानी आपे जाने अंतर जामी। सास सास सचनाम संभाले अंतर उधर मझारा है। चार पदार्थ ले जग आया शिव शक्ति कर वासा पाया। एक विसारे ता पिड़हारे अंदले नाम विसारा है। बालक मरे बालक की लीला कह कह रोवे बाल रंगीला। जिसका सा सोत नहीं लिया पूला रोवन हारा है। पर जोबन मर जाहे के की जय मेरा मेरा कर रोवी जय। माया कारण रोए वे गुचै त्रिग जीवन संसारा है। काली हूं फुन तौले आए विन्ना में गथ गया गवाए। दुर्मत अंदला बिनस बिनासै मूठे रोए पुकारा है। आप विचार न रोवे कोई सतगुर मिले ता सोजी होई। बिन गुर बजर कपाट ना खुले शब्द मिले निस्तारा है। बिरद भया तन शीजै देही राम न जपई अंत स्नेही। नाम विसार चले मोहे काले दरगह झूठ खुवारा है। नाम विसार चले कूड़ियारो आवत जात पड़े सिरशारो। साहुर लैकर वास ना पाए पेयड़ सिर मारा है। खाजै पैजै रली करीजै बिनया भगती बाद मरीजै। सर अवसर की सार न जाने जम मारे क्या चारा है। पर विरती नरविरत पछाणे गुर कै संग शब्द कर जाने। किसी मंदा आख न चलै सच खरा सचियारा है। साच बिना दर्श जै ना कोई साच शब्द पै जै पत होई। आपे बख्श लै तिस पावै हमें गर्भ निवारा है। गुर कृपा ते हुक्म पछाण जुगै जुगंतर की बिद जाण। नानक नाम जपो तर तारी सच तारे तार नहारा है। मारू महला पहला हर सा मीत नाही मैं कोई। जिन तन मन दिया सुरत समोई। सर्व जिया प्रतपाल समाले सोवंतर दाना बीना है। गुर सरवर हम हंस प्यारे सागर मैं रतन लाल बहुसारे। मोती माणक हीरा हर जस गावत मंत्र पीना है। हर अगम अगाहो अगाध निराला हरियंत न पाइये गुर गोपाला। सतगुर मत तारे तार नहारा मेले रंगलीना है। सतगुर बाजो मुक्त कनेही ओ आजुगादी राम स्नेही। दरगह मुक्त करे कर कृपा बख्शे अवगुण कीना है। सतगुर दाता मुक्त कराए सब रोग गवाए अमृत रस पाए। जम जा गात नाही कर लाज कर लागै जिस अग्न बुझी ठर सीना है। काया हंस प्रीत बहुतारी ओ जोगी पुरख ओ सुंदर नारी। अहनिस भोग चोज बिनोदी उठ चलते मता ना कीना है। सृष्टि उपाय रहे प्रभ शाजै पौन पानी बह संतर गाजै। मनुआ डोले दूत संगत मिल सो पाए जोग शकीना है। नाम विसार दोख दुख सही है हुक्म पया चलना क्यों रही है। नरक कूप में गोते खावै जो जलते बाहर मीना है। चौरासी नरक सख्त भोगाई है जैसा कि चै तै सो पाई है। सतगुर बाजू

जो जन्मे ते सर पर मरना किरत पया सिर साहा हे। संजोग वियोग मेरे प्रभ की है, सृष्टि उपाय दुखा सुख दिए। दुख सुख ही ते पय निराले, गुरमुख शीरस नाहा हे। नीके साचे के वापारी, ससव दाले गुर विचारी। सच्चा वखर जिस तन पल्ले, सब सच्चे ओ महा हे। काची समी टोटा आवै, गुरमुख वणज करे प्रभावै। पूंजी साबत रास सलामत, चूका जमका फाहा हे। सबको बोले अपन भाणे, मनमुख दूजे बोल न जाने। अंदले कीमत अंदली बोली, आए गया दुखता है। दुख में जन्मे

ना सोच संजम तुलसी माला, गोपी का न गऊ ग्वाला, तंत मंत्र पाखंड ना कोई, ना को वंश वजाएदा, कर्म धर्म

बिन नावै डूब मोए बिन नीरा, साचा पूरे सतगुर बूझ बुझाई, नामे राता पवित सरीरा, बिन नावै डूब मोए बिन नीरा, आवै जावै नाम नहीं बूझे, एक ना गुरमुख शब्द पछाता है, पूरे सतगुर बूझ बुझाई, बिन नावै मुक्त के नै ना पाई, नामे नाम मिले वड़ियाई, सहज रह रंग राता है, काया नगर टह टह टेरी, बिन शब्द चूके नहीं फेरी, साच सलाहे साच समावे, जिन गुरमुख एको जाता है, जिसनो नजर करे सो पाए, साचा शब्द वसै मन आए, नानक नाम रते निरंकारी, दर साचे साच पछाता है, मारू सोल है तीजा, आपे करता सब जिस करना, जी जंत सब तेरी सरना, आपे गुप्त वरतै सब अंतर, गुर कै शब्द पछाता है, हर के भगत भरे भंडारा, आपे बख्शे शब्द विचारा, जो तुद पावै सोई करसै, सच्चे स्यो मन राता है, आपे हीरा रतन आपे हीरा रतन अमोलो, आपे नगरी तोले तोलो, जी जंत सब सरन तुम्हारी, कर कृपा आप पिछाता है, जिसनो नदर होवै तुर तेरी, मरै न जम्मै चूकै फेरी, साचे गुण गावै दिन राती, जुजगु एको जाता है, माया मोहे सब जगतो पाया, ब्रह्मा विष्णु देव सवाया, जो तुद पाने से नाम लागे, ज्ञान मती पछाता है, पाप पुन वरत संसारा, हरख सोग सब दुख है पारा, गुरमुख होवै सो सुख पाए, जिन गुरमुख नाम पछाता है, कीर्तना कोई मेटनहारा, गुर कै शब्दे मुख द्वारा, पूर्व लिखिया सो फल पाया, जिन आप मार पछाता है, माया मोहे हर स्यो चेतना लागे, दूजे पाए घना दुख आगे, मनमुख भरम भुले पेख तारी, अंतकाल पछताता है, हर कै पाणे हर गुण गाए, सब किलव काटे दुख सबाए, हर निर्मल निर्मल है बाणी, हर सेती मन राता है, जिसनो नजर करे सो गुण निध पाए, हम मैं मेरा ठाक रहाए, गुण अवगुण का एक

किस ही जोर दीवान माया का, मैं हर बिन टेक तारे अवर ना काई, तू करते राख मैं निमाणी है। निमाणे मान करे तुद पावे, होर केती चख चख आवे जावे, जिनका पख करे तू स्वामी, तिनकी ऊपर गल तुद आनी है। हर हर नाम जिन्नी सदा ते आया, तिन्नी गुरप्रसाद परम पद पाया, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, बिन सेवा पछो ताणी है। तू सब मैं वरतै हर जगन्नाथ, सो हर जपै जिस गुर मस्तक हाथ, हर की शरण पया हर जापी, जन नानक दा दसाणी है। मारू सोल है महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कला उपाय धरी जिन तरना, गगन रहाया हुक्मे चरना, अग्नि उपाय इंद्र मैं बाधी, सो प्रभ राखै पाई है। जी जंत कौर जिक संबाहे, करण कारण समराथ्या पाहे, खिन मैं थापो थापनहारा, सोई तेरा सहाई है। मात गर्व मैं जिन प्रतपालिया, सास ग्रास हुए संग संभालिया, सदा सदा जपिए सो प्रीतम, वड्डी जिस वड्याई है। सुल्तान खान करे खिन कीरे, गरीब निवाज करे प्रभ मीरे, गर्भ निवारण सर्व सुधारण, किस कीमत कही न जाई है। सो पतवंता सो तनवंता, जिस मन वसिया हर भगवंता, मात पिता सुत बंद पाई, जिन ए सृष्टि उपाई है। प्रभ आए सरना पव नहीं करना, साध संगत नीचो है तरना, मन बच करम्या राधे करता, तिस नाही कदे सजाई है। गुण निदान मंत्र मैं रव्या, जन्म मरण की जो न पव्या, दुख विनाश की आ सुख डेरा, जा तृप्त रहे आ गाई है। मीत हमारा सोई स्वामी, थांथनंतर अंतर जामी, सिमर सिमर स्वामी परमेश्वर, चिंता गणत मिटाई है। हर का नाम कोट लख बाहा, हर जस कीर्तन संगत अंता, ज्ञान खड़ग कर कृपा दीना, दूत मारे कर ताई है। हर का जाप जपो जप जपने, जीत आवो वसो कर अपने, लख चौरासी नरक ना देखो, रसक रसक गुण गाई है। खंड ब्रह्मांड उदाहरण हारा, ऊंच अथाह अगम अपारा, जिसनो कृपा करे प्रभ अपनी, सो जंत सहत आई है। बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले, कर कृपा कीने कर गोले, अनहद ऋण चुनकार सहज तुन, साची कार कमाई है। मन पर तीत बनी प्रभ तेरी, बिनस गई हम मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने, जग में शोभ सुहाई है। जय जय कार जपो जगदीश, बल बल जाई प्रभ अपने ईस, तिस बिन दूजा अवर ना दिस, एका जगत सबाई है। सत सत सत प्रभ जाता, गुरप्रसाद सदा मन राता, सिमर सिमर जीवै जन तेरे, एकंकार समाई है। भगत जना का प्रीतम प्यारा, सबै उदाहरण खसम हमारा, सिमर नाम पुनी सब इच्छा, जन नानक पैज रखाई है। मारू सोल है महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, संगी जोगी नार लपटाणी, उर्ज रही रंग रसमाणी, किरत संजोगी पै एकत्रा, करते भोग बिलासा है। जो पिर करै सो तन तत् मानै, पिर तनै सिंगार रखै संगानै, मिल एकत्र वसै दिन राती, प्रयो दे तनै दिलासा है। धन मांगै प्रयो बोबे तावै, जो पावै सो आन दिखावै, एक वस्त को पहुँच ना साकै, तन रहती भूख प्यासा है। तन करै बिनो दो कर जोरै, प्रे परदेश ना जाहो वसो कर मोरै, ऐसा बणज करो गृह पीतर, जित उतरै भूख प्यासा है।
सगले कर्म धर्म जुग साधा, बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा, पही कृपा नानक सतसंगे, तव धन पिर आनंद उलासा है, तन अंधी पिर चपरसियाना, पंच तत् कार रचन रचाना, जिस वखर को तुम आए हो, सो पायो सतगुर पासा है, तन कह तू वस मैं नाले, प्रे सुखवासी बाल गोपाले, तुझे बिना हो कित ही ना लेख, वचन देहे छोड़ ना जासा है, फिर कहया हो हुक्मी बंदा, ओह पारो ठाकरो जिस कान ना शंदा, जिचर रख है तिचर तुम संग रहना, जा सदे ता उड़ सिदासा है, जाओ प्रे बचन कह तन साचे, तन कछु ना समझे चंचल काचे, बहुर बहुर पिर ही संग मांगे, ओ बात जाने करहासा है, आईया गया पिरो बुलाया, ना तन पुछी ना मता पकाया, पूर सिदायो छूटर माटी, देख नानक मिथन मुहासा है, हरे मन लोभी सुन मन मेरे, सतगुर सेव दिन रात सदेरे, बिन सतगुर पचमुए साकत, निगुरे गल जमफासा है, मन मुख आवै मन मुख जावै, मन मुख फिर चोटा खावै, जितने नरक से मन मुख भोगै, गुरमुख लेप ना मासा है, गुरमुख सोए जे हर जियो पाया, तिस कौन मिटावै जे प्रभ पैराया, सदा आनंद करे आनंदी, जे सिर पाओ पया गल खासा है, हाँ बलिहारी सतगुर पूरे, शरण के दाते बचन के सूरे, ऐसा प्रभ मिलिया सुखदाता, विछड़ना कत ही जासा है, गुण निदान किशकी में ना पाई, कट कट पूर रहे हो सब ठाई, नानक शरण दीन दुख पंजन, हौरेण तेरे जो दासा है। मारू सोल है महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, करै आनंद आनंदी मेरा, कटकट पूर्ण सिर सिरै नबेरा, सिर साहा कै सच्चा साहेब, अवर नाही को दूजा है, हरखवंत अनंत दयाला, प्रगट रहे ओ प्रभ सरब्यो जाला, रूप करे कर वेखै विकसै, आपे ही आप पूजा है, आपे कुदरत करे विचारा, आपे ही सच करे पसारा, आपे खेल खिलावै दिन राती, आपे सुन सुन भीजा है, साचा तख्त सच्ची पातशाही, सच खजीना साचा साही, आपे सच धारियो सब साचा, सच्चे सच वर्ती जाहे, सचत पावस सच्चे केरा, साचा थान सदा प्रभ तेरा, सच्ची कुदरत सच्ची बाणी, सच साहेब सुख की जाहे, एको आप तू है वड राजा, हुक्म सच्चे के पूरे काजा, अंतर बाहर सबके जाने, आपे ही आप तीजा है, तू वड रसिया तू वड भोगी, तू निर्वाण तू है ही जोगी, सर्व सुख सहज कर तेरा, अम्यो तेरी दृष्टि जाहे, तेरी दात तुझे ते होवै, देह दान सब सह जंत लोवै, टोटना आवै पूर भंडार, तृप्त रहे आगी जाहे, जाचै सिद्ध साधक बनवासी, जाचै जति सती सुखवासी, एकदा तार सगल है जाचक, देह दान सृष्टि जाहे, करै भगत हर रंग अपारा, खिन मै थापो थपनहारा, भारो तोल बेअंत स्वामी, हुक्म मन भगती जाहे, जिस देह दर्श सोई तुद जाणै, ओह गुर कै शब्द सदा रंग माणै, चतर स्वरूप से आना सोई, जो मन तेरे पावी जाहे, जिस चीत आवै सो वे प्रवाह, जिस चीत आवै सो साचा सहा,
ਜਿਸ ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਿਸ ਪਹੁ ਕਿਹਾ, ਅਵਰ ਕਹਾ ਕਿਸ ਕੀ ਜਾਹੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੂਝੀ ਅੰਤਰ ਠੰਡਾ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਲੈ ਤੂਟਾ ਗੰਡਾ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ ਜਾਗੀ, ਅਮਿਓ ਚੋਲ ਚੋਲ ਪੀ ਜਾਹੇ। ਮਰੈ ਨਾਹੀ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੈ, ਅਮਰ ਭਇਆ ਅਬਨਾਸੀ ਥੀਵੈ। ਨਾ ਕੋ ਆਵੈ ਨਾ ਕੋ ਜਾਵੈ, ਗੁਰ ਦੂਰ ਕੀ ਆ ਪਰਮੀ ਜਾਹੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ, ਪੂਰੇ ਲਾਗਾ ਪੂਰੇ ਮਹੇ ਸਮਾਣੀ। ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੰਗਾ, ਘਟੈ ਨਾਹੀ ਤੋਲੀ ਜਾਹੇ। ਬਾਰਹਾ ਕੰਚਨ ਸੁਧ ਕਰਾਇਆ, ਨਦਰ ਸਰਾਫ ਮਨੀਸ਼ ਚੜਾਇਆ। ਪਰਖ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਇਆ ਸਰਾਫੀ, ਫਿਰ ਨਾਹੀ ਤਾਈ ਜਾਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਮਹਾਂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਦੇਖ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਮਨ ਭੀ ਜਾਹੇ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੋਲਹੇ, ਏਕੋ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਗੁਰ ਦਿਆਲ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ। ਗੁਰ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਖਟਕਰਮਾ, ਗੁਰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲੇ ਵਿਖ ਨਾਸੈ, ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਜਮ ਸੰਗ ਨਾ ਫਾਸੈ। ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਟੇ ਅਪਮਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਏ। ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਕਰਦਾ ਨਿਤ ਜੀ ਦਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟ ਹਰ ਜਸ ਮੁਖ ਭਣੀਐ। ਕਲ ਕਲੇਸ ਮਿਟਾਏ ਸਤਿਗੁਰ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਦੇਵੈ ਮਾਨਾ ਹੈ। ਆਗਮਾ ਗੋਚਰ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ, ਭੂਲਾ ਮਾਰਗ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਗੁਰ ਸੇਵਕ ਬਿਗਨਾ ਭਗਤੀ, ਹਰ ਪੂਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਗਿਆਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ ਸਭਨੀ ਠਾਈ, ਜਲ ਥਲ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਗੋਸਾਈ। ਊਚ ਊਨ ਸਭ ਇਕ ਸਮਾਨਾ, ਮਨ ਲਾਗਾ ਸਹਿ ਧਿਆਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੁਝਾਈ, ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹਿ ਜੋ ਹੈ ਮਾਈ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆ ਗੁਰਪੂਰੈ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਪਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਮਾਏ ਸਮਾਣੀ, ਆਪ ਸੁਣੀ ਤੈ ਆਪ ਵਖਾਣੀ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਜਪੀ ਤੇਈ ਸਭ ਨਿਸਤਰੇ, ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਨੇ ਚਲਥਾਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣੈ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪਣ ਭਾਣੈ। ਸਾਧੂ ਧੂਰ ਜਾਚੈ ਜਨ ਤੇਰੇ, ਨਾਨਕ ਸਤਿ ਕੁਰਬਾਨਾ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਸਮੈ ਵਰਤੈ ਆਪ ਨਿਰਾਰਾ। ਵਰਨ ਜਾਤ ਚਿਹਨ ਕੋਈ, ਸਭ ਹੁਕਮੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਉਪਾਏਂਦਾ। ਲੱਖ ਚੌਰਾਸੀ ਜੋਨ ਸਵਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੂਕੈ, ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਕਿਆ ਕਹੀਐ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਲਈਐ। ਜਿਸ ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਸੋਈ ਭੁੱਲੈ, ਸੋ ਬੂਝੈ ਜਿਸੈ ਬੁਝਾਏਂਦਾ। ਹਰ ਸੋ ਕਾ ਨਗਰੇ ਹੋ ਕੀਆ, ਸੇ ਉਭਰੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣੀਆ। ਤ੍ਰਿਹੋ ਗੁਣਾ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਰਾ, ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਭਾ ਪਾਏਂਦਾ। ਅਨਕ ਕਰਮ

कलयुग में कीर्तन परदाना, गुरमुख जपिए लाए त्याना, आप तरह सगले कुल तारे, हर दरगह पत स्यों जाएंदा। खंड पताल दीप सब लोवा, सब काल वैसे आप प्रभ किया, नेचर एक आप अविनाशी, सो नेचर जो तसै बुझाएंदा। हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा, ज्यों जल तरंग उठे बो भाती, फिर सरलै सल समाएंदा। एक जाचक मंगे दान द्वारे, जा प्रभावै ता कृपा धारै, देहो दर्स जित मंत्र पतासै, हर कीर्तन मन ठहराएंदा। रूड़ो ठाकुर कितै वस न आवै, हर सो किश करे जे हर क्या संता पावै, कीता लोड़न सोई करायन, दर फेर न कोई पाएंदा। जिथे औकट आए बंत है प्राणी, तिथे हर त्याई है सारिंग पानी, जिथे पुत्र कलतर ना बेली कोई, तिथे हर आप छड़ाएंदा। वड्डा साहेब अगमा था, क्यों मिलिए प्रवे प्रवाह, काट सिलक जिस मार्ग पाए, सो विच संगत वासा पाएंदा। हुक्म बूझै सो सेवक कही है, बुरा भला दो संसार सही है, हाँ मैं जाए ता एको बूझै, सो गुरमुख सही समाएंदा। हर के भगत सदा सुखवासी, बाल सुभाए अति तो दासी, अनकर अंग करै बो भाती, जो पिता पूत लाडाएंदा। अगमा गोचर कीमत नहीं पाई, ता मिलिया जा ले मिलाई, गुरमुख प्रगट पाया तिन जन कहो, जिन तुर मस्तक लेख लिखाएंदा। तू आपे करता कारण करना, सृष्टि उपाय धरी सब तरना, जन नानक शरण पया हर द्वार, हर भावै लाज रखाएंदा। मारू सोलहे महला पंजवा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद, जो दिसै सो एको तू है, बाणी तेरी सरवणी सुनिया, दूजी अवर ना जाप सकाई, सगल तुम्हारी धारणा। आप चितारे अपना किया, आपे आपे आप प्रभ थिया, आप उपाय रचियोन पासारा, आपे कटकट सारणा। एक उपाय वड़ दरबारी, एक उदासी एक करबारी, एक भूखे एक तृप्त अगाए, सबसे तेरा पारणा। आपे सत सत सत साचा, पोत पोत भगतन संगराचा, आपे गुप्त आपे है प्रगट, अपना आप सारना। सदा सदा सद हो बनहारा, ऊंचा अगमा था अपारा, ऊने परे परे पर ऊने, एह चलत स्वामी के कारणा। मुखसा लाही सच्चे साहा, नैनी पेखा अगमा थाहा, करनी सुन सुन मंतन हरिया, मेरे साहेब सगले उदाहरणा। कर कर वेखै कीता अपना, जी जंत सोई है जपना, अपनी कुदरत आपे जाने, नदरी नदर निहालना। संत सभा जै बैसे प्रभ पासे, आनंद मंगल हर चलत तमासे, गुण गावै अनहद तुन बाणी, तै नानक दास चितारना। आवन जाना सब चलत तुम्हारा, कर कर देखै खेलिया पारा, आप यो पायो पावन हारा, अपना किया पालना। सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, सदा सदा जाई बलिहारी, दोए कर जोड़ सिमरव दिन राती, मेरे स्वामी अगम अपारना। तुद बिन दूजे के सालाही, एको एक जपी मन माही, हुक्म बूझ जन पय निहाला, ए पगता की कहलना। गुर उपदेश जपिए मन साचा, गुर उपदेश राम रंग राचा, गुर उपदेश तुटे सब बंधन, एहो परम हो पर जालना। जै राखै सोई सुख थाना, सहजे होए सोई पहलमाना, बिन से बैर नाही को बैरी, सब एको है पहलना। डर चूके बिन से अंधियारे, प्रगट पए प्रभ पुरख निरारे, आप छोड़ पए सरनाई, जिसका साथ इस कहलना।
ऐसा को वडभागी आया, आठ पहर जन खसम ते आया, ते जन कै संग तरै सब कोई, सो परवार सदारना, ए बख्शीस खसम ते पावा, आठ पहर कर जोड़ ते आवा, नाम जपी नाम सही समावा, नाम नानक मिलै उचारना, मारू महला पंजवा, सूरत देखना पूल गवारा, मिथन मुहारा झूठ पसारा, जग में कोई रहन ना पाए, निचल एक नारायणा, गुरपुरे की पौ सरनाई, मोह सोग सब पर मिटाई, एको मंत्र दृढ़ाए औखद सच नाम रिद गायना, जिस नामै कौ तरसै बहु देवा, सगल भगत जाकी कर दे सेवा, अनाथा नाथ दीन दुख भंजन, सो गुरपुरे ते पायना, होर द्वारा कोई ना सूजै, त्रिपमन तावै ता किशु न बूजै, सतगुर साहो भंडार नाम जिस, एहो रतन तिसै ते पायना, जाकी तूर करे पोनीता, सुर नर देव न पावै मीता, सत पुरख सतगुर परमेसर, जिस भेट पार परायना, पार जात लोड़ै मन प्यारे, काम तिन सोही दरबारे, तृप्त संतोख सेवा गुरपुरे, नाम कमाए रसायना, गुर कै शब्द मरै पंच धातु, पै पार ब्रह्म होवै निर्मला तू, पारस जापेटै गुरपुरा, ता पारस परस दिखायना, कई बैकुंठ नाही लवै लागे, मुक्त बपड़ी पी ज्ञानी त्यागे, एक अंकार सतगुर ते पाईऐ, हौ बल बल गुर दरसायणा, गुर की सेवना जाने कोई, गुर पार ब्रह्मया गोचर सोई, जिसनो लाए लए सो सेवक, जिस वट पाग मथायणा, गुर की महिमा बेद ना जाने, तुष मात सुन सुन बखाने, पार ब्रह्म या परम्पर सतगुर, जिस सिमरत मन सीत लायना, जा की सोए सुनी मन जीवै, हृदय वसै ता ठंडा थीवै, गुरमुखो अलाए ता सोबा पाए, तिस जमकै पंथ ना पायना, संतन की शरण आई पड़िया, जियो प्राण तन आगै धरिया, सेवा सुरत ना जाना काई, तुम करो दया किरमायणा, निर्गुण कहो संग लिहो रलाए, कर कृपा मोहि टै लै लाए, पखा फेरो पीसो संत आगै, चरण तोए सुख पायणा, बहुत द्वारे परम परम आया, तुमरी कृपा ते तुम शरणाया, सदा सदा संतै संग रखो, एहो नाम दान देवायणा, पय कृपाल गुसाई मेरे, दर्शन पाया सतगुर पूरे, सुख सहजो सदा आनंदा, नारक दा दसायणा, मारू सोल हे महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सिमरै धरती अर आकाशा, सिमरै चंद सूरज गुणतासा, पौन पानी बै संतर सिमरै, सिमरै सगले उपार जना, सिमरै खंड दीप सब लोवा, सिमलै सिमरै पाताल पुरिया सच सोवा, सिमरै खाणी सिमरै बाणी, सिमरै सगले हर जना, सिमरै ब्रह्मे बिष्ण महेसा, सिमरै देव ते कोट ते तीसा, सिमरै जख दैत सब सिमरै, अगंत न जाई जसगना, सिमरै पस पंखी सब भूता, सिमरै बन पर्वत अवधूता, लता बली साग सब सिमरै, रव रया स्वामी सब मना, सिमरै थूल सूक्ष्म सब जनता, सिमरै सिद्ध साधक हर मंता, गुप्त प्रगट सिमरै प्रमेरे, सगल पवन का प्रभ धना, सिमरै नर नारी शर्मा, सिमरै जात जोत सवरना, सिमरै गुणी चतर सब बेते, सिमरै रैणी अर देना, सिमरै कड़ी मूर्त पल निमखा, सिमरै काल अकाल सो सोचा, सिमरै सौन शास्त्र संजोगा, अलख न लखिय एक खिना, कर्ण करावन हार स्वामी,
सगल कटा के अंतर जामी, कर कृपा जिस भक्ति लावाओ, जन्म पदार्थ सोजना। जा कै मन मूठा प्रभ अपना, पूरे कर्म गुर का जप जपना, सर्व निरंतर सो प्रभ जाता, बहुना जोनी परम रोना। गुर का शब्द वसै मन जाकै, दुख दर्द प्रमता का भग, सुख सहज आनंद नाम रस, अनहद बाणी सही तुना। सो तनवंता जिन प्रभ त्याया, सो पतवंता जिन सा संग पाया, पार ब्रह्म जाके मन उठा, सो पूर कर्मा नाशना। जल थल महियल स्वामी सोई, अवर न कहिए दूजा कोई, गुर ज्ञान अंजन काट्यो ब्रह्म सगला, अवर न दिस एक बिना। ऊचे ते ऊंचा दरबारा, कह न जाई अंत न पारा, गहर गंभीर अथा स्वामी, अतुल न जाई क्या मिना। तू करता तेरा सब किया, तुझ बिन अवर न कोई बिया, आद मद अंत प्रभ तू है, सगल पसारा तुम तना। जम दूत तिस निकट ना आवे, सत्संग हर कीर्तन गावे, सगल मनोरथ ताके पूर्ण, जो श्रवणी प्रभ का जस सुना। तू सबना का सब को तेरा, साचे साहेब गहर गंभीरा, कहो नानक से जन उत्तम, जो पावे स्वामी तुम मना। मारू महला पंजवा, प्रभ समरथ सर्व सुखदाना, सिमरो नाम हो मेरवाना। हर दाता जी जंत बेखारी, जन बाचे जा चंगना, मांगो जन तूर परमगत पावो, जन्म जन्म की मैल मिटावो, दीर्घ रोग मिटे हर औखद, हर निर्मल रापे मंगना। श्रवणी सुनाओ बिमल जा स्वामी, एकायोट तजो बिख कामी, निम निम पाए लगो दास तेरे, कर सुकृत नाही संगना। रसना गुण गावे हर तेरे, मिटै कमाते अवगुण मेरे, सिमर सिमर स्वामी मन जीवै, पंच दूत तज तंगना। चरण कमल जप बोहित चरिया, संत संग मिल सागर तरिया, अर्चा बंदन हर संत निवासी, बाहुड़ जो न नंगना। दास दासन को कर लेहो गोपाला, कृपा निधान दीन दयाला, सखा सहाई पूर्ण परमेश्वर, मिल कदे न होवी भंगना। मन तन अर्प धरी हर आगे, जन्म जन्म का सोया जागे, जिसका सा सोई प्रतपालक, हत त्यागी हूं मैं हंतना। जल थल पूर्ण अंतर जामी, काड़कड़ रव्या छल स्वामी, परम पीत खोई गुरपूरै, एक रव्या सरबंगना। जत कत पेखाओ प्रभ सुख सागर, हर तोट भंडार नाही रतनागर, अगे अगा किशमित नहीं पाई है, सो बूझै जिस कर पंगना। छाती शीतल मन तन ठंडा, जन्म मरण की मिटवी डंजा, कर गए काढ़ लिए प्रभ अपने, अम्यो तार दृष्टंगना। एको एक रव्या सब ठाई, तिस बिन दूजा कोई नाही, आद मद अंत प्रभ रव्या, तृष्ण बुझी परमंगना। गुर परमेसर गुर गोबिंद, गुर करता गुर सद बख्शंद, गुर जप जाप जपत फल पाया, ज्ञान दीपक संत संगना। जो पेखा सो सब के स्वामी, जो सुनना सो प्रभ की बानी, जो कीनो सो तुम्हें करायो, शरण सहाई संत तना। जाचक जाचे तुम्हें अरा दे, पतित पावन पूर्ण प्रभ सा दे, एको दान सर्व सो गुण निद, आन मंगन ने किंचना। काया पात्र प्रभ करने हारा, लगी लाग संत संगारा, निर्मल सोए बनी हर बाणी, मन नाम जीठे रंगना। सोले कला संपूर्ण फलिया,
ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਹੇਠਾ ਕਰ ਚੜਿਆ, ਅਨੰਦ ਬਿਨੋਦ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਖ ਨਾਨਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹਰ ਪੁੰਚਨਾ। ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਸੇਵਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਤੂੰ ਹੈ, ਹੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਸਾੜਾ, ਤੁਮੈ ਪਠਾਏ ਤਾਂ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ, ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਣਾ ਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਤੁਇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵਾ, ਤਾਂ ਪੀ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਕਾੜਾ, ਉਹਾਂ ਹੁਕਮ ਤੁਮਾਰਾ ਸੁਣੀਐ, ਇਹਾਂ ਹਰ ਜਸ ਤੇਰਾ ਭਣੀਐ, ਆਪੇ ਲੇਖਾ ਲੇਖੈ ਆਪੇ, ਤੁਮ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਝਾੜਾ, ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਸਭ ਬਾਰਕ ਥਾਰੇ, ਜਿਉਂ ਖਿਲਾਵੈ ਤਿਉਂ ਖੇਲਣ ਹਾਰੇ, ਉੱਜੜ ਮਾਰਗ ਸਭ ਤੁਮਹੀ ਕੀਨਾ, ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਵੇ ਪਾੜਾ, ਇੱਕ ਬੈਸਾਏ ਰੱਖੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਤਰ, ਇੱਕ ਪਠਾਏ ਦੇਹ ਦਸੰਤਰ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਉ ਘਾਸ ਇੱਕ ਹੀ ਕਉ ਰਾਜਾ, ਇਨ ਮੈਂ ਕਹੀਐ ਕਿਆ ਕੂੜਾ, ਕਵਨ ਸੋ ਮੁਕਤੀ ਕਵਨ ਸੋ ਨਰਕਾ, ਕਵਨ ਸਹਿ ਸਾਰੀ ਕਵਨ ਸੋ ਭਗਤਾ, ਕਵਨ ਸੋ ਦਾਨਾ ਕਵਨ ਸੋ ਹੋਛਾ, ਕਵਨ ਸੋ ਸੁਰਤਾ ਕਵਨ ਜੜਾ, ਹੁਕਮੇ ਮੁਕਤੀ ਹੁਕਮੇ ਨਰਕਾ, ਹੁਕਮ ਸੰਸਾਰੀ ਹੁਕਮੇ ਭਗਤਾ, ਹੁਕਮੇ ਹੋਛਾ ਹੁਕਮੇ ਦਾਨਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਅਵਰ ਧੜਾ, ਸਾਗਰ ਕੀਨਾ ਅਤੁਮ ਪਾਰਾ, ਇੱਕ ਖੜੇ ਰਸਾ ਤਲ ਕਰ ਮਨਮੁਖ ਗਾ ਵਾਰਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵੈ ਆਪੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਨਕਾ ਸੱਚ ਬੇੜਾ, ਕੌਤਕ ਕਾਲ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਪਠਾਇਆ, ਜੀ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਸਮਾਇਆ, ਵੇਖੈ ਵਿਖਸੈ ਸਭ ਰੰਗ ਮਾਣੇ, ਰਚਨ ਕੀਨਾ ਇੱਕ ਅਖਾੜਾ, ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਵੱਡਦਾ ਤਾਰ ਵੱਡੀ ਜਿਸ ਜਾਈ, ਅਗਮਾ ਗੋਚਰ ਬੇਅੰਤਾ ਤੋਲਾ, ਹੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਅਹਾੜਾ, ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਦੂਜਾ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਪੂਜਾ, ਆਪ ਸੁਗਿਆਨੀ ਆਪ ਧਿਆਨੀ, ਆਪ ਸਤਵੰਤਾ ਅਤ ਗਾੜਾ, ਕੇਤੜਿਆਂ ਦਿਨ ਗੁਪਤ ਕਹਾਇਆ, ਕੇਤੜਿਆਂ ਦਿਨ ਦਿਨ ਸੁਨ ਸਮਾਇਆ, ਕੇਤੜਿਆਂ ਦਿਨ ਤੁੰਦੂਕਾਰਾ, ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਗਟੜਾ, ਆਪੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਬਲ ਕਹਾਇਆ, ਆਪੇ ਸੂਰਾ ਅਮਰ ਚਲਾਇਆ, ਆਪੇ ਸਿਵਰ ਤਾਈਆਂ ਨਿਯੰਤਰ, ਆਪੇ ਸੀਤਲ ਠਾਰ ਗੜਾ, ਜਿਸੈ ਨਵਾਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਜੇ, ਨਾਮ ਵਸੈ ਤਿਸ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਤਿਸ ਹੀ ਸੁਖ ਤਿਸ ਹੀ ਠਕਰਾਈ, ਤਿਸੈ ਨਾ ਆਵੈ ਜਮ ਨੇੜਾ, ਕੀਮਤ ਕਾਗਦ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬੇਅੰਤ ਗੁਸਾਈ, ਆਦ ਮਧ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ, ਹਾਥ ਤਿਸੈ ਕਹਿ ਨੇ ਬੇੜਾ, ਤਿਸੈ ਸਰੀਕ ਨਾਹੀ ਰੇ ਕੋਈ, ਕਿਸ ਹੀ ਬੁੱਤੈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਈ, ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਚੋਜ ਖੜਾ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅਚਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਮਧਸੂਦਨ ਦਾ ਮੋਦਰ ਸਵਾਮੀ, ਰਿਖੀ ਕੇਸ ਗੋਵਰਧਨ ਧਾਰੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਹਰ ਰੰਗਾ, ਮੋਹਨ ਮਾਧਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੇ, ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਹਰ ਜੀਵ ਅਸਰ ਸੰਘਾਰੇ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਅਵਨਾਸੀ ਠਾਕਰ, ਘੜ ਘੜ ਵਾਸੀ ਹੈ ਸੰਗਾ, ਧਰਣੀ ਧਰ ਈਸ ਨਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰਾਇਣ, ਦਾੜਾ ਅਗਰੇ ਪ੍ਰਥਮ ਤਰਾਇਣ, ਬਾਵਨ ਰੂਪ ਕੀਆ ਤੁਧ ਕਰਤੇ, ਸਭ ਹੀ ਸੇਤੀ ਹੈ ਚੰਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦ ਜਿਸ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਿਆ, ਬਨਵਾਲੀ ਚੱਕਰ ਪਾਰ ਦਨਸ ਅਨੁਪਿਆ, ਬਨਵਾਲੀ ਚੱਕਰ ਪਾਣ ਦਰਸਿਆ ਨੂਪਿਆ, ਸਹਿਸ ਨੇਤਰ ਮੂਰਤ ਹੈ ਸਹਿਸਾ, ਇਕ ਦਾਤਾ ਸਭ ਹੈ ਮੰਗਾ, ਭਗਤ ਵਛਲ ਅਨਾਥ ਹੈ ਨਾਥੇ, ਗੋਪੀ ਨਾਥ ਸਗਲ ਹੈ ਸਾਥੇ, ਬਾਸ ਦੇਵ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਤੇ, ਬਰਨਾ ਸਾਕੋ ਗੁਣ ਅੰਗਾ, ਮੁਕੰਦ ਮਨੋਹਰ ਲਖਮੀ ਨਾਰਾਇਣ, ਦਰੋਪਦੀ ਲੱਜਾ ਨਿਵਾਰਿਓ ਧਾਰਨ,
कमला कंत करै कंतूहल, आनंद विनोदी नेह संगा, अमोग दर्शन अजूनी संपाओ, अकाल मूर्त जिस कदे नाही खाओ, अवनाशी अवगात्या गोचर, सब किश तुझ ही है लगा। श्री रंग बैकुंठ के वासी, माशकश कूरम आग्या उतरासी, केसव चलत करै निराले, कीता लोड़ै सो होएगा। निरहारी निरवैर समाया, तार खेल चतुर्भुज कहाया, सावर सुंदर रूप बनावै, बेण सुनत सब मोहैगा। बनमाला विभूखन कमलैन, सुंदर कुंडल मुकट बैन, शंख चक्र गदा है तारी, महासारथी सतसंगा, पीत पितंबर त्रिपवन धनी, जगन्नाथ गोपाल मुख पणी, सारंग तर भगवान बीठला, मैं गणत न आवै सरबंगा। नेह कंटक नेह केवल कहिया, धनंजय जलथल है महिया, मृत लोक पयाल समीपत, अस्थिर थान जिस है अपगा। पतत पावन दुख पै भंजन, अहंकार निवारण है पवखंडन, भगती तोखत दीन कृपाला, गुणे न कित ही है पिगा। निरंकार अशाल्या डोलो, ज्योत स्वरूपी सब जग मौलो, सो मिलै जिस आप मिलाए, आपो कोय न पावेगा। आपे गोपी आपे काना, आपे गऊ चरावे बाना, आप यो पावै आप को पावै, तुद लेप नहीं एक तिलरंगा। एक जी ही गुण कमन वखानै, सहज फनी सेख अंत न जानै, नव तन नाम जपै दिन राती, एक गुण नाही प्रभ कै संगा। ओट गही जगत पित सरनाया, पै भयानक जमदूत दुत्र है माया, हो कृपाल इच्छा कर रखो, साध संपन कै संग संगा। दृष्ट मान है सगल मथेना, एक मांगो दान गोबिंद संतरेना, मस्तक लाए परम पद पावो, जिस प्राप्त सो पावेगा। जिन कहो कृपा करी सुखदाते, तिन साधु चरण लहर दे पराते, सगल नाम निधान तिन पाया, अनहद शब्द मन वाजंगा। कीर्तम नाम कथे तेरे जिहबा, सत नाम तेरा परा पूर्बला। कहो नानक भगत भए सरनाई, देहो दर्शमन रंग लगा। तेरी गतमित तू है जानै, तू आपे कथै तै आप वखाणै। नानक दास दासन को करियो, हर पावै दासा राग संगा। मारू महला पंजवां, अल्लै अगम खुदाई बंदे, छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे, होए पै खाक फकीर मुसाफर, एहो दरवेश कबूल दरा। सच निवाज यकीन मुसल्ला, मनसा मारने वारो आसा, देह मसीत मन मौलाना, कलम खुदाई पाक खरा। सरा सरयत ले कमावो, तरीक तर्क खोज टोलावो, मारफत मन मारो अब्दाला, मिलो हकीकत जित फिर ना मरा। कुरान कतेब दिल माए कमाही, दस औरात रखो बदराही, पंच मर्द सिदक ले बांधो, खैर सबूरी कबूल परा। मक्का मेहर रोजा पै खाका, पिस्त पीर लफज कमाए अंदाजा, हूर नूर मुसक खुदाया, बंदगी अल्लै आला हुजरा। सच कमावै सोई काजी, जो दिल सोदै सोई हाजी, सो मुल्ला मलियून निवारै, सो दरवेश जिस अवतरा। सबे वक्त सबे करवेला, खालक याद दिलै मैं मौला, तस्बी याद करो दस मर्दन, सुनत सील बंधन बरा। दिल मैं जानो सब फिलहाला, खिलखाना बिरादर हमू जंजाला, मीर मलक उमरे फानाया, एक मुकाम खुदाए दरा।
ਅਵਲ ਸਿਫਤ ਦੂਜੀ ਸਾਬੂਰੀ ਤੀਜਾ ਹਲੇਮੀ ਚੌਥਾ ਖੈਰੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪੰਜੇ ਇਕਤ ਮੁਕਾਮ ਮੈਂ ਇਹ ਪੰਜ ਵਖਤ ਤੇਰੇ ਅਪਰ ਪਰਾ ਸਗਲੀ ਜਾਣ ਕਰੋ ਮੌਦੀਫਾ ਬਦ ਅਮਲ ਛੋੜ ਕਰੋ ਹੱਥ ਕੂਜਾ ਖੁਦਾਏ ਏਕ ਬੁਝ ਦੇਵੋ ਬਾਂਗਾਂ ਬੁਰਗੂ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਖਰਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਬਖੋਰੋ ਖਾਣਾ ਦਿਲ ਦਰਿਆਓ ਧੋਵੋ ਮੈਲਾਣਾ ਪੀਰ ਪਛਾਣੈ ਪਿਸਤੀ ਸੋਈ ਅਜਰਾਈਲ ਨਾ ਦੋਈ ਠਰਾ ਕਾਇਆ ਕਿਰਦਾਰ ਔਰਤ ਯਕੀਨਾ ਰੰਗ ਤਮਾਸੇ ਮਾਣ ਹਕੀਨਾ ਨਾਪਾਕ ਪਾਕ ਕਰ ਹਦੂਰ ਹਦੀਸਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ

बोलत ही बड़लाज, राम जे पाया राम ते भवे न बार बार रहाओ, झूठा जग डहके कना दिन दुए बर्तन की आस, राम उदक जेह जन पिया ते बौर न पई प्यास, गुर प्रसाद जे बूझे आयासा ते भया निरास, सब सच नदरी आया जो आतम भया उदास, राम नाम रस चाखिया हर नामा हर तार, कहो कबीर कंचन पया प्रम गया समुंदर पार, उदक समुंद सलल की साखिया नदी तरंग समावेंगे, सुनने सुन मिलिया समदर्शी पवन रूप होए जावेंगे, बहुर हम काहे आवेंगे आमन जाना हुक्म तिसा का, हुक्मे बुझ समावेंगे रहाओ, जब चुके पंच तात की रचना ऐसे परम चुकावेंगे, दर्शन छोड़ पे समदर्शी एको नाम ते आवेंगे, जित हम लाए तिथि लागे तैसे कर्म कमावेंगे, हर जी कृपा करे जाओ अपनी तो गुर के शब्द समावेंगे, जीवत मरो मरो फिर जीवो, जीवत मरो मरो फुन जीवो, पुनरप जन्म ना होई, कहो कबीर जो नाम समाने सुन रया लिव सोई, जाओ तुम को दूर करत हो तो तुम मुक्त बतावो, एक अनेक होए रहो सगल मैं अब कैसे परमावो, राम मोको तार कहां ले जई है, सो दो मुक्त कहां देव कैसी, कर प्रसाद मोहे पाई है रहाओ, तारन तरन तवे लग कही है जब लग तत न जानिया, अब तो बिमल भय कट ही मैं कह कबीर मन मानिया, जिन गढ़ कोट किए कंचन के छोड़ गया सो रावन, काहे की जित है मन पावन, जब जब आए केस ते पकड़ तै हर को नाम छावन रहाओ, काल अकाल खसम का कीना एहो परपंच बधावन, कहे कबीर ते अंते मुक्ते जिन हृदय राम रसायन, देही गावा जियो तर महतो बसे पंच किरसाना, नैनू नगटू श्रवनु रसपत इंद्री कया नमाना, बाबा अब ना बसो ए गाओ, करी करी का लेखा मांगे काहित चेतु नाओ रहाओ, धर्म राय जब लेखा मांगे बाकी निकसी पारी, पंच किरसान वा पाग गए ले बांधे ओ जियो दरबारी, कह कबीर सुनो रे संतो खेत ही करो नबेरा, अब की बार बख्श बंदे को बहोर ना पाओ जल फेरा, राग मारू बाणी कबीर जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अनपव किने ना देखिया बैरागी अड़े बिन पै अनपव होए वना हम्बे, सहो हदूर देखे ता पव पवे बैरागी अड़े, हुक्मे बूझे ता निरपव होए वना हम्बे, हर पाखंड ना की जाई बैरागी अड़े पाखंड रता सब लोक वना हम्बे, त्रिसना पासना छोड़ई बैरागी अड़े ममता जालिया पिंड वना हम्बे, चिंता जाल तन जालिया बैरागी अड़े जे मन मृतक होए वना हम्बे, सतगुर बिन बैराग ना होवई बैरागी अड़े जे लोचे सब कोए वना हम्बे, कर्म होवे सतगुर मिले बैरागी अड़े सहजे पावे सोए वना हम्बे, कहो कबीर एक बेनती बैरागी अड़े मोको पौजल पार उतार वना हम्बे, राजन कौन तुम्हारे आवे ऐसो पाओ बिदर को देखियो, ओ गरीब मोहे पावे रहाओ, हस्ती देख परम ते पूला श्री भगवान ना जानिया, तुमरो दूध बिदर को पानो अमृत कर मैं मानिया, खीर समान साग मैं पाया गुण गाव त्रैन बिहानी, कबीर को ठाकर अंध बिनोदी जातना काहू की मानी, सलोक कबीर गगन मामा बाजेओ परयो निशा न काओ, खेत जो मांड्यो सूरमा अब जूजन को दाओ, सूरा सो पहचानिया जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छड़े खेत, कबीर का शब्द राग मारू बाणी नाम देओ जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद,
ਚਾਰ ਮੁਕਤ ਵਿਚਾਰੈ ਸਿੱਧ ਮਿਲ ਕੇ ਦੂਲੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨ ਪਰਿਓ ਮੁਕਤ ਭਇਓ ਚਹੂੰ ਜੁਗ ਜਾਣਿਓ ਜਸ ਕੀਰਤ ਮਾਥੈ ਸ਼ਤਰ ਤਰਿਓ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਜਪਤ ਕੋ ਨਾ ਤਰਿਓ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਧ ਕੀ ਸੰਗਤ ਭਗਤ ਭਗਤਾਂ ਕੋ ਨਾਮ ਪਰਿਓ ਰਹਾਓ ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਬਿਰਾਇਤ ਦੇਖ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਮ ਡਰਿਓ ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਰਾਮ ਬਲ ਗਰਜਤ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸੰਤਾਪ ਹਿਰਿਓ ਅਮਰੀਕੋ ਦਿਓ ਅਭੈ ਪਦ ਰਾਜ ਭੇਖਣ ਅਧਿਕ ਕਰਿਓ ਨਾਉ ਨਿਧ ਠਾਕਰ ਦੇਈ ਸੁਦਾਮੈ ਧਰੂ ਅਟਲ ਅਜਹੂ ਨਾ ਟਰਿਓ ਭਗਤ ਹੇਤ ਮਾਰਿਓ ਹਰਨਾਕਸ ਨਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਹੋਏ ਦੇਹ ਧਰਿਓ ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਭਗਤ ਬਸ ਕੇਸਵ ਅਜਹੂ ਬਲਕੇ ਦੁਆਰ ਖਰੋ ਮਾਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਦੀਨ ਵਿਸਾਰਿਓ ਰੇ ਦੀਵਾਨੇ ਦੀਨ ਵਿਸਾਰਿਓ ਰੇ ਪੇਟ ਭਰਿਓ ਪਸੂਆ ਜਿਉਂ ਸੋਇਓ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਹੈ ਹਾਰਿਓ ਰਹਾਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਬਹੂ ਨਹੀਂ ਕੀਨੀ ਰਚਿਓ ਤੰਦੈ ਝੂਠ ਸਵਾਨ ਸੂਕਰ ਬਾਏ ਸਜਵੈ ਭਟਕਤ ਚਾਲਿਓ ਊਠ ਆਪਸ ਕਉ ਦੀਰਘ ਕਰ ਜਾਨੈ ਔਰਨ ਕਉ ਲਗ ਮਾਤ ਮਨਸਾ ਬਾਚਾ ਕਰਮ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਦੁਜਗ ਜਾਤ ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਚਾਤਰੀ ਬਾਜੀ ਗਰਬੇ ਕਾਮ ਨਿੰਦਾ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਸਿਰਾਨੋ ਕਬਹੂ ਨਾ ਸਿਮਰਿਓ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਚੇਤੈ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖ ਮੁਕਤ ਗਵਾਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਾਣਿਓ ਨਹੀਂ ਕੈਸੇ ਉੱਤਰ ਸਪਾਰ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਜੈ ਦਿਓ ਜੀਓ ਕੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੰਦ ਸਤ ਭੇਦਿਆ ਨਾਦ ਸਤ ਪੂਰਿਆ ਸੂਰ ਸਤ ਖੋੜਸਾ ਦੱਤ ਕੀਆ ਅਬਲ ਬਲ ਤੋੜਿਆ ਅਚਲ ਚਲ ਥਪਿਆ ਅਘੜ ਘੜਿਆ ਤਹਾਂ ਅਪਿਓ ਪੀਆ ਮਨ ਆਦਿ ਗੁਣ ਆਦਿ ਵਖਾਣਿਆ ਤੇਰੀ ਦੁਬਦਾ ਦ੍ਰਿਠ ਸਮਾਨਿਆ ਰਹਾਓ ਅਰਧ ਕਉ ਅਰਧਿਆ ਸਰਧ ਕਉ ਸਰਧਿਆ ਸਲਲ ਕਉ ਸਲਲ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਬਦਤ ਜੈ ਦੇਉ ਜੈ ਦੇਵ ਕਉ ਰਮਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਵਾਣ ਲਿਵਲੀਣ ਪਾਇਆ ਕਬੀਰ ਮਾਰੂ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਪਛਤਾਹੇਗਾ ਮਨ ਪਾਪੀ ਜੀਆਰਾ ਲੋਭ ਕਰਤ ਹੈ ਆਜ ਕਾਲ ਉੱਠ ਜਾਹੇਗਾ ਰਹਾਓ ਲਾਲਚ ਲਾਗੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਾਇਆ ਪਰਮ ਪੁਲਾਹੇਗਾ ਧਨ ਜੋਬਨ ਕਾ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੈ ਕਾਗਦ ਜਿਉ ਗਲ ਜਾਹੇਗਾ ਜੋ ਜਮ ਆਏ ਕੇਸ ਗਹਿ ਪਟਕੈ ਤਾਂ ਦਿਨ ਕਿਛ ਨਾ ਬਸਾਹੇਗਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ

कहत कबीर सुनौ रे संत हो, साध संगत तर जाहेगा। राग मारू बाणी रविदास जीओ की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे शिदर तरे रहाओ। जा की शोत जगत को लागे, ता पर तू ही टरे। नीचे उच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। नाम देव कबीर तलोचन सदना सहन तरे, कह रविदास सुनो रे संतो, हर जियो ते सबे सरे। मारू सुख सागर सुर तर चिंता मानो, काम तेन बस जा के रे। चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, नवनिध कर तलता कै। हर हर हरना जप सरसना, अवर सब छाड बचन रचना रहाओ। नाना ख्यान पुराण बेद बिद, चौतीस अक्षर माही। ब्यास विचार कहो परमार्थ, राम नाम सर नाही। सहज समाध उपाद रहत होए, बड़े भाग लिव लागी। कह रविदास उदास दास मत, जन्म मरण पै भागी। तुखारी संत महला पहला, बारह माह एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तू सुन किरत करमा पुरब कमाया, सिर सिर सुख सहमा देह सो तू भला। हर रचना तेरी क्या गत मेरी, हर बिन घड़ी ना जीवा। प्रे बाज दुहेली कोय ना भेली, गुरमुखे अमृत पीवा। रचना राच रहे निरंकारी, ब्राह्मण कर्म सुकर्मा। नानक पंथ निहाले सा तन, तू सुन आत्म रामा। बाबीहा प्रयो बोले कोकल बाणिया, सा तन सबरस चोले अंक समाणिया। हर अंक समाणी जा प्रा पाणी, सा सुहागण नारे। नाव कर थाप महल कर ऊंचो, निज कर वास मुरारे। सब तेरी तू मेरा प्रीतम, निस्बासर रंग रावै। नानक प्रयो प्रयो चवै बबीहा, कोकल शब्द सुहावै। तू सुन हर रस पिने प्रीतम अपने, मंत्र रवत रवन्ने कड़ी ना बिसरै। क्यों कड़ी बिसारी हौ बलिहारी, हौ जीवा गुण गाए। ना कोई मेरा हौ किसके राह, हर बिन रहण ना जाए। ओट गही हर चरण निवासे, पय पवित्र शरीरा। नानक दृष्ट दीर्घ सुख पावै, गुर शब्दी मन तीरा। बरसै अमृत तार बूंद सुहावनी, साजन मिले सह सुभाए। हर स्यो प्रीत बनी, हर मंदिर आवै जा प्रभावै। तानी उबी गुण सारी, घर घर कंत्र वै सुहागण, हौ क्यों कंत विसारी। उनम कन छाए बरस सुभाए, मंतन प्रेम सुखावै। नानक वरसै अमृत बाणी, कर कृपा कर आवै। चेत बसंत पला पवर सुहावड़े, बन फूले मंझ बार। मैं फिर कर बाहुड़ै, फिर कर नहीं आवै। तन क्यों सुख पावै, बिरह बिरो तन छीजै। कोकले अंब सुहावी बोलै, क्यों दुख अंक सहीजै। पवर पवंता फूली डाली, क्यों जीवा मर माए। नानक चेत सहज सुख पावै, जे हर वार घर तन पाए। वैसाख पला साखा वेस करे, तन देखे हर द्वार आवो दया करे। घर आओ प्यारे दुत्तर तारे, तुद बिन अड ना मोलो। कीमत कौन करे दुद पावा, देख दिखावै ढोलो। दूर ना जाना अंतर माना, हर का महल पछाना। नानक वै साखी प्रपावै, सुरत शब्द मन माना। माहो जेठ पल

नदर करे सतगुरु मिलाए, नानक हिरदय नाम वसाए, पैरव महला तीजा। नामे उदरे सब जितने लो, गुरमुख जिन्ना प्राप्त होए। हर जियो अपनी कृपा करे, गुरमुख नाम वड्याई दे रहाओ। राम नाम जिन प्रीत प्यार, आप उदरे सब कुल उदाहरण हार। बिन नावें मनमुख

त्रिग त्रिग मनमुख जन्म गवाया, पूरे गुरु की सेवना कीनी, हर का नाम ना पाया रहाओ। गुर का शब्द सब रोग गवाए, जिसनो हर जियो लाए, नामे नाम मिले वड़ियाई, जिसनो मन वसाए। सतगुर भेटै ता फल पाए, सच करनी सुसार, से जन निर्मल जो हर लागे, हर नामे तरह प्यार। तिन की रेण मिले ता मस्तक लाई, जिन सतगुर पूरा त्याया, नानक तिन की रेण पूरे भाग पाईए, जिनी राम नाम चित लाया। पैरो महला तीजा, शब्द विचारे सो जन साचा, जिन कै हृदय साचा सोई, साची भगत करै दिन राती, ता तन दुख न होई। भगत भगत कह सब कोई, बिन सतगुर सेवे भगत न पाई है, पूरे भाग मिले प्रभ सोई रहाओ। मनमुख मूल गवावै, लाभ मांगै, लाहा लाभ किदू होई, जमकाल सदा है सिरी उपर, दूजे पाए पत खोई। बहले पेख पवै दिन राती, हों मैं रोग न जाई, पढ़ पढ़ लूजै बाद वखाणै, मिल माया सुरत गवाई। सतगुर सेवै परम गत पावै, नाम मिलै वडियाई, नानक नाम जिन्ना मन वसिया, दर साचै पथ पाई। पैरो महला तीजा, मनमुख आसा नहीं उतरै, दूजे पाए खुवाए, उधर नैसान न भरिए कबहू, तृष्णागन पचाए। सदा आनंद राम रस राते, हृदय नाम दुबदा मन भागी, हर हर अमृत पीतृ पताते रहाओ। आपे पार ब्रह्म सृष्ट जिन साजी, सिर सिर तंदै लाए, माया मोह किया जिन आपे, आपे दूजे लाए। तिसनो केहो कहियै जे दूजा होवै, सब तुद्दै महे समाए, गुरमुख ज्ञान तत् विचारा, ज्योति ज्योत मिलाए। सो प्रभ साचा सद ही साचा, साचा सब आकारा, नानक सतगुर सोजी पाई, सच नाम निस्तारा। पैरो महला तीजा, कल मैं प्रेत जिनी राम ना पिछाता, सतजुग परमहंस विचारी। द्वापर त्रेतै मानस वरतै, विरले हों मैं मारी, कल मैं राम नाम वडियाई, जुग जुग गुरमुख एको जाता, विणना वै मुक्त ना पाई रहाओ। हिरदै नाम लिखै जन साचा, गुरमुख मन वसाई, आप तरै सगले कुल तारै, जिनी राम नाम लिवलाई। मेरा प्रभ है गुण का दाता, अवगण शब्द जलाए, जिन मन वसिया से जन सोहे, हृदय नाम वसाए। घर दर महल सतगुरु दिखाया, रंग सो रलिया माणै, जो किश कहै सो भला कर मानै, नानक नाम वखाणै। पैरो महला तीजा, मनसा मनै समाए लै।

नाम बिना सब दुनिया शार, अचरज तेरी कुदरत तेरे कदम सलाह, गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह, नी तरिया तरपन खुदाए, गरीब निवाज दिन रहन ते आए, नानक कहो खुद खसम मेहरवान, अलो न विसरै दिल जी प्राण, पहरो महला पंजवा, साच पदार्थ गुरमुख लहो, प्रभ का पाणा सतकर सहो, जीवत जीवत जीवत रहो, राम रसायन ने तुठ पीवो, हर हर हर हर रसना कहो रहाओ, कलयुग मैं कनाम उदार, नानक बोले ब्रह्म विचार, पहरो महला पंजवा, सतगुर सेव सर्व फल पाए, जन्म जन्म की मैल मिटाए, पदत पावन प्रभ तेरो नाओ, पूर्व कर्म लिखे गुण गाओ, रहाओ साधु संग होवे उदार, सोभा पावे प्रभ कै द्वार, सर्व कल्याण चरण प्रभ सेवा, तूर बंश है सब सुर नर देवा, नानक पाया नाम निधान, हर जप जप उदरिया सगल जहान, पहरो महला पंजवा, अपने दास कौ कंठ लगावै, निंदक कौ अगन में पावै, पापी ते राखे नारायण, पापी पापी की गत कथू नाही, पापी पचिया आप कमायण, रहाओ दास राम जीओ लागी प्रीत, निंद की होई विपरीत, पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया, दुखी अपना कीता पाया, आए न जाई रहया समाई, नानक दास हर की सरनाई, राग पहराओ महला पंजवा, चौप दे कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद श्री तर मोहन सगलियो पावन, निरंकार सुखदाता, ऐसा प्रभ छोड़ करे अन सेवा, कौन बिख्या रस माता, अरे मन मेरे तू गोविंद पाज, अवर्यो पाव सगल मैं देखे, जो चितवी है तित बिगरस काज, रहाओ ठाकर छोड़ दासी को सिमरै, मनमुख अंध ज्ञाना, हर की भगत करै ते निंदै, निगुरे पशु समाना, जियो पिंड तन तन सब प्रभ का, स्वागत कहते मेरा, अहम बुद्ध दुर्मत है मैली, बिन गुर भव जल फेरा, होम जग जप तप सब संयम, तट तीर्थ नहीं पाया, मिटाया पै सरनाई, गुरमुख नानक जग तराया, पैरों महला पंजवा, बन मैं पेख्यो तरण मैं पेख्यो, गृह पेख्यो उदासाए, दंड तार जट तारै पेख्यो, वर्त नेम तीर्थाए, संत संग पेख्यो मन माए, ऊप पयाल सर मैं पूर्ण, रस मंगल गुण गाए, रहाओ जोग पेख सन्यासै पेख्यो, जत जंगम कपड़ाए, तपी तपी सरमन मैं पेख्यो, नट नाटक निरताए,

कर्तार, जैसी ऊपर नजर करे करतार, तेह जन के सब का सवार, तिसका राखा एको सोए, जन नानक पढ़ना सा कह कोए, पैरो महला पंज।

तौ करिया जे दूजा करता तौ करिया जे अन्याय को मरता तौ करिया जे कह जाने नाही क्या करिया जा भरपूर समाही तौ करिया जे किश होए तिंगाण तौ करिया जे भूल रजाण गुर कहया जो होए सब प्रभ ते तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते प्रभ तू है ठाकर सब को तेरा जो पावे त्यों करे निबेरा दुतिया नास तो एक रया समाए राखो पैज नानक शरणाए पैरो महला पंजवा बिन बाजे कैसो निर्तकारी बिन कंठ कैसे गव नहारी जील बिना कैसे बजर बाप नाम बिना बिरथे सब काज नाम बिना कहो को तरिया बिन सतगुर कैसे पार परिया रहाओ बिन जेहवा कहाँ को बगता बिन श्रवना कहाँ को सुनता बिन नेत्रा कहाँ को पेख है नाम बिना नर कहीं न लिख है बिन विद्या कहाँ कोई पंडित बिन अमरा कैसे राज मंडित बिन बुझे कहाँ मन ठहराना नाम बिना सब जग बौराना बिन बैराग कहाँ बैरागी बिन हो त्याग कहाँ को त्यागी बिन बस पंच कहाँ मन चूरे नाम बिना ससद ही चूरे बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान बिन पेखे कहो कैसो ध्यान बिन पै कखनी सर्व बेकार कहो नानक दर का विचार पैरो महला पंजवा हों मैं रोग मानख कौ दीना काम रोग मैंगल बस लीना दृष्ट रोग पचमोए पतंगा नाद रोग खप गए कोरंगा जो जो दिसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी रहाओ जेहवा रोग मीन ग्रसयानो बासन रोग पवर बिनसानो हेत्रो का सगल संसारा त्रिबद रोग मैं बदे बिकारा रोगे मरता रोगे जन्मे रोगे फिर जोनी पर मैं रोग बंद रहन रति ना पावे बिन सतगुर रोग कतै ना जावे पार ब्रह्म जसकीनी दया बहां पकड़ रोगों कढ लया टूटे बंधन साध संग पाया कहो नानक गुर रोग मिटाया पैरो महला पंजवा चीत आवै ता महा आनंद चीत आवै ता सब दुख पंज चीत आवै ता सरदा पूरी चीत आवै ता कबै ना चूरी अंतर राम राय प्रगटे आए गुरपुरे दियो रंग लाए रहाओ चीत आवै ता सर्ब को राजा चीत आवै ता पूरे काजा चीत आवै ता रंग गुलाल चीत आवै ता सदा निहाल चीत आवै ता सद धनवंता चीत आवै ता सद निपरंता चीत आवै ता सब रंग माणे चीत आवै ता चुकी काणे चीत आवै ता सहज कर पाया चीत आवै ता सुन समाया चीत आवै सद कीर्तन करता मन मान्या नानक भगवंता पैरो महला पंजवा बाप हमारा सद चिरंगजीवी भाई हमारे सद ही जीवी मीत हमारे सदा बनासी कुटुंब हमारा नी करवासी हम सुख पाया ता सवै सुहेले गुरपुरे पिता संग मेले रहाओ मंदिर मेरे सब ते उच्चे देश मेरे बेअंता पूछे राज हमारा सदी निचल माल हमारा खूटा बेचल सोभा मेरी सब जुग अंतर बाज हमारी थान थनंतर कीर्त हमरी कर कर होई भगत हमारी सबनी लोई पिता हमारे प्रगटे मांझ पिता पुत्रल किन्नी सांझ कहो नानक जो पिता पतीने पिता पूते कै रंग लीने पैरो महला पंजवा निर्वैर पुरख सतगुर प्रभ दाते हम अपराधी तुम बख्साते जिस पापी को मिले ना टोई शरण आवै ता निर्मल होई सुख पाया सतगुरु मनाए सफल पाए गुरु ते आए रहाओ
पार ब्रह्म सतगुर आदेश, मन तन तेरा सब तेरा देश। चूका पड़दा ता नदरी आया, खसम तू है सबना के राया। तिस पाणा सूके काष्ट हरिया, तिस पाणा ता थल सिर सरिया। तिस पाणा ता सब फल पाए, चिंत गई लग सतगुर पाए। हराम खोर निर्गुण कौ तूठा, मन तन शीतल मन अमृत बूठा। पार ब्रह्म गुर पय दयाला, नानक दास देख पय निहाला। पैरव महला पंजवा, सतगुर मेरा बेमोहताज। सतगुर मेरे सच्चा साज, सतगुर मेरा सब सका दाता, सतगुर मेरा पुरख बिदाता। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक पाग सो लागा सेव। रहाओ सतगुर मेरा सर्व प्रतपाल है, सतगुर मेरा मार जीवाल है। सतगुर मेरे की वड़ियाई, प्रगट पई है सबनी थाई। सतगुर मेरा तान नितान, सतगुर मेरा कर दी बाण। सतगुर कहो सदबल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। जिन गुर सेव्या तिस पौ ना ब्यापै, जिन गुर सेव्या तिस दुख ना संतापै। नानक सो दे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद। पैरव महला पंजवा, नाम लैत मन प्रगट पया। नाम लैत पाप तंते गया, नाम लैत सगल पुरबाया। नाम लैत अठ सठ मजनाया, तीर्थ हमरा हर को नाम। गुरु उपदेसया तत् ज्ञान रहाओ। नाम लैत दुख दूर पराना, नाम लैत अतमूड सुगयाना। नाम लैत प्रगट उजियारा, नाम लैत छुट्टे जंजारा। नाम लैत जम नेड़ ना आवै, नाम लैत दरगह सुख पावै। नाम लैत प्रभ कह सबास, नाम हमारी साची रास। गुर उपदेश कयो एहो सार, हर कीर्त मन नाम आधार। नानक उधरे नाम पुने चार, अवर कर्म लोके पतियार। पैरव महला पंजवा, नमस्कार ता कौ लख बार। एहो मन दीजै ता कौ वार, सिमरन ता कै मिटै संताप। होए आनंद ना व्यापै ताप, ऐसो हीरा निर्मल नाम। जास जपत पूर्ण सब काम रहाओ। जा की दृष्ट दुखडेरा टह, अमृत नाम शीतल मन गह। अनक भगत जाके चरण पुजारी, सगल मनोरथ पूर्ण हारी। खिन मैं ऊने सुबर भरिया, खिन मैं सूके कीने हरिया। खिन मैं निथावे कौ दीनो थान, खिन मैं निमाणे कौ दीनो मान। सब मैं एक रहा पर पूरा, सो जापै जे सतगुर पूरा। हर कीर्तन ताको आधार, कहो नानक जिस आप दयार। पैरव महला पंजवा, मोहे दुहागन आप सिंगारी। रूप रंग दे नाम सवारी, मिट्यो दुखर सगल संताप। गुर होए मेरी माई बाप, सखी सहेरी मेरे ग्रस्त आनंद। कर कृपा भेटे मोहे कंत रहाओ। तपत बुझी पूर्ण सब आसा, मिटिया देर भय प्रगासा। अनहद शब्द अचरज बिस्माद, गुरपूरा पूरा प्रसाद। जा कौ प्रगट भय गोपाल, ता कै दर्शन उसदा निहाल। सर्ब गुणा ता कै बहुत निदान, जा को सतगुर दियो नाम। जा कौ भेट्यो ठाकुर अपना, मन तन शीतल हर हर जपना। कहो नानक जो जन प्रभ पाए, ता की रेन बिरला को पाए। पैरो महला पंजवा, चितवत पाप ना आल के आवै। बेसवा भजत किशने शरमावै, सारो दिन समझूरी करे। हर सिमरन की वेला बज्जर सिर पर, माया लग पुलो संसार। वा पुलाया पुलावन हार, राच रहया बिरथा व्योहार रहाओ।
पेखत माया रंग बिहाए, गड़बड़ करे कौडी रंग लाए, अंध व्यवहार बंद मंत आवे, करने हारना जी मैं आवे, करत करत इव ही दुख पाया, पूर्ण होत ना कार जमाया, काम क्रोध लोभ मन लीना, तड़प मुआ जो जल बिन मीना, जिसके राखे होए हरे आप, हर हर नाम सदा जप जाप, साध संग हर के गुण गाया, नानक सतगुर पूरा पाया, पैरो महला पंजवा, अपनी दया करे सो पाए, हर का नाम मन वसाए, साध शब्द हृदय मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाहे, राम नाम जी को आधार, गुर प्रसाद जपो नित पाई, तार ले सागर संसार रहाओ, जिनको लिखिया हर एहो निदान, सहजंतर गै पावे मान, सुख सहज आनंद गुण गाओ, अगे मिले निथावे थाओ, जुगे जुगंतर एहो तत सार, हर सिमरन साचा विचार, जिस लड़ लाए लय सो लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, तेरे भगत भगतन का आप, अपनी मैं माया पे जाप, जी जंत सब तेरे हाथ, नानक के प्रभ सदी साथ, पैरो महला पंजवा, नाम हमारे अंतर जामी, नाम हमारे आवे कामी, रोम रोम रव्या हर नाम, सदगुर पूरे कीनो दान, नाम रतन मेरे पंडार, अगम्या मोला अपरिया पार, रहाओ नाम हमारे निचल तनी, नाम की महिमा सब में बनी, नाम हमारा है पूरा साहो, नाम हमारा बेपरवाहो, नाम हमारा भोजन पाओ, नाम हमारा मन का सुहाओ, नाम ना विसरे संत प्रसाद, नाम लै तो अनहद पूरे नाद, प्रभ कृपा ते नाम नौ निध पाई, गुर कृपा ते नाम

तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरे जी प्राण सुखदाता, तू मेरा ठाक रहा दास तेरा, तुझ बिन अवर नहीं को मेरा, कर कृपा करो प्रभदात, तुमरी उस्तत करो दिन रात रहाओ, हम तेरे जंत तू बजावन हारा, हम तेरे पिखारी दान दे दातारा, तव प्रसाद रंग रस माने, कट कट अंतर तुम्हें समाने, तुमरी कृपा ते जपिए नाओ, साध संग तुमरे गुण गाओ, तुमरी दया ते हुए दर्द विनाश, तुमरी माया ते कमल विगास, हम बलिहार जाऊं गुरुदेव, सफल दर्शन जाकी निर्मल सेव, दया करो ठाकुर प्रभ मेरे, गुण गावे नानक नित तेरे, पैरो महला पंजवां, सब ते ऊच जाका दरबार, सदा सदा ताको जोहार, ऊचे ते ऊचा जाका थान, कोट अग्गा मिटे हर नाम, ते सरनाई सदा सुख होए, कर कृपा जाको मिले सोए रहाओ, जाके करतब लखे ना जाहे, जाका प्रवासा सब कट माहे, प्रगट भया साधु कै संग, भगता राधे अंदन रंग, दें दे तोट नहीं पंडार, खिन मैं थापो थापनहार, जा का हुक्म ना मेटे कोए, सिर पातशाह साचा सोए, जिसकी ओट तिसे की आसा, दुख सुख हमरा तिस ही पासा, राख लीनो सब जन का पड़दा, नानक तिसकी उस्तत करदा। पैरो महला पंजवां, रोवन हारी रोज बनाया, बलन बर्तन कौ संबंध चेते आया, बूझ बैराग करे जे कोए, जन मरण फिर सोग न होए, बिखिया का सब तंद पसार, विरले की नौना म्याधार रहाओ, त्रिबद माया रही ब्याप, जो लपटानो ते दू संताप, सुख नाही बिन नाम ते आए, नाम निदान वट पागी पाए, स्वांगी स्यों जो मन री जावै, स्वांग उतारै फिर पछतावै, मेघ की छाया जैसे बर्तन हार, तैसो परपंच मोह बेकार, एक वस्त जे पावै कोए, पूर्ण काज ताही का होए, गुर प्रसाद जिन पाया नाम, नानक आया सो प्रवान, पैरो महला पंजवां, संत की निंदा जोनी भवना, संत की निंदा रोगी करना, संत की निंदा दुख सहाम, दान दैत निंद कौ जाम, संत संग करे जो बाद, तिन निंदे नाही के साध रहाओ, भगत की निंदा

निंदक की गत कत हूं नाहे, आ बीजा पे ही खाहे। चोर जार जुआर दे बुरा, अनहोंदा पार निंदक सिर धरा। पार ब्रह्म के भगत निर्वैर, सो निस्तर जो पूजै पैर। आद पुरख निंदक पोलाया, नानक कीर्तना जाय मिटाया। पैरव महला पंजवा, नाम हमारे बेदर नाद। नाम हमारे पूरे काज, नाम हमारे पूजा देव। नाम हमारे गुर की सेव, गुरपुरे दृढ़ो हर नाम। सब ते उत्तम हर हर काम रहाओ। नाम हमारे मज्जन इशनान, नाम हमारे पूर्ण दान। नाम लैते सगल पवीत, नाम जपत मेरे पाई मीत। नाम हमारे सौन संजोग, नाम हमारे तृप्त सो भोग। नाम हमारे सगले आचार, नाम हमारे निर्मल व्यवहार। जाके मन वस्या प्रभ एक, सगल जना की हर हर टेक। मन तन नानक हर गुण गाओ, साध संग जिस देवे नाओ। पैरव महला पंजवा, निरतन कहो तुम देवो तना। अनक पाप जाहे निर्मल मना, सगल मनोरथ पूर्ण काम। भगत अपने कहो देवो नाम, सफल सेवा गोपाल राय। करण करावन हर स्वामी, ताते बिरथा कोई ना जाए रहाओ। रोगी का प्रभ खंडो रोग, दुखिए का मिटाओ प्रभ सोग। निथावे कहो तुम थान बैठा वो, दास अपने कहो भक्ति लावो। निमाने कहो जो दे तो मान, मूड मुग्ध होए चतर सुज्ञान। सगल पयान का पौ नस, जन अपने कह हर मन बस। पार ब्रह्म प्रभ सुख निधान, तत् ज्ञान हर अमृत नाम। कर कृपा संत टहल लाए, नानक साधु संग समाए। पैरव महला पंजवा, संत मंडल में हर मन वसै। संत मंडल में दुर्त सब नसै, संत मंडल में निर्मल दीत। संत संग हुए एक प्रीत, संत मंडल तहां का नाओ। पार ब्रह्म केवल गुण गाओ रहाओ। संत मंडल में जन्म मरण रह, संत मंडल में जम किशु ना कह। संत संग हुए निर्मल बाणी, संत मंडल में नाम वखाणी। संत मंडल का निचले आसन, संत मंडल में पाप विनाशन। संत मंडल में निर्मल कथा, संत संग हो मैं दुख नसा। संत मंडल का नहीं विनाश, संत मंडल में हर गुणतास। संत मंडल उठाकर विश्राम, नानक उत्पोत भगवान। पैरव महला पंजवा, रोग कवन जा राख आप। तेह जन होए ना दुख संताप, जिस ऊपर प्रभ कृपा करै। तिस ऊपर ते काल पर हरै, सदा सखाई हर हर नाम। जिस चीत आवै ते सदा सुख होवै, निकट ना आवै ता कह जाम रहाओ। जब एहो नासो तब किनै उपाया, कवन मूल ते क्या प्रगटाया। आपै मारा आप जीवालै, अपने भगत कहो सदा प्रतिपालै। सब किछ जानौ तिसकै हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ। दुख पंजन ता कह नाओ, सुख पावै तिसके गुण गाओ। सुन स्वामी।

राम राम संत सदा सहाय, घर बाहर नाले परमेश्वर, रव रहा पूर्ण सब ठाए रहाओ। धन माल जोबन जुगत गोपाल, जी प्राण नित सुख प्रतपाल, अपने दास कौ दे राखे हाथ, निमख न छोड़े सद ही साथ। हर सा प्रीतम अवर ना कोए, सार संभाले साचा सोए, मात पिता सुतबंध नारायण, आद जुगाद भगत गुण गायण, तिसकी तार प्रभ का मन जोर, एक बिना दूजा नहीं होर। नानक कै मन एहो प्रखार्थ, प्रभु हमारा सारे स्वार्थ। पहरो महला पंजवा, पह कौ पौ पड़िया, सिमरत हर नाम, सगल ब्याद मिटी त्रह गुण की, दास के होए पूर्ण काम रहाओ। हर के लोक सदा गुण गावे, तिनको मिलिया पूर्ण धाम, जन का दर्श बांछे दिन राती, होए पुनीत धर्म राय जाम। काम क्रोध लोभ मद निंदा, साध संग मिटिया अभमान, ऐसे संत भेटे वडभागी, नानक तिनकै सत कुरबान।

हर के नाम बिना सब झूठ, बिन गुर पूरे मुक्त ना पाई, साची दरगह सागत मूठ रहाओ। सोई कुचील।

माया कारण करै उपाओ, कब न कल सीधा पाओ। जिन किया तिस चीत न आणै, कूड़ी कूड़ी मुखो बखाणै। जिसनो कर्म करे करतार, साध संग होए तिस व्यवहार। हर नाम भगत स्यो लागा रंग, कहो नानक तिस जन नहीं भंग। पहरो महला पंजवां, निंदक कहो फिटके संसार। निंदक का झूठा व्यवहार, निंदक का मैला आचार। दास अपने कहो रखनहार, निंदक मुआ निंदक कै नाल। पार ब्रह्म परमेश्वर जन राखे, निंदक कै सर कड़क्यो काल। रहाओ निंदक का कहया कोई ना माने, निंदक झूठ बोल पछताने। हाथ पिछोरै सिर तरन लगाहे, निंदक कहो दई छोड़ै नाहे। हर का दास किश बुरा ना मांगै, निंदक कहो लागै तुक संगै। बगले ज्यो रहा पंख पसार, मुखते बोलिया ता कढ़िया बीचार। अंतरजामी करता सोए, हर जन करे सो निचल होए। हर का दास साचा दरबार, जन नानक कहया तत बीचार। पैरो महला पंजवां, दोए कर जोर करो अरदास। जियो पिंड तन तिसकी रास, सोई मेरा स्वामी करना हार। कोट बार जाई बलिहार, साधु तूर पुनीत करी। मन के विकार मिटै प्रभ सिमरत, जन्म जन्म की मैल हरी। रहाओ जा कै गृह मैं सगल निदान, जा की सेवा पाइय मान। सगल मनोरथ पूर्ण हार, जी प्राण भगतन आधार। घट घट अंतर सगल प्रगास, जप जप जीवै भगत गुणतास। जा की सेवना बिरथी जाए, मंतन अंतर एक ते आए। गुर उपदेश दया संतोख, नाम निदान निर्मल एहो थोक। कर कृपा लीजै लड़ लाए, चरण कमल नानक नित्य आए। पैरो महला पंजवां, सतगुर अपने सुनी अरदास। कार्ज आया सगला रास, मन तन अंतर प्रभु ते आया। गुर पूरे डर सगल चुकाया,

सो सुरतान जो दोए सरतान है, बाहर जाता पीतर यान है, गगन मंडल में लश्कर करे, सो सुरतान शत्र सर तरे, जोगी गोरख गोरख करे, हिंदू राम नाम उचरे, मुसलमान का एक खुदाए, कबीर का स्वामी रया सुमाए, महल्ला पंजवा, जो पाथर को कहते देव ताकि बिरथा हो वैसे व, जो पाथर की पाई पाए तिसकी काला जाई जाए, ठाकर हमरा सदबो लंता, सर्ब जिया को प्रभ दान देता रहा, अंतर देव न जाने अंध, भ्रम का मोहया पावे फंद, ना पाथर बोले ना किश दे, फोकट कर्म ने फल है सेव, जे मृतक कहो चंदन चढ़ावे उसते कहो कवन फल पावे, जे मृतक कहो बिष्टा माहे रुलाई ता मृतक का क्या कट जाई, कहत कबीर हाँ कहो पुकार, समय देख सकत गावार, दूजे पाए बहुत कर गाले, राम भगत है सदा सुखाले, जल में मीन माया के बेदे दीपक।

आई। रहाओ पंखी मृग माया में राते, साकर माखी अधिक संतापे, तुरे उष्ट माया में पेला, सिद्ध चौरासी माया में खेला, छे जति माया के बंदा, नवे नाथ सूरजर चंदा, तपे रखीसर माया में सूता, माया में काल यार पंच दूता, स्वान स्याल माया में राता, बंतर जीते यार सिंघाता, मांजार गाडर अर लुबरा, बिरख मूल माया में परा, माया अंतर पीने देव, सागर इंद्रा यार तार तेव, कह कबीर जैसे उधर तिस माया, तब छूटे जब साधु पाया, जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक नहीं सरे, जब मेरी मेरी मिट जाए, तब प्रभु काज सवारे आए, ऐसा ज्ञान विचार मना, हर कीना सिमरो दुख भंजना रहाओ, जब लग सिंह रह बन माहे, तब लग बन फूले ही नाहे, जब ही स्यार सिंह को खाए, फूल रही सगली बन राए, जीतो बूढ़े हार उतरे, गुर प्रसादी पार उतरे, दास कबीर कह समझाए, केवल राम रहो लिवलाए, सत्र सह सला रह जाके, सवा लाख पै काम ब्रता के, सेख जो कही है कोट अठासी, छपन कोट जाके खेल खासी, मो गरीब की को गुजरावे, मजरस दूर मैल को पावे, रहाओ 33 करोड़ी है खेल खाना, 84 लाख फिर दीवाना, बाबा आदम कहो किशन दर दिखाई, उन पी पिस्त कनेरी पाई, दिल खल हल जाके जर्द रूबानी, छोड़क तेब करे सैतानी, दुनिया दोस रोस है लोई, अपना किया पावे सोई, तुम दाते हमसरा पिखारी, देव जवाब होए बजगारी, दास कबीर तेरी पने समाना, पेस्तन जीक राख रह माना, सब कोई चलन कहत है उहां, ना जानो बैकुंठ है कहां, रहाओ आप आपका मर्म ना जाना, बात नहीं बैकुंठ बखाना, जब लग मान बैकुंठ की आस, तब लग नाही चरण निवास, खाई कोट ना परलप गारा, ना जानो बैकुंठ द्वारा, कह कमीर अब कहिए काहे, साध संगत बैकुंठ आहे, क्यों लीजे गढ़ बंका पाई, दोवर कोटियार तेवर खाई, रहाओ 525 मोह मद मत सर, आडी प्रबल माया, जन गरीब को जोर ना पहुंचे, कहां करो रगराया, काम केवारी दुख सुख दरवानी, पापन दरवाजा, क्रोध प्रधान महा बड़ दुंदर, तै मनमावासी राजा, स्वाद सनाहा टोप ममता को, कबुद कमान चढ़ाई, तसना तीर रहे गढ़ पीतर, इं गढ़ लियो न जाई, प्रेम पलीता सुरत हवाई, गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अगन सहजे परजाली, एक चुट सजाया, सत संतोख लै लरने लागा, तोरे दो दरवाजा, साध संगत गुर की कृपा ते, पकड़ो गढ़ को राजा, भगवत पीर सकत सिमरन की, कटी काल पै फांसी, दास कमीर चढ़ो गढ़ी उपर, राज लियो अबनासी, गंग गुसायन गहर गंभीर, जंजीर बांध कर करे कबीर, मन ना डिगे तन काहे कौ डराए, चरण कमल चित रहो समाए, रहाओ गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पर बैठे कबीर, कह कबीर को संग ना साथ, जल थल रखन है रघुनाथ, पैरव कबीर जी अष्टपति कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आगम दुर्गम गढ़ रचियो बास, जामै जोत करे प्रगास, बिजली चमकै हो आनंद, जे पौड़े प्रभ बाल गोबिंद, एहो जियो राम नाम लिव लागै, जरा मरण छूटै परम भागै, रहाओ अबरन बरन स्यो मन ही प्रीत, हमै गावन गावै गीत, अनहद शब्द होत चुनकार, जेह पौड़े प्रभ श्री गोपाल, खंडल मंडल मंडल मंडा, त्रया शांति त्रे खंडा, आगम्या गोचर रहया अभ्यंत, पार ना पावै को तरनी तरमंत,
कदली पोहप तू प्रगास, राज्य पंकज मैं लियो निवास, द्वादश दाल अभ्यंतर मंत, जय पौड़े श्री कमलाकंत, अर्ध उर्द मुख लागो कास, सुन मंडल मैं कर प्रगास, उहां सूरज नाही चंद, आद निरंजन करे आनंद, सो ब्रह्मांड पिंड सो जान, मान सरोवर कर स्नान, सो हंसो जा को है जाप, जा को लिप्त न होए पुण्य अर पाप, अबर्ण बर्ण काम नहीं शाम, अवर न पाइय गुर की साम, तारी न टरे आवे न जाए, सुन सज मेरे उसमाए, मन मध्य जाने जे कोए, जो बोले सो आपे होए, जोत मंत्र मन अस्त्र करे, कह कबीर सो प्राणी तरे, कोट सूर जा कै प्रगास, कोट महादेव अर कबलास, दुर्गा कोट जा कै मर्दन करे, ब्रह्मा कोट वेद उचर, जो जाचाओ तो केवल राम, आन देव स्यो नाही काम, राहो कोट चंद्र में करे चराक, सुरत तीसो जे वै पाक, नाम ग्रह कोट ठांडे दरबार, धर्म कोट जा कै प्रतहार, कवन पवन कोट चौ बारे फिरे, बास कोट सेज बिस्थर, समुंद कोट जा कै पानी हार, रुमावल कोटा ठारे पार, कोट कमेर पर पंडार, कोट क लक्ष्मी करे सिंगार, कोट क पापन बहरे, इंद्र कोट जाके सेवा करे, छप्पन कोट जाके प्रतहार, नगरी नगरी ख्यात्या पार, लट छुट्टी वरते बिकराल।

अंतर्यामी प्रभ दयाल, अपने दास को नजर निहाल, कर कृपा मोह देहो दान, जप जीवे नानक तेरो नाम। बसंत महला पंजवा, राम रंग सब गए पाप, राम जप तो कछ नहीं संताप, गोविंद जप तो सब मिटे अंधेर, हर सिमर तो कछ नाए फेर। बसंत हमारे राम रंग, संत जना स्यों सदा संग रहाओ, संत जनी किया उपदेश, जह गोबिंद भगत सो धन देस, हर भगत हीन उदयान थान, गुर प्रसाद घट घट पछान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग, निगट पेख प्रभ करन हार, ई तूत प्रभ कार जसार, चरण कमल सो लगो ध्यान, कर कृपा प्रभ कीनो दान। तेरिया संत जना की पांछो धूर, जप नानक स्वामी सद हजूर। बसंत महला पंजवा, सच परमेश्वर नित नवा, गुर कृपा ते नित चवा, प्रभ रखवाले माई बाप, जाकै सिमरन नहीं संताप। खसम ते आई एक मन एक पाए, गुरपुरे की सदा सरनाई, साचे साहिब रखिया कंठ लाए रहाओ। अपने जन प्रभ आप रखे, दुष्ट दूत सब भ्रम थके, बिन गुर साचे नहीं जाए, दुख देस दिसंतर रहे ताए। किरत ओना का मिटस नाहे, ओ अपना बीजा आप खाहे, जन का रखवाला आप सोए, जन को पहुंच ना सकस कोए। प्रभदास रखे कर जतने आप, अखंड पूर्ण जाको प्रताप, गुण गोबिंद नित रसन गाए, नानक जीवे हर चरण ते आए। बसंत महला पंजवा, गुर चरण सरेवत दुख गया, पार ब्रह्म प्रभ करी मया, सर्व मनोरथ पूर्ण काम, जप जीवे नानक राम नाम। सारुत सुहावी जित हर चित आवै, फिर सतगुर दी सह बिललांती, सागत फिर फिर आवै जावै रहाओ। से तनवंत जिन हर प्रभ रास, काम क्रोध गुर शब्द नास, पह बिन से निरपै पद पाया, गुरमिल नानक खसम ते आया। साध संगत प्रभ कियो निवास, हर जप जप होई पूर्ण आस, जल थल महियल रव रहया, गुरमिल नानक हर हर कहया। अहिट सिद्ध नवनिद एह, कर्म प्राप्त जिस नाम देह, प्रभ जप जप जीवै तेरे दास, गुरमिल नानक कमल प्रगास। बसंत महला पंजवा, कर पहला एक तुके एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सगल इच्छा जपनिया, प्रभ मिले चिरी विछुनिया, तुम रवो गोबिंद रमन योग, जित रवै सुख सहज भोग रहाओ। कर कृपा नगर निहालिया, अपना दास आप संभालिया, से सुहावी रस बनी, आए मिले प्रभ सुख धनी। मेरा गुणे अवगुण ना बिचारिया, प्रभ नानक चरण पूजारिया। बसंत महला पंजवा, किल बिख बिनसे गाए गुना, आन दिन उपजी सही धुना, मन मौल्यो हर चरण संग, कर कृपा साधु जन भेटे, नित राताओ हर नाम रंग रहाओ। कर कृपा प्रगटे गोपाल, लड़ लाए उधारे दीन दयाल, एहो मन होवा साध तूर, नित देखे स्वामी हजूर। काम क्रोध तृष्णा गई, नानक प्रभ कृपा पई। बसंत महला पंजवा, रोग मिटाए प्रभु आप, बालक राखे अपने कर थाप, सांत सहज गृह सद बसंत, गुरपुरे की सरनी आए, कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाओ। सोग संताप कटे प्रभ आप, गुरे अपने को नित नित जाप, जो जन तेरा जपे नाम,
ਸਫਲ ਪਾਏ ਨਿਸ਼ਚਲ ਗੁਣ ਗਾਓ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭਲੀ ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਤਾ ਜਪਦੇ ਨੀਤ ਨੀਤ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਕੀਨੇ ਨਿਹਾਲ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕੋ ਭਇਆ ਦਿਆਲ ਗੁਰਪੂਰੈ ਸਾ ਪੂਰਾ ਕੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਿੰਦੀਆ ਰਹਾਓ ਕਰਮ ਧਰਮ ਮੇਰਾ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਬਾਹਾਂ ਪਕਰ ਭਵਜਲ ਨਿਸਤਾਰਿਓ ਪ੍ਰਭ ਕਾਟ ਮਹਿਲ ਨਿਰਮਲ ਕਰੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੇ ਆਪ ਕਰੈ ਆਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕੋ ਧਾਰੇ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇਖ ਫੂਲ ਫੂਲ ਫੂਲੇ ਅਹੰ ਤਿਆਗ ਤਿਆਗੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਾਗੇ ਤੁਮ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਭ ਸੁਭਾਗੇ ਹਰ ਚੇਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਹਾਓ ਸਗਨ ਬਾਸ ਕੂਲੇ ਇੱਕ ਰਹੇ ਸੂਖ ਕਠੂਲੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਈ ਪਰ ਫੂਲਤਾ ਰਹੇ ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ ਅਨਰੂਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਮਤ ਭਰਮ ਭੂਲੋ ਭੂਲੋ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਹਰ ਪਾਏ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਹੈ ਲੇਖਾ ਮਨ ਰੁੱਤ ਨਾਮ ਰੇ ਗੁਣ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰੇ ਹਰ ਹਰੇ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਦੂਜਾ ਹਿੰਡੋਲ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ ਹਰ ਨਾਮੈ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ ਇਨ ਬਿਦ ਪਾਸਾ ਢਾਲੋ ਬੀਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਹਿ ਲਾਗੈ ਪੀਰ ਰਹਾਓ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੁਮ ਚੌਪੜ ਸਾਜੋ ਸਤ ਕਰੋ ਤੁਮ ਸਾਰੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਜੀਤੋ ਐਸੀ ਖੇਲ ਹਰ ਪਿਆਰੀ ਉਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਸੋਏ ਹਰ ਆਰਾਧੇ ਬਿਖੜੇ ਦਾਓ ਲੰਘਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਤੇ ਹਰ ਆਪੇ ਖੇਲੈ ਆਪੇ ਦੇਖੈ ਹਰ ਆਪੇ ਰਚਨ ਰਚਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਨਰ ਖੇਲੈ ਸੋ ਜਿਣ ਬਾਜੀ ਘਰ ਆਇਆ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ

काम क्रोध मन वस किया, सुपने नाम ना हर लिया। कभी राजा कब मंगनहार, दुख सुख बंधो संसार। मन उदरण का साजना है, पाप बंधन नित पौत जाहे। ईठ मीत को सखा नाहे, आप बीज आपे ही खाहे। जा कह कीने होत बेकार, से छोड़ चलिया खिन मैं गावार। माया मोहे बहु परमया, किरत रेख कर करमया। करने हारा लिपत आप, नहीं लेप प्रपुन पाप। राख ले हो गोबिंद दयाल, तेरी शरण पूर्ण कृपाल। तुझ बिन दूजा नहीं ठाओ, कर कृपा प्रभ देहो नाओ। तू करता तू करनहार, तू ऊंचा तू बहु अपार। कर कृपा लड़ ले हो लाए, नानक दास प्रभ की शरणाए। बसंत की वार महल पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का नाम ते आए कै, हो हरिया पाई। कर्म लिखन तै पाई है, एह रुत सुहाई। वन त्रैण त्रिपौन मौलिया, अमृत फल पाई। मिल साधु सुखी उपजै, लथी सब शाई। नानक सिमरै एक नाम, फिर बहुन ना ताई। पंजे बदे महाबली, कर सच्चा टोवा। अपने चरण जपायन, विच दै खड़ोवा। रोग सोग सा मिट गए, नित नवा निरोवा। दिन रैण नाम त्याईंदा, फिर पाए ना मोवा। जिस ते उपजिया नानका, सोई फिर होवा। किथों उपजै कह रहै, कै माए समावै। जी जंत सब खसम के, कौन कीमत पावै। कहन त्याय न सुन नित, से भगत सुहावै। अगमा गोचर साहेबो, दूसर लवै ना लावै। सच पूरै गुरु उपदेसिया, नानक सुनावै। बसंत बाणी भगतां की, कबीर जी कर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मौली धरती मौलिया आकाश, कटकट मौलिया आत्म प्रगास। राजा राम मौलिया अंत पाए, जै देखा तै रहा समाए। रहाओ द्वितीया मौले चार वेद, सिमरत मौली स्यो कतेब। शंकर मौलिया योग ध्यान, कबीर को स्वामी सब समान। पंडित जन माते पढ़ पुराण, जोगी माते जोग ध्यान। सन्यासी माते हमेव, तपसी माते तब कह पेव। सब मत माते को न जाग, संग ही चोर कर मुसन लाग। रहाओ जागे सुख देओ आर्यकूर, हनुमंत जागे तर लंकूर। शंकर जागे चरण सेव, कल जागे नामा जय देव। जागत सुबत बहु प्रकार, गुरमुख जागे सोई सार। इस देही के अधिक काम, कह कबीर भज राम नाम। जोय खसम है जाया, पूत बाप खेल आया। बिन श्रवणा खीर पिलाया, देखो लोगा कल को पाओ। सुत मुकलाई अपनी माओ। रहाओ पग्गा बिन हुरिया मारता, बदने बिन खिर खिर हासता। निंद्रा बिन नर पैसोवै, बिन बासन खीर बलोवै। बिन असन गऊ लवेरी, पेंडे बिन बाड़ कनेरी। बिन सतगुर बाट ना पाई, कहो कबीर समझाई। प्रहलाद पठाए।

रहे अपहगे। कहो पंडित सूचा कवन ठाओ, जहां बैसहो भोजन खाओ रहाओ। जेहबा जूठी बोलत जूठा, कर्ण नेत्र सब जूठे। इंद्री की जूठ उतर सनाही, ब्रह्म अगन के लूठे। अगन पी जूठी पानी जूठा, जूठी बैस पकाया। जूठी करसी प्रोसन लागा, जूठे ही बैठ खाया। गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी कारा। कह कबीर ते नर सूचे, साची परी बिचारा। रामानंद जी कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। कत जाइए रे कर लागो रंग, मेरा चेतना चले मन पयो पंग रहाओ। एक दिवस मन पहियो मांग, कह चंदन चोवा बहु सुगंध। पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुरमन ही माहे। जहां जाइए तह जल पखान, तू पूर रहो है सब समान। वेद पुराण सब देखे जोए, उहां तव जाइए जो इहां ना होए। सतगुर मैं बलिहारी तोर, जिन सगर बिकल भ्रम काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोट कर्म। बसंत बाणी नाम देव जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। साहेब संकट वै सेवक पजै, चिरंकाल ना जीवै दो को लज्जै। तेरी भगतना छोड़ो पावै, लोग हसै। चरण कमल मेरा ही अरे बसै रहाओ। जैसे अपने तरह प्राणी मरन मांडै, तैसे संत जना।

नारायण सो प्रसन्न होए ता सेवक नामा, लोभ लहर अत निजर बाजे काया डूबे केसवा, संसार समुंदे तार गोबिंदे तार लै बाप बीठला, रहाओ अनल बेड़ा हों खेव ना सकाओ तेरा पार ना पाया बीठला, हो दयाल सतगुर मेल तू मोको पार उतारे केसवा, नामा कहे हाँ।

सहज अवल धूड़ मणि गाडी चालती पीछे तिनका लेकर हागती जैसे पनकत थ्रू टिट हांकती सर तोवन चाली लाडली रहाओ तोबी तोवे बिरा बिराता हर चरण मेरा मन राता पंत नाम देव रम रहे अपने भगत पर कर दया। बसंत बाणी रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद तुझे सुजनता कशु नाहे पहरावा देखे उपजाहे गर्भवती का नाही ठाओ तेरी गर्दन ऊपर लवे काओ तू काए गर्भ बावली जैसे पांदव खूंब राज तू तिस्ते खरी उतावली रहाओ जैसे कुरंक नहीं पायो पेद तन सुगंध ढूंढे परदेस आप तन का जो करे विचार तिस नहीं जम कंकर करे खुवार पुत्र कलत्र का करे हंकार उठाकर लेखा मंगनहार फेड़े का दुख सह जियो पाछे किसे पुकार है पियो पियो साधु की जौ लेहे ओट तेरे मिटे पाप सब कोट कोट कह रविदास जो जपे नाम तिस जात ना जन्म ना जोन काम। बसंत कबीर जीओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुरह की जैसी तेरी चाल तेरी पुष्ट ऊपर चमक बाल इस घर में है सो तू ढूंढ खाहे और किसी के

लेखा लिखिए मन कह पाए नानक पीजे साचे नाए। महला पहला नाम से खटका करे विचार निस दिन उचरे पार अठार। तिन पियंत ना पाया तो हे नाम बिहून मुक्त क्यों होए। नाभ वस्त ब्रह्म अंत न जानिया गुरमुख नानक नाम पछाणिया। पौड़ी आपे आप निरंजना जिन आप पाया आपे खिलर चायो न सब जगत सवाया। त्रै गुण आप सिरजन माया मोह वधाया गुर प्रसादी उबरे जिन पाणा पाया। नानक सच वरतदा सब सच समाया। श्लोक महला दूजा। आपो पाए नानका आपे रखे वेक मंदा किसनो वाखी है जा सबना साहब एक। सबना साहब एक है वेखे तंदे लाए किसे थोड़ा किसे अगला खाली कोई ना है। आवे नंगे जाहे नंगे विचे करे विथार नानक हुक्म न जानिए अगे काई कार। महला पहला जिनस थाप जिया को भेजे जिनस थाप लै जावे आपे थापो थापे आपे एते विस करावे। जेते जी फिर अवधूती आपे पिख्या पावे। लेखे बोलन लेखे चलन काय तो कीचे दावे मूल मत प्रवाणाए हो नानक आख सुनाए। करनी उपर होए तपावस जे को कह कहाए। पौड़ी गुरमुख चलतर चायोन गुण प्रगटी आया गुरबाणी सद उचरे हर मन वसाया। सकत गई प्रम कटिया शिव जो जगाया जिनके पोते पुन है गुरपुरख मिलाया। नानक सहजे मिल रहे।

सब करना किरत कर लिखी है, कर कर करता करे करे, मनमुख मरी है गुरमुख तरी है, नानक नदरी नदर करे पौड़ी। मनमुख दूजा परम है दूजा लुभाया, कूड़ कपट कमाम दे कूड़ोवा लाया, पुत्र कलत्र मोहित है सब दुख सबाया, जमदर बदे मारी है परमै परमाया, मनमुख जन्म गवाया नानक हर पाया। श्लोक महला दूजा, जिन वड्याई तेरे नाम की, तेरते मन माहे, नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाहे, नानक अमृत मने माहे, पाइये गुर प्रसाद, तिन्नी पीता रंग स्यों जिनको लिखिया याद। महला दूजा, कीता क्या साला ही है, करे सोए साला है, नानके की बाहरा दूजा दाता ना है, करता सो साला ही है जिनकी तायाकार, दाता सो साला ही है जे सबसे दे आधार, नानके आप सदीव है पूरा जिस पंडार, वड्डा कर साला ही है अंतना पारावार पौड़ी। हर का नाम निधान है सेवे है सुख पाई, नाम निरंजन उचरा पास्यो कर जाई, गुरमुख बाणी नाम है नाम हृदय वसाई, मत पंखेरु वस होए सतगुरु त्याई, नानक आप दयाल होए नामे लिवलाई। श्लोक महला दूजा, तिस स्यों कैसा बोलना जे आपे जाने जान, चीरी जाकी ना फिरे साहिब सो प्रवान, चीरी जिसकी चलना मीर मलक सालार, ज्योत भावै नानका साई भलीकार, जिन्ना चीरी चलना हाथ तिना किश ना है, साहिब का फुरमान होए उठी कर लै पाहे, जेहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाहे, कल्ले आवै नानका सदे उठी जाहे। महला दूजा, सिफत जिन्ना को बख्शी है ऐसे ही पोतेदार, कुंजी जिन को दितिया तिन्ना मिले पंडार, जय पंडारी हूं गुण निकलै ते की है प्रवान, नदर तिन्ना को नानका नाम जिन्ना निशान पौड़ी। नाम निरंजन निर्मला सुनया सुख होई, सुन सुन मन वसाई है बुझे जन कोई, बहद्या उठद्या ना विसर साचा सच सोई, भगता को नाम आधार है नामे सुखोई, नानक मन तन रव रहया गुरमुख हर सोई। श्लोक महला पहला, नानक तुलिया तोल जे जियो पिछे पाई है, एक सना पुजे बोल जे पूरा पूरा कर मिले, वड्डा आखण पारा तोल होर हौली मत्ती हौले बोल, धरती पानी पर्वत पार क्यों कंडै तोलै सुनियार, तोला मासा रतक पाए नानक पुछां दे पुजाए, मूर्ख अंध्यां दी धात कह कह कहण कहान आप। महला पहला, आखण औखा सुन औखा, आखण जापी आख एक आख, आख है शब्द पाख है अर्ध उर्द दिन रात, जे केहो होए ता केहो दिसै जापै रूप ना जात, सब कारण करता करे घट आओ कट कट काट, घट आओ कट कट थाप, आखने औखा नानका आपना आख ना जापै आख पौड़ी। नाए सुनया मन रेसी है नामे सांत आई, नाए सुनया मन तृप्ति है सब दुख गवाई, नाए सुनया ना उपजे नामे वड्याई, नामे ही सब जात पत नामे गत पाई, गुरमुख नाम त्याई है नानक लिवलाई। श्लोक महला पहला, झूठ ना रागी झूठ ना वेदी, झूठ ना चंद सूरज की भेदी, झूठ ना यानी झूठ ना नाई, झूठ ना मीहो वरे है सब थाई, झूठ ना धरती झूठ ना पानी, झूठ ना पौने महेशवाणी, नानक निगुरिया गुण नाही कोए, मोहे फेरे मोह झूठा होए। महला पहला, नानक चुलिया सुचिया जे पर जाने कोए, सुरते चुली ज्ञान की जोगी का जत होए, ब्राह्मण चुली संतोख की गिरही का सतदान,

जैसा करे कहावे तैसा, ऐसी बनी जरूरत, होवे लिंग चिंग न होवे, ऐसी कही है सूरत, जो उस इच्छे सो फल पाए, ता नानक कही है मूर्त पौड़ी। सतगुर अमृत बिरख है, अमृत रस फलिया, जिस प्राप्त सो लहै गुरसबदी मिलिया, सतगुर कै पाणे जो चलै, हर सेती रलिया, जम काल जोहे न सकई, कर चानन बलिया, नानक बख्स में लाया न फिर गर्भ ना गलिया। श्लोक महला पहला। सच वर्त संतोख तीर्थ, ज्ञान ध्यान इशनान, दया देवता खिमा जप माली, ते मानस प्रधान, जुगत धोती सुरत चौका, तिलक करनी होए, पाओ पाओ जुन नानका, विरला ता कोई कोए। महला तीजा। नौमी नेम सच जे करे, काम क्रोध तृष्णा उचरे। दसवी दसे द्वार जे ठाके, एकादशी एक कर जाने, द्वादशी पंच वसगत कर राखे, तौ नानक मन माने। ऐसा वर्त रही जय पांडे, होर बहुत सिख क्या दीजे। पौड़ी भुगत राजे रंग राय, संचय विखमाया, कर कर हेत वधाए दे, पर दर्प चुराया, पुत्र कलत्र ना विसह है, बहुप्रीत लगाया, वेखद्या ही माया तुहे गई, पछता पछताया, जम दर्ब दे मारी है, नानक हर पाया। श्लोक महला पहला। ज्ञान में हुना गावे गीत, भुखे मुला करे मसीत, मखटू होए कै कन पढ़ाए, फकर करे होर जात गवाए, गुरपीर सदाए मंगन जाए, ता कै मूल न लगिए पाए, काल खाए किश हथों दे, नानक राहो पछाणे से। महला पहला। मनो जे अंधे कूप, कहया बिरद ना जाननी, मन अंधे उंधे कवल, दिसन खरे करूप, एक कह जान कहया बुजन, ते नर सूट स्वरूप, एक ना नादना बेदना गी रस, रस कस ना जान अंत, एक ना सुध ना बुध ना अकल सार, अखर का प्यो ना लहंत, नानक से नर असल खार, जे बिन गुण गर्भ करंत। पौड़ी गुरमुख सब पवित है, तन संपै माया, हर अर्थ जो खर्च दे, देंदे सुख पाया, जो हर नाम ते आए दे, तिन तोट ना आया, गुरमुखा नदरी आमदा, माया सुट पाया, नानक भगता होर चेतना आवई, हर नाम समाया। श्लोक महला चौथा। सतगुर सेवन से बड़ भागी, सच्चा शब्द जिन्ना एक लिव लागी, ग्रह कुटाम मैं सहज समाधि, नानक नाम रते से सच्चे बैरागी। महला चौथा। गणत सेवना हो वई, कीता थाए ना पाए, शब्द साधना आयो, सच ना लगो पाओ, सतगुर प्यारा ना लगे मन ठिया वह जाए, जे एक विख अगाह भरे, ता दस विखा पिछाह जाए, सतगुर की सेवा चाकरी, जे चले सतगुर पाए, आप गवाए सतगुरु नो मिले, सहजे रह समाए, नानक तिन्ना नाम नावी।

गौ बांश कौ संचय खीर गला बांध दोएले अहीर माया कारण श्रम अत कर सो माया लै गाडे धरै अत संचय समझै नहीं मूड़ तन धरती तन होए गयो धूड़ काम क्रोध तृष्णात जरै साध संगत कभू नहीं करै कहत नाम देवता चियान निरपै होए भजियै भगवान बदो की ना होड़ माधव मोस्यो ठाकर ते जन जनते ठाकरो खेल परयो है तोस्यो रहाओ आपन देओ देहो राय आपनो आप लगावे पूजा जल ते तरंग तरंग ते है जल कहन सुन कौ दूजा आपे गावे आपे नाचे आप जावे तूरा कहत नाम देओ तू मेरो ठाकरो जन उरा तू पूरा दास अनेन मेरो निज रूप दर्शन निमख ताप त्रई मोचन परसत मुकत करत ग्रह कूप रहाओ मेरी बांदी भगत छिड़ावे बांदै भगत न छूटै मोहे एक समय मोको गहे बांदै तौ फन मोपै जवाब ना होए मैं गुणबंध सगल की जीवन मेरी जीवन मेरे दास नाम देव जाके जी ऐसी तैसो ताके प्रेम प्रगास

काम ना बिसरियो, क्रोध ना बिसरियो, लोभ ना छूटियो देवा, पर निंदा मुक्ते नहीं छूटी, निफल पई सब सेवा। बाट पार कर मूस बिरानो, पेट पर है अपराधी, जेहे पर लोग जाए अपकीर्त, सोई अविद्या साधी। हिंसा तो मनते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली, परमानंद साध संगत मिलो, कथा पुनीत ना चाली। शाड मानो हर बिमुखन को संग, सारंग महला पंजवा, सूरदास एको अंकार सतगुर प्रसाद। हर के संग बसे हर लोक, तन मन अर्प सर्बस सब अर्प्यो, आनंद सहज धुन चोक, रहाओ दर्शन पेख पय निर्भखई, पाए है सगले थोक, आन बस्त स्यों काज ना कछु है, सुंदर बदन्या लोक। श्याम सुंदर तज आन जो चाहत, जो कुष्टि तन जोक, सूरदास मन प्रभ हथ लीनो, दीनो एहो परलोक। सारंग कबीर जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर बिन कौन सहाई मन का, मात पिता भाई सुत बंता, हित लागो सब फन का, रहाओ आगे कहो किस तुल्हा बंद हो, क्या परवासा तन का, कहां बिसासा इस भांडे का, इतनक लागे ठनका। सगल धर्म पुन फल पावहो, तूर बांछो सब जन का, कह कबीर सुनोरे संतो, एहो मन उडन पंखेरू बन का। राग मलार चौप दे महला पहला, कर पहला एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भउ निर्वैर, अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद। खाना पीना हसना सौना, विसर गया है मरना, खसम विसार खुवारी कीनी, त्रिग जीवन नहीं रहना। प्राणी एको नाम ते आवो, अपनी पासेती कर जावो, रहाओ तुदनो सेव है, तुझ क्या देव है, मांगे ले वह रह नहीं। तू दाता जिया सबना का, जिया अंदर जियो तुही, गुरमुख त्यावै से मृत पावै, से ही सुचे हो ही। अहनिस नाम जपोरे प्राणी, मैले हच्छे हो ही। जेही रुत काया सुख तेहा, तेहो जेही देही, नानक रुत सुहावी साई, बिन नाम है रुत के ही। मलार महला पहला, करो बिनो गुरे अपने प्रीतम, हर वरे आन मिलावै, सुन कन कोर शीतल मन मोरा, लाल रती गुण गावै। बरस घना मेरा मन पीना, अमृत बूंद सुहानी ही आरै, गुरमोही मन हर सलीना, रहाओ। सहज सुखी वर कामन प्यारी, जिस गुर बचनी मन मानिया, हर वर नार भई सुहागण, मंतन प्रेम सुखानिया। अवगण त्याग भई बैरागण, आस्तर वर सोहाग हरी, सोग विजोग तिस कदे ना व्यापै, हर प्रभ अपनी कृपा करी। आवन जान नहीं मन निर्मल, आवन जान नहीं मन निचल, पूरे गुर की ओट गही, नानक राम नाम जप गुरमुख, तन सुहागण सच सही। मलार महला पहला, साची सुरत नाम नहीं तृप्ते, हों मैं करत गवाया, पर तन पर नारी रत निंदा, बिख खाई दुख पाया, शब्द चीन पै कपट ना छूटे, मनमुख माया माया। अजगर पार लदे अत भारी, मर जन्मै जन्म गवाया, मन पावै शब्द सुहाया। भ्रम भ्रम जोन पेख बहु कीने, गुर राखे सच पाया, रहाओ। तीर्थ तेज निवार ना नाते, हर का नाम ना पाया, रतन पदार्थ पर हर त्याग गया, जत को तत ही आया। बिष्टा कीट पय उतही ते, उतही महे समाया, अधक स्वाद रोग अधकाई, बिन गुर सहज नाम पाया। सेवा सुर तो रहस गुण गावा, गुरमुख ज्ञान बिचारा, खोजी उपजय बादी बिनसै, हम बल बल गुर करतारा। हम नीच होते हीन मत झूठे, तू शब्द सवारनहारा, आत्म चीन तहां तू तारण, सच तारे तारनहारा। बैस सुथान कहां गुण तेरे, क्या क्या कथो अपारा, अलख न लखिए अगमा जोनी, तू नाथा नाथनहारा। किस पै देख कहो तू कैसा, सब जाचक तू दा तारा, भगतहीन नानक दर देखो, एक नाम मिले उर तारा। मलार महला पहला, जिन तन पिर का साधना जानिया, सा बिलख बदन कुमलानी, पई निरासी कर्म की फासी।
ਬਿਨ ਗੁਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨੀ ਬਰਸ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਘਰ ਆਇਆ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਣ ਮਿਲਾਇਆ ਰਹਾਓ ਨਵ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਠਾਕਰ ਸਿਉ ਆਂਦਨ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੀ ਮੁਕਤ ਭਏ ਗੁਰਦਰਸ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਜੋ ਭਗਤ ਸੁਭਾਵੀ ਹਮ ਥਾਰੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਜਗ ਤੁਮਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਉ ਤੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਇਆ ਬਹੁਰ ਨਾ ਪਵਜਲ ਫੇਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਰ ਹਰ ਦੇਖ ਵਿਗਾਸੀ ਤਉ ਧਨ ਸਾਜ ਸਿੰਗਾਰੋ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿਉ ਸੱਚ ਸਾਚੀ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਆਧਾਰੋ ਮੁਕਤ ਭਈ ਬੰਧਨ ਗੁਰ ਖੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਪਤ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ।

नाम रहो लेव लाई या दृष्टा गोचर अपरम प्रकरता गुर कह शब्द हर ते आई रहाओ मन तन पी जाए एक लेव लागी सहजे रहे समाई गुर प्रसादी भ्रम पौ भागै एक नाम लेव लाई गुर बचनी सचकार कमावै गत मत तब ही पाई कोट मदे किसै बुझाए तिन राम नाम लेव लाई जै जै देखा तै को सोई जै जै देखा तै को सोई एह गुरमत बुद्ध पाई मन तन प्राण धरी तिस आगै नानक आप गवाई मलार महला तीजा मेरा प्रभ साचा दुख निवारण सब दे पाया जाई भगती राते सद बैरागी दरसा चै पत पाई मन रे मन स्यो रहो समाई गुरमुख राम ना मन पीजै हर से ती लिवलाई रहाओ मेरा प्रभ अत अगमा गोचर गुरमत दे बुझाई सत संयम करनी हर कीर्त हर से ती लिवलाई आपे शब्द सच साखी आपे जन ज्योति ज्योत मिलाई देही काची पौन बजाए गुरमुख अमृत पाई आपे साजे सब कर लाए सो सच रहा समाई नानक नाम बिना कोई किश नाही नामे दे वड़ाई मलार महला तीजा हौ मैं बिख मन मोहया लद्या अजगर भारी गरड़ शब्द मुख पाया हौ मैं बिखर मारी मन रे हौ मैं मोह दुख भारी एहो पवजर जगत न जाई तरना गुरमुख तर हर तारी रहाओ त्रै गुण माया मोह पसारा सब वरतै आकारी तुरिया गुण सत संगत पाई है नदरी पार उतारी चंदन गंध सुगंध है बहु बासना बहकार हर जन करनी उत्तम है हर कीर्त जग विस्तार कृपा कृपा कर ठाकर मेरे हर हर हरि वर तार नानक सतगुर पूरा पाया मन जपया नाम मुरार मलार महला तीजा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद एहो मन गिरही केहो मन उदासी केहो मन अवर्ण सदा अवनासी केहो मन चंचल के एहो मन बैरागी इस मन को ममता किथों लागी पंडित इस मन का करो विचार अवर के बहुता पड़े उठावे पार रहाओ माया ममता करता लाई एहो हुक्म कर सृष्टि उपाई गुरप्रसादी बुझो पाई सदा रहो हर की शरणाई सो पंडित जो तिहा गुणा की पंड उतारे अंधने को नाम वखाणे सदगुर की ओ दीख्या देले सदगुर आग्या सिस तरे सदा अलग रह निर्वाण सो पंडित दरगै प्रमाण सबना मैं एको एक वखाणे जा एको वेखे ता एको जाने जा को बख्शे मिले सोए एथे उथे सदा सुख होए कहत नानक कवन बिद करे क्या कोए सोई मुक्त जा को कृपा होए आंदन हर गुण गावे सोए शास्त्र वेद की फिर कूक ना होए मलार महला तीजा भ्रम भ्रम जोन मनमुख परमाई जम काल मारे नित पत गवाई सतगुर सेवा जम की कान चुकाई हर भ्रम मिलया महल कर पाई प्राणी गुरमुख नाम ते आए जन्म पदार्थ दुबदा खोया कौडी बदल है जाए रहाओ कर कृपा गुरमुख लगे प्यार अंतर भगत हर हर उतार पव जल शब्द लंघावन हार दर सचै दिसै सचियार बहु कर्म करे सतगुर नहीं पाया बिन गुर भरम भूले बहु माया हौ मैं ममता बहु मोह वधाया दूजै पाए मनमुख दुख पाया आपे करता अगम अथाहा गुर शब्दी जपिया सचलाहा हाजर हजूर हर वे प्रवाह नानक गुरमुख नाम समाहा मलार महला तीजा जीवत मुक्त गुरमति लागे हर की भगत अंदन सज जागे सतगुर सेवै आप गवाए हौ तिन जन कै सद लागो पाए हौ जीवा सदा हर के गुण गाई गुर का शब्द महारस मीठा हर

बरसै मेघ सखी कर पा होने आए, मोहे दीन कृपा निध ठाकर नवनिध नाम समाए रहाओ। अनक प्रकार भोजन बहु किए बहु व्यंजन मिष्टाए, करी पागसाल सोच पवित्रा हुण लावो भोग हर राए। दुष्ट बिदारे साजन रहसे एह मंदर कर अपनाए, जौ ग्रह लाल रंगी हो आया तौ मैं सब सुख पाए। संत सभा उट गुर पूरे तुर मस्तक लेख लिखाए, जन नानक कंत रंगीला पाया फिर दुख ना लागे आए। मलार महला पंजवा खीरा धार, बारक जब होता बिन खीरा रहन ना जाई। सार संभाल माता मुख नीरै तबो तृप्त अगाई। हम बारक पिता प्रभदाता, भूलै बारक अनक लख बरिया, अनठौर नाही जय जाता रहाओ। चंचल मत बारक बपरे की, सर्प अग्न कर मेलै, माता पिता कंठ लाए राखै आनंद सही तब खेलै। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, तिस बारक भूख कैसी। नवनिध नाम निदान ग्रह तेरा, मन बांछै सो लैसी। पिता कृपाल आज्ञा हे दीनी, बारक मुख मांगै सो देना। नानक बारक दर्श प्रभ चाहै, मोहे हृदय बसै नित चरना। मलार महला पंजवा सगल विधि जो रिया हर करया, तजो सगला देसा, कार्य सगल अरंभ्यो घर का, ठाकर का पारोसा। सुनिया बाजै बाज सुहावी, भोर भया मैं प्रेम मुख पेखे, गृह मंगल सोहलावी रहाओ। मनुआ लाए सवारे थाना, पूछो संतां जाए, खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो, भगत करो ने उपाए। जब प्रे आए बसे गृह आसन, तब हम मंगल गाया। मीत सजन मेरे पहे सुहेले, प्रभ पूरा गुरु मिलाया। सखी सहेली पहे आनंदा, गुर कार्य हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुखदाता, छोड़ ना जाई दूरे। मलार महला पंजवा राज ते कीट, कीट ते सुरपत, कर दोख जठर कौ भरते। कृपा निध छोड़ आन कौ पूजै, आत्म काती हरते। हर बिसरत ते दुख दुख मरते, अनक बार प्रमै बहु जोनी, टेक न काहू धरते रहाओ। त्याग स्वामी आन कौ बिचर चितवत, मूढ़ मुग्ध खल खरते। कागर नाव लंघै कथ सागर, बिरथा कथत हम तरते। सेव बिरंच असुर सुर जेते, काल अग्न में जरते। नानक सरन चर

रहाओ सतगुर शब्दी पद रजान, गुर कह तकिय सच तान, नाम स्मारस रूढ़ी बाण, थै पावे दरले स्पिराण, ऊंडा बैसा एक लिवतार, गुर कै शब्द नाम आधार, ना जल डूंगर ना उची तार, निज कर वासा तह मगना चलन हार, जित कर वसै तू है बिद जाने, बीजो महल ना जापै, सतगुर बाजो समझ ना होवी, सब जग दग ब्याशा पै, करण पलाव करै बिल लातो, बिन गुर नाम ना जापै, पल पंकज मैं नाम छड़ाए, जे गुर शब्द सिंपै, एक मूर्ख अंधे मुक्त गवार, एक सतगुर कह पै नाम आधार, साची बाणी मीठी अमृत तार, जिन पीती तिस मुख द्वार, नाम पै पाए हृदय वसाही, गुर करनी सच बाणी, इंद वरसै तरत सुहावी, कट कट जोत समाणी, कालर बीजस दुरमत ऐसी, निगुरे की निशानी, सतगुर बाजो कोर अंधारा, डूब मोए बिन पानी, जो किश कीनो सो प्रभु रिजाए, जो तुर लिखिया सो मेटना ना जाए, हुक्मे बांधा कार कमाए, एक शब्द रचै सच समाए, चहो दिस हुक्म वरतै प्रभ तेरा, चहो दिस नाम पतालं, सब मैं शब्द वरतै प्रभ साचा, कर्म मिलै बयालं, जामन मरना दिसै सिर उबो, खुदया निंद्रा कालं, नानक नाम मिलै मन पावै, साची नदर रसालं, मलार महला पहला, मरण मुक्त गत सार ना जानै, कंठे बैठी गुर शब्द पछानै, तू कैसे आड़ फाथी जाल, अलख ना जा चर दै समाल, रहाओ एक जी कै जिया खाही, जल तरती बूढ़ी जल माही, सर्व जी की प्रतपानी, जब पकड़ी तब ही पछतानी, जब गल फास पड़ी अत पारी, ऊंडना सांकै पंख पसारी, रस चूगै मन मुख गावार, फाती छूटै गुण ज्ञान विचार, सतगुर सेव टूटै जमकाल, हृदय साचा शब्द संभाल, गुरमत साची शब्द है सार, हर का नाम रखै उरतार, से दुख आगै जे

तन सुख वसै आए रोग गवाए अपना ता नानक वैद सदाए। पौड़ी ब्रह्मा विष्णु महेश देव उपाया ब्रह्मे दिते वेद पूजा लाया। दस अवतारी राम राजा आया दैता मारे ताए हुक्म सुबाया। ईस महेसर सेव तिन्नी अंत ना पाया सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया। दुनिया तंदै लाए आप छपाया धर्म कराए कर्म तुरों फरमाया श्लोक महला दूजा। सामने आया हे सखी कंतै चित करे हो नानक चूर मरै दोहागणी जिनावरी लागा ने हो महला दूजा। सामने आया हे सखी जल हर बरसन हार नानक सुख सवन सोहागणी जिन सह नाल प्यार। पौड़ी आपे शिंज पवाए मल्ला खाड़ा रचिया लथे पड़थू पाए गुरमुख मचिया। मनमुख मारे पछाड़ मूर्ख कचिया आप पिड़ै मारे आप आप कार्ज रचिया। सबना खसम एक है गुरमुख जानिया हुक्मी लिखै सिरलेख। विण कलम मसवाणी है सतसंगत में लाप जिथे हर गुण सदा वखाणी है। नानक सच्चा शब्द सलाहे सच पछाणी है श्लोक महला तीजा। ऊनव ऊनव आया अवर करेंदा वन क्या जाना तिस सास्यो केवरे सी रंग। रंग रहया तिन कामणी जिन मन पाओ पाओ होए नानक पै पाए बाहरी तिन तन सुख ना होए। महला तीजा। ऊनम ऊनम आया वरसै नीर निपंग नानक दुख लागा तिन कामणी जिन कंतै स्यो मन भंग। पौड़ी दोवै तरफा उपाए एक वरतिया बेद बाणी वरताए अंदर वाद कत्या। पर विरत नर विरत हाठा दोवै विच धर्म फिरै रह बारिया मनमुख कच्चे कूड़ियार तिन्नी नीचो दरगे हारिया। गुरमती शब्द सूर है काम क्रोध जिन्नी मारिया सच्चै अंदर महल शब्द सवारिया से भगत दुत पाम दे सच्चै नाए प्यारिया। सतगुर सेवन अपना तिन्ना विटा हो वारिया श्लोक महला तीजा। ऊनम ऊनम आया वरसै लाए झड़ी नानक पाणै चलै कंतकै सो माणे सदा रली। महला तीजा। क्या उठ उठ देखो बप्पड़े इस मेघै हथ किश नाहै जिन एहो मेघ पठाया तिस रख मन माहै। तिसनो मन वसाए सी जा कौन दर करे नानक नगरी बाहरी सब करण भला करे। पौड़ी सो हर सदा सरेवी है जिस करत ना लागै वार आडाने आकास कर खिर मैटायो सार नहार। आपे जगतो पाए कै कुदरत करे विचार मनमुख अग्गै लेखा मंगी है बहुती होवै मार गुरमुख पत्स्यों लेखा निबड़ै बख्शे सिफत भंडार। ओथै हाथ ना अपड़ै कूक ना सुनिए पुकार ओथै सतगुर बेली होवै कड लै अंती वार। एना जनता नो होर सेवा नहीं सतगुर सिर करतार श्लोक महला तीजा। बाबीहा जिसनो तू पुकारदा तिसनो लोचे सब कोए अपनी कृपा करके वससी वण त्रैण हरिया होए। गुरप्रसादी पाई है विरला बूजै कोए बहिंदिया उठदिया निरथी आई है सदा सदा सुख होए नानक अमृत सद ही वरसदा गुरमुख देवै हर सोए। महला तीजा। काल मल होई मेदनी अरदास करे लिवलाए सच्चै सुनिया कन दे तीरक देवै सही सुभाए। इंद्रै नो फरमाया बुठा शह बरलाए अन्न तन उपजै बहु कणा कीमत कहण ना जाए। नानक नाम सलाहे तू सबना जिया देंदा रिजक संभाए। जित खादै सुख उपजै फिर दुख ना लागै आए। पौड़ी हर जियो सच्चा सच तू सच्चै लहै मिलाए दूजै दूजी तरफ है कूड मिलै ना मिलिया जाए। आपे जोड़ विछोड़ै आपे कुदरत दे दिखाए
ਮੋਹ ਸੋਗ ਵਿਯੋਗ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਏ ਹਮ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਕਉ, ਜੋ ਹਰ ਚਰਨੀ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲਿਪਤ ਹੈ, ਐਸੀ ਬਣਤ ਬਣਾਏ, ਸੇ ਸੁਖੀਏ

कणी। श्लोक महला तीजा। बाबीहा खसमै का महल ना जानही, महल देख अरदास पाए। अपने पहाने बहुता बोले, बोलिया थाए ना पाए। खसम वड्डा दातार है, जो इच्छे सो फल पाए। बाबीहा क्या बपड़ा, जगत की तख जाए। महला तीजा। बाबीहा पिनी रहन बोलिया, सहजे सच सुभाए। एहो जल मेरा जियो है, जल बिन रहन ना जाए। गुर सबदी जल पाई है, विचों आप गवाए। नानक जिस बिन चसा ना जीवन दी, सो सतगुर दिया मिलाए। पौड़ी। खंड पताल असंख मैं गणत ना होई, तू करता गोविंद तुद सिरजी तुदै गोई। लख चौरासी मेदनी तुझ ही ते होई, एक राजे खान मलूक कह कहावै कोई। एक सास दावै संच तन दूजे पत खोई, एक दाते एक मंगते सबना सिर सोई। विणना मैं बाजारिया पीहावल होई, कूड़ न खुटे नानका सच करे सो होई। श्लोक महला तीजा। बाबीहा गुणवंती महल पाया, औ गुणवंती दूर। अंतर तेरे हर वसै गुरमुख सदा हजूर। कूक पुकार ना हो वई, नदरी नदर निहाल। नानक नाम रते सहजे मिले, शब्द गुरु कै काल। महला तीजा। बाबीहा बेनती करे, कर कृपा देहो जी दान। जल बिन प्यास ना उतरै, छुटक जाहे मेरे प्राण। तू सुखदाता बेअंत है, गुणदाता निधान। नानक गुरमुख बख्श लै, अंत बेली होए भगवान। पौड़ी। आपे जगतो पाए कै, गुण अवगुण करे विचार। त्रैगुण सर्ब जंजाल है, नाम ना तरे प्यार। गुण छोड़ अवगुण कमावंदे, दरगै होहे खुआर। जूए जन्म तिन्नी हारिया, कित आए संसार। सच्चे शब्द मन मारिया, अहनस नाम प्यार। जिन्नी पुरखी उरतारिया, सच्चा लाख्या पार। तू गुणदाता निदान है, असी अवगणियार। जिस बख्शे सो पाए सी, गुर शब्दी विचार। सलोक महला पंजवा। रात ना विहावी सागता, जिन्ना विसरै नाओ। राती दिन सुहेलिया, नानक हर गुण गाओ। महला पंजवा। रतन जिवे हरमान का, हब्बे मणि मथन। नानक जो प्रभाणिया, सच्चा दर सोहन। पौड़ी। सच्चा सतगुर सेव सच संभालिया, अंत खलवाया। जे सतगुर अगै कहलिया, पोहे ना सकै जमकाल। सच्चा रखवालिया, गुरसाखी जोत जगाए दीवा बालिया। मन मुख विण नामै कूड़ियार, फिरै बेतालिया। पशु मानस जम पलेटे, अंदरों कालिया। सबो वरतै सच, सच्चै शब्द निहालिया। नानक नाम निधान है, पूरै गुर देखालिया। श्लोक महला तीजा। बाबी है हुक्म पछाणिया, गुर कैसे सुभाए। मेघ वरसै दया कर, गूढ़ी शै बरलाए। बाबी हे कूक पुकार रह गई, सुख वसिया मन आए। नानक सोसा लाही है, जे देंदा सबना जिया रिजक समाए। महला तीजा। चात्रक तू ना जानही, क्या तुद विच तिखा है। कित पीतै तिख जाए, दूजै पाए प्रमिया। अमृत जल पल्लै ना पाए। नदर करे जे अपनी, ता सतगुर मिलै सुभाए। नानक सतगुर ते अमृत जल पाया, सहजे रिया समाए। पौड़ी। एक वन खंड बैसै जाए, साधना दे वही। एक पाला ककर पन, शीतल जल हे वही। एक पसम चढ़ावै अंग, मैल ना तो वही। एक जटा बिकट बिकराल, कुल कर खो वही। एक नगन फिरै दिन रात, नींद ना सो वही। एक अगन जलावै अंग, आवे गो वही। विण नावै तन शार, क्या कह रो वही। सोहन खसम द्वार, जे सतगुर से वही। श्लोक महला तीजा। बाबीहा अमृत वेलै बोलिया, तां दर सुनी पुकार। मेघै नो फरमान होवा, वरसों कृपा तार। हाँ तिनकै बलिहारणै, जिन्नी सच रखिया उरतार।
ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਸਭ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਬਾਬੀਹਾ ਇਵ ਤੇਰੀ ਤਿਖਾ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਜੇ ਸੋ ਕਰੈ ਪੁਕਾਰ, ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈਐ ਨਦਰੀ ਉਪਜੈ ਪਿਆਰ। ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਸੈ ਵਿਚੋਂ ਜਾਏ ਵਿਕਾਰ, ਪੌੜੀ ਇਕ ਜੈਨੀ ਉੱਜੜ ਪਾਏ ਤੁਰੋ ਖੁਆਇਆ, ਤਿੰਨ ਮੁਖ ਨਾਹੀ ਨਾਮ ਨਾ ਤੀਰਥ ਨਾਇਆ, ਹੱਥੀ ਸਿਰ ਖੋਹਾਏ ਨੂੰ ਭਦ ਕਰਾਇਆ, ਕੁਚਲ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤਿੰਨ ਜਾਤ ਨਾ ਪਤ ਨਾ ਕਰਮ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਮਨ ਜੂਠੈ ਵੇ ਜਾਤ ਜੂਠਾ ਖਾਇਆ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਆਚਾਰ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਓਵੰਕਾਰ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਗੁਰ ਕਹਿਤ ਅਪਾਰ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਾਵਣ ਦੱਜੈ ਗੁਣ ਬਾਹਰੀ, ਜਿਸ ਦੂਜੈ ਪਾਏ ਪਿਆਰ, ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਸਭ ਸਿੰਗਾਰ ਖੁਆਰ। ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਅਲਾਖਿਆ ਪੇਓ ਹੱਠ ਨਾ ਭਤੀਜਈ, ਇਕ ਗਾਵੈ ਰਾਗ ਪਰੀਆਂ ਰਾਗ ਨਾ ਪੀਜਈ, ਇਕ ਨੱਚ ਨੱਚ ਪੂਰੈ ਤਾਲ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜਈ, ਇਕ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਹੇ ਮੂਰਖ ਤਿੰਨਾ ਕਿਆ ਕੀਜਈ।

गुण खावै, पंज सह दाना खाए, डकै फूकै केह उड़ावै, साहे गए पछताए। अंधी फूक मुई देवानी, खस मिट्टी फिर पानी, अध गुल्ला चिड़ी का चुगण, गैण चढ़ी बिलाए। खसमै भावै ओहा चंगी, जे करे खुदाए खुदाए। सकता सी हो मारे सह मेरे आं, सब पिछे पै खाए। ओहे सताना कुरै न मावै, साहे गया पछताए। अंधा किसनों बुख सुनावै, खसमै मूल न भावै, अग स्यो प्रीत करे अक तिड्डा, अग डाली बै खाए। खसमै भावै ओहो चंगा, जे करे खुदाए खुदाए। नानक दुनिया चार दिहाड़े, सुख कीतै दुख होई, गल्लां वाले हैन करेरे, छड़ न सकै कोई। मक्खी मिठै मरना, जिन तू रखै तिन नेड़ न आवै, तिन पौ सागर तरना। पौड़ी अगमा गोचर तू धनी, सच्चा लख्या पार, तू दाता संमंग ते को देवन हार। जिनी सेव्या तिनी सुख पाया, गुरमति विचार, इकना नो तुद एवै भावदा, माया नाल प्यार। गुर कै शब्द सलाहियै, अंतर प्रेम प्यार, विण प्रीति भगत न होवई, विण सतगुर न लगै प्यार। तू प्रभ सब तुद सेवंदे, इक ढाडी करे पुकार, देह दान संतोखिया, सच्चा नाम मिलै आधार। सलोक महला पहला, राती काल कटै दिन काल, छिजै काया होए पराल। वर्तन वर्तया सर्ब जंजाल, भुलिया चुक गया तबताल। अंधा चख चख पया चेर, पिछे रोवै लियावै फेर। बिन बूझे के सूझै नाही, मोया रोहे रोंदे मर जाही। नानक खसमै एवै भावै, सेई मुए जिन चित ना आवै। महला पहला, मुआ प्यार प्रीत मुई, मुआ वैरवादी वन गया रूप विनसिया। दुखी देह रली, कितों आया कह गया, केहो ना सीओ केहो सी, मनमुख गल्लां गोईया, कीता चौरली। नानक सच्चे नाम बिन, सिर खुर पत पाटी पौड़ी। अमृत नाम सदा सुखदाता, अंते हुए सखाई। बाजगुरु जगत बौराना, नावै सार ना पाई। सतगुर सेवै से प्रवान, जिन ज्योति ज्योत मिलाई। सो साहेब सो सेवक तेहा, जिस भाणा मन वसाई। आपणे भाणे कहो किन सुख पाया, अंधा अंध कमाई। बिखिया कदे ही रजै नाही, मूर्ख भुख न जाई। दूजै सब को लग विगुता, बिन सतगुर बूझ ना पाई। सतगुर सेवे सो सुख पाए, जिसनों किरपा करे रजाई। सलोक महला पहला, सर्म धर्म दोय नानका, जे तन पल्लै पाए, सो तन मित्र ना कांडियै। जित सिर चोटा खाए, जिनकै पल्लै धन वसै, तिनका नौ फकीर। जिनकै हृदय तू वसै, ते नर गुणी गहीर। महला पहला, दुखी दुनी सहेड़ी, जाए ता लगै दुख। नानक सच्चे नाम बिन, किसै न लथी भुख। रूपी भुख न उतरै, जा देखा ता भुख। जे तेरा शरीर के, ते ते लगै दुख। महला पहला, अंधी कमी अंध मन, मन अंधै तर अंध, चिकड़ लाया क्या थी है, जा टुटै पत्थर बंद। बंद टुटा बेड़ी नहीं, ना तुलहा ना हाथ। नानक सच्चे नामिण, केते डुबे साथ। महला पहला, लख मन सोयना, लख मन रूपा, लख साहा सिर शाहो, लख लश्कर लख वाजे नेजे, लखी कोड़ी पातशाहो। जिथे सायर लंघना, अगन पानी असगा हो, कंधी दिस न आवई, ताही पवै कहा। नानक उथे जानिए, साह के पातशाह। पौड़ी, एक ना गली जंजीर, बंदर बाणी है, बदे छुट्टे सच, सच पछाणी है। लिखिया पल्लै पाए,
ਸੋ ਸੱਚ ਜਾਣੀਐ ਹੁਕਮੀ ਹੋਏ ਨਿਬੇੜ ਗਿਆ ਜਾਣੀਐ ਪਹੁ ਜਲ ਤਾਰਨਹਾਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀਐ ਚੋਰ ਯਾਰ ਚੂਆਰ ਪੀੜੇ ਕਹਾਣੀਐ ਨਿੰਦਕ ਲਾਏ ਤਬਾਰ ਮਿਲੇ ਹੜਵਾਣੀਐ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਸਮਾਏ ਸੋ ਦਰਗਹਿ ਜਾਣੀਐ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਉ ਫਕੀਰੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਨਾਉ ਅੰਧੇ ਕਾ ਨਾਉ ਪਾਰਖੂ ਏ ਵੈ ਕਰੈ ਗੁਆਉ ਇਲਤ ਕਾ ਨਾਉ ਚੌਧਰੀ ਕੂੜੀ ਪੂਰੇ ਥਾਉ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ ਕਲ ਕਾ ਇਹੋ ਨਿਆਉ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਰਨਾ ਬਾਜਾਂ ਤੈ ਸਿਕਦਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਪੜਿਆ ਨਾਉ ਫਾਂਦੀ ਲੱਗੀ ਜਾਤ ਫਹਾਏ ਨੋ ਅੱਗੇ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ਸੋ ਪੜਿਆ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਬੀਨਾ ਜਿਨੀ ਕਮਾਣਾ ਨਾਉ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਜੜ ਅੰਦਰ ਜੰਮੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਛਾਉ ਔਰ ਆਜ ਅਸੀਂ

हमरे हर प्राण सखा स्वामी हर मीता, मेरे मन तन जी हर हरे, हरे राम नाम तन माल, जाको भाग तिन लियो री सुहाग, हर हर हरे हरे गुण गावे गुरमत, हौ बलबले हौ बलबले, जन नानक हर जप पही, निहाल निहाल निहाल, कानड़ा महला चौथा, हर गुण गावो जगदीश, एका जी कीचै लख बीस, जप हर हर शब्द जपीस, हर हो कृपीस रहाओ, हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा, हर जप जपे जप जपो जगदीश, तुमरे जन राम जपे ते उत्तम, तिन कहो हाँ कुम कुमे कुम कुम जीस, हर तुम वड वडे वडे वड उचे, सो करे जे तुद पावीस, जन नानक अमृत पिया गुरमति, तन तन तन तन तन गुरु साबीस, कानड़ा महला चौथा, पज राम मन राम, जिस रूप ना रेख वडाम, सतसंगत मेल पज राम, बढ़ हो पाग मथाम रहाओ, जित ग्रह मंदिर हर होत जास, तित कर आनंदो आनंद, पज राम राम राम, राम नाम गुण गावो हर प्रीतम, उपदेश गुरु गुर सतगुरा, सुख होत हर हरे हर हरे, हरे पज राम राम राम, सब सिष्ट तार हर तुम कृपाल करता, सब तू तू तू राम राम राम, जन नानको शरणागति देहो गुरमति, पज राम राम राम, कानड़ा महला चौथा, सतगुर चट पग चाट, जित मिल हर पादर बाट, पज हर रस रस हर गाट, हर हो लिखे लिलाट रहाओ, खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्थार, सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट, कर पेख ना पाईऐ हर ब्रह्म जोग हर पाईऐ, सतसंगति उपदेश गुरु गुर संत जना, गुर खोल खोल कपाट, तू अपरंपर स्वामी आता गाहा, तू परपुर रया जल थले, हर एक एको एक एक है हर थाट, तू जाने सब विद बूझै आपे, जन नानक के प्रभ कट कटे कट कटे, कट हर काट, कानड़ा महला चौथा, जप मन गोविंद माधो, हर हर अगादो, मत गुरमत हर प्रभ लादो, तुर हो लिखे लिला दो रहाओ, बिख माया संच बहु चितै बिकार, सुख पाइये हर पज संत संत संग दी, मिल सत गुरु गुर साधो, ज्यों शोहे पारस मनूर पहे कंचन, त्यों पतत जन मिल संगति, सुध होवत गुरमति सुधादो, ज्यों काष्ट संग लोहा बहुतरता, त्यों पापी संग तरे, साध साध संगति, गुर सतगुरु गुर साधो, चार वर्ण चार आश्रम है, कोई मिले गुरु गुर नानक, सो आप तरह कुर सगल तरादो, कानड़ा महला चौथा, हर जस गावो भगवान, जस गावत पाप लहान, मत गुरमत सुन जस कान, हर हो कृपान रहाओ, तेरे जन त्यावै एक मन एक चित, ते साधु सुख पावै, पज हर हर नाम निधान, उस्त करह प्रभ तेरिया, मिल साधु साजना गुर सतगुरु भगवान, जिनकै हृदय तू स्वामी, ते सुख फल पावै, ते तरे पव सिंध, ते भगत हर जान, तिन सेवा हम लाए हरे, हम लाए हरे, जन नानक के हर तू

स्वामी ने रो पेखत सुनत सबन कह संगे थोरे काज बरो कह फेरो रहाओ नाम बिना जेतो लपटायो कछु नहीं नाही कछ तेरो आगे दृष्ट आवत सब प्रगट इहा मोहयो परम अंधेरो अटक्यो सुत बनता संग माया देवन हार दा तार बसेरो कहो नानक एक है पारो सौ बंधन काटन हार गुरमेरो कानड़ा महला पंजवा बिखै दल संतन तुमरै गाहयो तुमरी टेक भरोसा ठाकरो शरण तुम्हारी आयो रहाओ जन्म जन्म के महाप्राहित दर्शन भेट मिटाहयो पयो प्रगास अन दुजियारा सह समा समाहयो कौन कहे तुम ते कछ नाही तुम समर्थ अथाहयो कृपा निधान रंग रूप रस नाम नानक लै लाहयो कानड़ा महला पंजवा बूढ़त प्राणी हर जप धीरै बिनसै मोह परम दुख पीरै रहाओ सिमरो दिन रैन गुर के चरना जत खत पे

दर्शन प्यास बहुत मन मेरा, मिल नानक देव जगत गुर के रै। कानड़ा महला पंजवा, ऐसी कौन विदे दर्शन परसना रहाओ, आस प्यास सफल मूर्त उमग ही ओ तरसना। दीन लीन प्यास मीन संतना हर संतना, हर संतना की रेन ही ओ अर्प देन। प्रभ पय है कृपेन, मान मोह त्याग छोड़ आओ, तो नानक हर जियो भेटना। कानड़ा महला पंजवा, रंगा रंग रंगन के रंगा, कीट हस्त पूर्ण सब संगा रहाओ। बर्त नेम तीर्थ सहत गंगा, जल हेवत भूख अर नंगा। पूजा चार करत में लंगा, चक्कर कर्म तिलक खाटंगा। दर्शन भेटे बिन सतसंगा, हठ निगरह अत रहत बिटंगा। हाँ रोग ब्यापै चुकै न पंगा, काम क्रोध अत तृष्ण जरंगा। सो मुक्त नानक जे सतगुर चंगा। कानड़ा महला पंजवा, कर सतवा।

प्रेप्रीत प्यारो मोरो रहाओ, गृह से सुहावी आंगन चैना तोरो री तोरो, पंच दूतन स्यो संग तोरो, आए ना जाए बसे निज आसन, ऊंद कमल बिगसोरो, छुटकी हम मैं सोरो, गायो री गायो प्रभ नानक गुनी गहेरो, कनड़ा महला पंजवा करनावा, ता ते जाप मना हर जाप, जो संत बेद कहत पंथ गाखरो, मोह मगन अहंताप रहाओ, जो राते माते संग बपरी, माया मोह संताप, नाम जपत सौ जन उदरे, जिसे उधारो आप, बिनस जाए मोह पै परमा, नानक संत प्रताप, कानड़ा महला पंजवा कर दसवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ऐसो दान देहो जी संतो, जात जियो बलिहार, मान मोही पंच दोखी, उर्ज निकट बसेओ, ताकी शरण साधुआ, दूत संग निवार रहाओ, कोट जन्म जोन प्रमेओ, हार पर्यो द्वार, कृपा गोविंद पई मिलियो नाम आधार, दुलभ जन्म सफल नानक पाव उतार पार, कानड़ा महला पंजवा कर ग्यारवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सहे सुभाए अपने आए, कछु ना जानो कछु दिखाए, प्रभ मिलियो सुख बाले भोले रहाओ, संजोग मिलाए साध संगाए, कथु ना जाए करै बसाए, गुण निधान प्रगट्यो ए चोले, चरण लुभाए अंत जाए, थान थनाए सर्व समाए, रसक रसक नानक गुण बोले, कानड़ा महला पंजवा, गोविंद ठाकर मिलन दुराई, परमित रूपा गामा गोचर, रहो सर्व समाई रहाओ, कहन पवन नाही पायो पायो, अनक उकत चतराई, जतन जतन अनक्यो पावरे, तव मिलियो जौ कृपाई, प्रभु दयार कृपाल कृपा निद, जन नानक संत रे नाई, कानड़ा महला पंजवा, माई सिमरत राम राम राम।

जानो हम बिरथे कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभु का, कहो तिन कहो क्या दिन थे, सब तन मन अर्पो अर्पया रापो कोई मिले प्रभ मिल थे। हर के गुण बहुत बहुत बहुत शोभा, हम तुच्छ कर कर वर्ण थे, हमरी मत वसगत प्रभ तुमरे, जन नानक के प्रभ समर्थ थे, कल्याण महल्ला चौथा। मेरे मन जप हर गुना कथ सुनथई, धर्म अर्थ सब काम मोख है, जन पीछे लग फिर थई रहाओ। सो हर हर नाम ते आवे हर जन, जिस वट भाग मथई, जै दरगे प्रभ लेखा मांगे, तै छूटे नाम ते आए थई। हमरे दुख बहु जन्म जन्म के, दुख हम मैं मैल लग थई, गुर तार कृपा हर जल ना वाए, सब के लिख पाप कथई। जन कह हृदय अंतर प्रभ स्वामी।

रसक घटक नित पीजै, बसदा सबत दीप है सागर, कड कंचन कर तरीजै, मेरे ठाकर के जन इनो ना बांचै, हर मांगै हर रस दीजै, साकत नर प्राणी सत भूखे, नित भूखन भूख करीजै, तावत ताए ताव है प्रीत माया, लख कोसन कौ बिथ दीजै, हर हर हर हर हर जन उत्तम, क्या उपमा तिन दीजै, राम नाम तुल और ना उपमा, जन नानक कृपा करीजै। कल्याण महला चौथा, राम गुरपारस परस करीजै, हम निर्गुणी मनूर या तफीके, मिल सतगुर पारस की जय रहाओ। सुरग मुक्त बैकुंठ सब बांछै, नित आसा आस करी जय, हर दर्शन के जन मुक्त ना मांगै, मिल दर्शन तृप्त मन धीजै, माया मोह सबल है भारी, मोह कालख दाग लगी जय, मेरे ठाकर के जन अलिप्त है मुक्ते, ज्यो मुर्गाई पंख ना पीजै, चंदन वास भुयंगम वेड़ी, के मिलिए चंदन लीजै, काढ़ खड़ग गुर ज्ञान करारा, बिक्षेद छेद रस पीजै, आन आन समदा बहुकीनी, पल बैसंतर पसम करी जय, महायुगर पाप साक्त नरकी ने, मेरे साधु लूकी दीजै, साधु साधु साध जनी के जनंतर नाम तरी जय, परस निपरस पय साधु जन, जन हर भगवान दखीजै, साक्त सूत बहु गुरुजी भरिया, क्यों कर तंत नीजै, तंत सूत किशनिक सह नाही, साक्त संग ना कीजै, सतगुर साध संगत है नीकी, मिल संगत राम रवीजै, अंतर रतन जिवे हर माणक, गुर कृपा ते लीजै, मेरा ठाकर वड्डा वड्डा है स्वामी, हम क्यों कर मिले मिलीजै, नानक मेल मिलाए गुरपूरा, जन को पूर्ण दीजै। कल्याण महला चौथा, रामा राम राम राम रवीजै, साधु साधु साध जनी के, मिल साधु हर रंग की जय रहाओ, जी जंत सब जग है जेता, मन डोलत डोल करी जय, कृपा कृपा कर साध मिलावो, जग थमन कौ थम दी जय, बसदा तला तला सभी ऊपर, मिल साधु चरण रुली जय, अति उत्तम अति उत्तम होवो, सब श्रेष्ठ चरण तल दी जय, गुरमुख जोत भली सिवनी की, आन पानी सख्त भरी जय, मैन दंत निकसै गुरबचनी, सार चब चब हर रस पी जय, राम नाम अन गुरो बहु किया, गुर साधु पुरख मिली जय, गुण राम नाम बिसीरन की है, हर सगल भवन जस दी जय, साधु साधु साध मन प्रीतम, बिन देखे रह ना सकी जय, ज्यों जल मीन जलंग जल प्रीत है, खिन जल बिन फूट मरी जय।

नानक मूर्ख एक तू अवर भला संसार जेतन नाम न उपजै से तन होहे खुआर। प्रभाती महला पहला जय कारण वेद ब्रह्म उचरै शंकर छोड़ी माया जय कारण सिद्ध पय उदासी देवी मर्म न पाया। बाबा मन साचा मुख साचा कहिए तरिय साचा होई दुश्मन दुख न आवै नेड़े हर मत पावै कोई रहाओ। अग्न बिंब पवने की बाणी तीन नाम के दासा ते तस्कर जो नाम न लेवै वासै कोट पंचासा। जे को एक करे चंग्याई मन चित बहुत बफावै एते गुण एतिया चंग्याईया दे न पछोतावै। तुद सा लाहन तिन तन पल्लै नानक का तन सोई जे को जियो कह ओ ना कहो जमकी तलब ना होई। प्रभाती महला पहला जा कै रूप नाही जात नाही नाही मुख मासा सतगुर मिले निरंजन पाया तेरा नाम है निवासा। औदू सहजे तत् विचार जाते फिर ना आवो संसार रहाओ। जा कै कर्म नाही धर्म नाही नाही सुच माला शिव ज्योत कन्नो बुद्ध पाई सतगुरु रखवाला। जा कै बरत नाही नेम नाही नाही बकबाई गत अवगत की चिंत नाही सतगुरु फुरमाई। जा कै आस नाही निरास नाही चित सुरत समझाई तंत कौ परम तंत मिलया नानका बुद्ध पाई। प्रभाती महला पहला ताका कहया दर प्रवान बेखे अमृत दोए सम कर जान क्या कहिए सर्वे रया समाए जो किश्वर तै सब तेरी रिजाए रहाओ। प्रगटी ज्योत चुका अभमान सतगुर दिया अमृत नाम कल मैं आया सोजन जान साची दरगह पावे मान। कहना सुनना अकथ कर जाए कथनी बदनी नानक जल जाए। प्रभाती महला पहला अमृत नीर ज्ञान मन मज्जन अठ सठ तीर्थ संग गहे गोरे उपदेश जवाहर मानक सेवे सिख सो खोज लह। गुर समान तीर्थ नहीं कोए सर संतोख तास गुर होए रहाओ। गुर दरियाओ सदा जल निर्मल मिलिया दुर्मत मैल हरै सदगुर पाया पूरा नामन पशु परे तो देव करै। रत्ता सच नाम तल ही अल सो गुर परमल कहिया जा की वास बनास पतम सौरै ता चरण लिव रही है। गुरमुख जी प्राण उपजै गुरमुख सेव कर जाइय गुरमुख नानक सच समाइय गुरमुख निज पद पाइय। प्रभाती महला पहला गुरप्रसादी विद्या विचार पड़ पड़ पावे मान। आपा मध्य आप प्रगासिया पाया अमृत नाम करता तू मेरा जजमान। एक दखना हो तै पै मांगो देह अपना नाम रहाओ। पंच तस्कर तावत राखे चूका मन अभमान दिष्ट विकारी दुर्मत पागी ऐसा ब्रह्म ज्ञान। जात सत चावल दया कणक कर प्राप्त पाती तान दूध कर्म संतोख कियो कर ऐसा मांगो दान। खेमा तीर्ज कर गऊ लवेरी सहजे बछरा खीर पिए सिवत शर्म का कपड़ा मांगो हर गुण नानक रवत रहै। प्रभाती महला पहला आवत किने ना राखिया जावत क्यों राख्या जाए जिस ते होवा सोई पर जाने जा उसी माए समाए। तू है वाहो तेरी रिजाए जो किश करे सोई पर होए बा अवर ना करना जाए रहाओ। जैसे हर हटकी माला टिंड लगत है एक सखनी होर फेर भरियत है तैसो ही ओ खेल खसम का ज्यो उसकी वडियाई। सुरती कै मार्ग चल कै उल्टी नजर परगासी मन विचार देख ब्रह्म ज्ञानी कौन गिरही कौन उदासी। जिसकी आसा तिस ही सौंप कै एहो रया निर्वाण जिस ते होवा सोई कर मान्या नानक गिरही उदासी सो प्रवान।
ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਸ਼ਟ ਬਿਕਾਰੀ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਹੈ ਹਉ ਤਿਸਕੈ ਬਲ ਜਾਈ ਪਾਪੁਨ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਭੂਲਾ ਫਿਰੈ ਅਜਾਈ ਬੋਲੋ ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਫੁਨ ਬਹੁਣ ਨਾ ਆਵਣ ਵਾਰ ਰਹਾਓ ਉੱਚਾ ਤੇ ਫੁਨ ਨੀਚ ਕਰਤ ਹੈ ਨੀਚ ਕਰੈ ਸੁਲਤਾਨ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣ ਸੋ ਜਾਣਿਆ ਜਗ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਕਉ ਸਮਝਾਵਣ ਜਾਈਐ ਜੇ ਕੋ ਪੂਲਾ ਹੋਈ ਆਪੇ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਕਰਤਾ ਐਸਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਪ੍ਰਭਾਤੈ ਸਭ ਧਿਆਈਐ ਛੋਡੋ ਦੁਨੀ ਪਰੀਤਾ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ ਜਗ ਹਾਰਿਆ ਤਿਨ ਜੀਤਾ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮਨ ਧਾਇਆ ਮਨ ਪੰਖੀ ਆਕਾਸ ਤਸਕਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਵਾਰਿਆ ਨਗਰ ਉਠਾ ਸਾਬਾਸ ਜਾਂ ਤੂੰ ਰਾਖੈ ਰਾਖ ਲੈ ਸਬਤ ਹੋਵੈ ਰਾਸ ਐਸਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਨਿਧ ਮੇਰਾ ਗੁਰਮਤ ਦੇਹ ਲਗੋ ਪਗ ਤੇਰਾ ਰਹਾਓ ਮਨ ਜੋਗੀ ਮਨ ਭੋਗੀਆ ਮਨ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ ਮਨ ਦਾਤਾ ਮਨ ਮੰਗਤਾ ਮਨ ਸਿਰ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰ ਪੰਚਮਾਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਘਟ ਘਟ ਏਕ ਵਖਾਣੀਐ ਕਹੋ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਖੋਟੋ ਪੂਠੋ ਰਾਲੀਐ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਪਤ ਜਾਏ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹਾ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਹੋਏ ਰਜਾਏ ਜਾਤ ਜਨਮ ਨੈ ਪੁੱਛੀਐ ਸੱਚ ਕਰ ਲਿਹੋ ਬਤਾਏ।

जागत बिकसै मूठो अंधा गल फाही सिर मारे तंदा आसा आवै मन सा जाए उर्जी ताणी किशना बसाए। जागस जीवन जागणहारा सुख सागर अमृत भंडारा रहाओ कहो ना बूझै अंधना सूझै पूंडी कार कमाई आपे प्रीत प्रेम परमेश्वर करमी।

मन में क्रोध महाहंकारा, पूजा करे बहुत विस्तारा, कर इशनान तर चक्कर बनाए, अंतर की मल कभी ना जाए, इत संजम प्रभ की नहीं ना पाया, भगवती मुंद्रा मन मोहया माया रहाओ, पाप करहै पंचा के बसरे, तीर्थ नाए कह सब उत्तरे, बहुर कमावे होए निशंक, जंपर बांध खरे कालंक, कुंगर बांध बजा वैताला, अंतर कपट फिरै बेताला, वर्मी मारी साप न मुआ, प्रभ सबके जाने जंतु किया, पूवर ताप गेरी के बस्तरा, अपदा का मारिया गृह ते नस्ता, देश छोड़ पर देश सहताया, पंच चंडाल नाले ले आया, कान फराए हराए टूका, कर कर मांगे तृप्तावन ते चूका, बनता छोड़ बद नदर पर नारी, वेसना पाई है महा दुखियारी, बोले नाही होए बैठा मोनी, अंतर कल्प पवाई है जोनी, अन्न ते रहता दुख देही सहता, हुक्म ना बूझे व्यापया ममता, बिन सतगुर करे ना पाई परम गते, पूछो सगल वेद सिमरते, मन मुख कर्म करे आ जाई, ज्यों बालू कर ठौर ना ठाई, जिसनो पहे गोबिंद दयाला, गुर का बचन तिन बांध्यो पाला, कोट मदे कोई संत दिखाया, नानक तिन कै संग तराया, जे होवै भाग तां दर्शन पाई है, आप तरै सब कुटुंब तराई है, रहाओ दूजा प्रभाती महला पंजवा, सिमरत नाम किलबिक सब काटे, धर्म राय के कागर फाटे, साध संगत मिल हर रस पाया, पार ब्रह्म रिदमाए समाया, राम रमत हर हर सुख पाया, तेरे दास चरण सरनाया, रहाओ चूका गौण मिटिया अंधियार, गुर दिखलाया मुग द्वार, हर प्रेम भगत मन तन सद राता, प्रभु जनाया तभी जाता, घट घट यंत्र रव्या सोए, तिसमिन बीजो नाही कोए, बेर बैर विरोध छेदे पै परमा, प्रभ पुन आत्मै कीने धर्मा, महातरंग ते कांडै लागा, जन्म जन्म का टूटा गांडा, जप तप संजम नाम संभालिया, अपने ठाकर नजर निहालिया, मंगल सुख कल्याण तिथाई, जय सेवक गोपाल गुसाई, प्रभ सो प्रसन्न पए गोपाल, जन्म जन्म के मिटे बेताल, होम जग उर्दता पूजा, कोट तीर्थ इशनान करीजा, चरण कमल निमख हृदय तारे, गोविंद जपत सब कार्य सारे, ऊचे ते ऊचा प्रभ थान, हर जन पावे सही ध्यान, दास दास की बांछो तूर, सर्व कला प्रीतम भरपूर, मात पिता हर प्रीतम नेरा, मीत साजन परवासा तेरा, कर गए लीने अपने दास, जब जीवे नानक गुणतास, विभास प्रभाती बाणी, भगत कबीर जी की एको अंकार, सदगुर प्रसाद, मरण जीवन की शंका नासी, अपन रंग सहज प्रगासी, प्रगटी जोत मिटिया अंधियारा, राम रतन पाया करत बिचारा, रहाओ जह आनंद दुख दूर पयाना, मन मानक लिव तत लुकाना, जो किश होवा सो तेरा पाणा, जो इव बूझै सो सही समाणा, कहत कबीर किल बिख गए खीणा, मन भया जग जीवन लीणा, प्रभाती अल्लाह एक मसीत बस्त है, अवर मुल्क किस केरा, हिंदू मूर्त नाम निवासी, दोह मह तत ना हेरा, अल्लाह राम जीवो तेरे नाई, तू कर मे रम्मत साई, रहाओ दखन देश हरि का बासा, पच्छम अल्लाह मुकामा, दिल में खोज दिलै दिल खोजो, एही ठौर मुकामा, ब्रह्म ग्यास करै चौबीसा, काजी

निधाना कहां ओडी से मज्जन किया क्या मसीत सिर नाए दिल में कपट निवाज गुजार है क्या हज का बह जाए एते औरत मरदा साजे ए सब रूप तुम्हारे कबीर पूंगरा राम अल्लाह का सब गुर पीर हमारे कहत कबीर सुनो नर नर वै परो एक की सरना केवल नाम जपो रे प्राणी तभी निश्चय तरना प्रभाती अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे लोगा परम ना पूलो पाई खालक खालक खालक मैं खालक पूर रहो सरबठाई रहाओ माटी एक अनेक पांत कर साजी साजन हार ना कश पोच माटी के पांडे ना कश पोच कुंभार है सब मैं सच्चा एक सोई तिसका किया सब कश होई हुक्म पछान सो एको जाने बंदा कही है सोई अल्लाह अलख ना जाई लखया गुर गुर दीना मीठा कह कबीर मेरी शंका नासी सर्व निरंजन डीठा प्रभाती बेद कतेब कहो मत झूठे झूठा जो ना बिचार जो सब मैं एक खुदाए कहता हूं तो क्यों मुर्गी मार है मुल्ला कहो न्याओ खुदाई तेरे मन का भरम ना जाई रहाओ पकर जियो अन्या देह बिनासी माटी को बिस्मिल किया ज्योत स्वरूप अनाहत लागी कहो लाल क्या किया क्या उजू पाक किया मोह धोया क्या मसीत सिर नाया जो दिल में कपट निवाज गुजारो क्या हज का बह जाया तू ना पाक पाक नहीं सूझया तिसका मर्म ना जानिया कह कबीर पिसते चूका दोजक स्यो मन मानिया प्रभाती सुन संध्या तेरी देव देवा कर अदपत याद सुमाई सिद्ध समाध अंत नहीं पाया लाग रहे सरनाई लेहो आरती हो पुरख निरंजन सतगुर पूजो भाई ठांडा बर्मा निगम विचार है अलख ना लखया जाई रहाओ तत तेल नाम किया बाती दीपक देह उजियारा जोत लाए जगदीश जगाया बूझे बूझन हारा पंचे शब्द

प्रभाती बाणी भगत नामदेव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन की व्यर्था मन ही जानै, कह बूझलिया गै कहियै, अंतर जामी राम रवाई मैं डर कैसे चहियै। बेदियाले गोपाल गोसाई मेरा प्रभ रवैया सर्वे ठाई रहाओ। मन है हाट मन है पाट मन है पासारी, मन है बस है नाना पेदी परमत है संसारी। गुर कै शब्द हो मन राता दुबदा सहि समाणी, सबो हुक्म हुक्म है आपे निरपो समत विचारी। जो जन जान भजै पुरखोत्म ताची अवगत बाणी, नामा कह जग जीवन पाया हृदय लख बिडाणी। प्रभाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग, तां का अंत ना जानिया, सर्ब निरंतर राम रया रव ऐसा रूप बखानिया। गोविंद गाजै शब्द बाजै आनंद रूपी मेरो रामैया रहाओ। बावन बिखू बानै बिखे बासते सुख लागला, सर्बे आद परमलाद काहट चंदन पहलै। तुमचे पारस हमचे लोहा संगे कंचन पहला, तू दयाल रतन लाल नामा साच समायला। प्रभाती अकुल पुरख एक चलत उपाया, कट कट अंतर ब्रह्म लुकाया। जी की जोत न जानै कोई, तै मैं किया सो मालूम होई रहाओ। ज्यों प्रगासिया माटी कुंभे, ओ आप ही करता बीठल देओ। जी का बंधन कर्म व्यापै, जो किस किया सो आपै आपै। प्रणवत नाम देओ इहो जियो चितवै सो लहै, अमर होए सद आकुल रहै। प्रभाती भगत बेणी जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तन चंदन मस्तक पाती हृदयंतर कर तलकाती, ठग दिष्ट बगा लिव लागा देख बैसनो प्राण मुख पागा। कल भगवत बंद च राम क्रूर दिष्ट रता निस्बादंग रहाओ। नित प्रत इशनान श्रीरंग दोय धोती कर्म मुख खीरंग, हृदय श्री संध्यानी पर दर्भ हरन की बानी। सिल पूजस चक्र गणेशंग निस जागत निस जागस भगत परवेसंग, पग नाचस चित आकर्मंग एलंपट नाचा धर्मंग। मृग आसन तुलसी माला कर उजल तिलक कपाला, हृदय कूड़ कंठ रुद्राखंग रे लंपट कृष्ण अपाखंग। जिन आत्म तत् ना चीनिया सा फोगट धर्म अबीनिया। कहो बेणी गुरमुख त्यावै बिन सतगुर बाट ना पावै। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद। राग जय जयवंती महला नावा, राम सिमरो एह तेरा काज है। माया को संग त्याग प्रभ जू की शरण लाग, जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है रहाओ। सुपने जो तन पछान काहे पर करतमान, बारू की पीत जैसे बसदा को राज है। नानक जन कहत बात बिन सजह है तेरो गात, छिन छिन कर गयो काल तैसे जात आज है। जय जावंती महला नावा, राम भज जन्म सिरात है। कहो कहा बार बार समझत न क्यों गवार, बिनसत नह लगे बार उरे समगात है रहाओ। सगल परम डार देहे गोबिंद को नाम लेहे, अंत बार संग तेरा यह एक जात है। बिखिया बिख ज्यो बिसार प्रभ को जस ही ये तार, नानक जन कह पुकार अवसर बिहात है। जय जावंती महला नावा, रे मन कौन गत होए है तेरी,
ਇਹ ਜਗ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੋ ਤਉ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਓ ਕਾਨ ਬਿਖਿਆਨ ਸਿਉ ਅਤ ਲੁਭਾਨ ਮਤ ਨਾਨ ਫੇਰੀ ਰਹਾਓ ਮਾਨਸ ਕੋ ਜਨਮ ਲੀਨ ਸਿਮਰਨ ਨੈ ਨਿਮਖ ਕੀਨ ਦਾਰਾ ਸੁਖ ਭਇਓ ਦੀਨ ਪਗਹੁ ਪਰੀ ਬੇਰੀ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਹਿ ਪੁਕਾਰ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਜਗ ਪਸਾਰ ਸਿਮਰਤ ਨਹਿ ਕਿਉ ਮੁਰਾਰ ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਚੇਰੀ ਜੈ ਜੈ ਵੰਤੀ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ ਬੀਤ ਜੈ ਹੈ ਜਨਮ ਅਕਾਜ ਰੇ ਨਿਸ ਦਿਨ ਸੁਣ ਕੈ ਪੁਰਾਨ ਸਮਝਤ ਨੈ ਰੇ ਅਜਾਨ ਕਾਲ ਤਉ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ ਕਹਾਂ ਜਹਿ ਪਾਜ ਰੇ ਰਹਾਓ ਅਸਥਿਰ ਜੋ ਮਾਨ

बाद समन जो इस प्रेम की दम केहो होती साट, रावण होते सो रंक न जिन सिर दीने काट। प्रीत प्रेम तन खच रहया बीच नाराई होत, चरण कमल मन बेदेओ बुजन सुरत संजोग। सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसदा परम, मूसन प्रेम परम कै गनो एक कर करम। मूसन मस्कर प्रेम की रही जो अंबर छाए, बिंदे बांदे कमल में पवर रहे लपटाए। जप तप संजम हरख सुख मान महत्यार गर्भ, मूसन निमखक प्रेम पर वार वार देओ सर्ब। मूसन मर्म न जान नहीं मर्त हिरत संसार, प्रेम परम न बेदेओ उर्जो मिथ व्यवहार। कब दब जब जारी है बिशरत प्रेम बेहाल, मूसन तब ही मूसी है बिसरत पुरख दयाल। जा को प्रेम सुआओ है चरण चितव मन माहे, नानक बिरही ब्रह्म के आन न कतहू जाहे। लख काटी ऊंचो कनो चंचल चीत बेहाल, नीच कीच निमृत कनी करनी कमल जमाल। कमल नैन अंजन श्याम चंद्र बदन चित चार, मूसन मगन मरम स्यों खंड खंड कर हार। मगन पयो प्रे प्रेम स्यों सूद ना सिमरत अंग, प्रगट पयो सब लो मैं नानक अदम पतंग। श्लोक भगत कबीर जीओ के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कबीर मेरी सिमरनी रसना उपर राम, आज जुगादी सगल भगत ताको सुख विश्राम। कबीर मेरी जात कहो सबको हसने हार, बलिहारी इस जात कहो जे जप्यो सृजनहार। कबीर डगमग क्या करे कहां डुलावे जियो, सर्व सुख को नायको राम नाम रस पियो। कबीर कंचन के कुंडल बने ऊपर लाल जड़ाओ, दिसे दांदे कान ज्यो जिन मन नाही नाओ। कबीर ऐसा एक याद जो जीवत मृतक होए, निरपय होए कै गुण रवे जत पेखों तत सोए। कबीर जा दिन हो मुआ पाछे पया आनंद, मोहे मिलियो प्रभ अपना संगी भजै गोबिंद। कबीर सब ते हम बुरे हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए। कबीर आई मुझे पै अनक करे कर पेस, हम राखे गुरे अपने उनकी नो आदेश। कबीर सोई मारी है जे मुए सुख होए, पलो पलो सबको कह बुरो न माने कोए। कबीर राती हो मैं कारिया कारे उबे जंत, लह फाहे उठतावते से जान मारे भगवंत। कबीर चंदन का बिरवा पला बेड़े टाग पलास, ओए पी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। कबीर बांस बडाई बूढ़िया इओ मत डूबो कोए, चंदन कै निकटे बसे बांस सुगंध ना होए। कबीर दीन गवाया दुनी से ओ दुनी ना चली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफले अपने हाथ। कबीर जय जय हों फिरे ओ कौतक ठाओ ठाए, एक राम स्नेही बहरा उजर मेरे पाए। कबीर संतन की चुंगिया पली पाठक सती गाओ, आग लगो तेह तौल हारो जे नाही हर को नाओ। कबीर संत मुए क्या रोई है जो अपने ग्रह जाए, रोबो सागत बापरे जो हट है हट बेकाए। कबीर सागत ऐसा है जैसी लक्षण की खान, कोने बैठे खाई है प्रगट होए निदान। कबीर माया डोलनी
ਪਵਨ ਵਹਿ ਹਿਵਤਾਰ ਜਿਨ ਬਿਲੋਇਆ ਤਿਨ ਖਾਇਆ ਅਵਰ ਬਿਲੋ ਬਨਹਾਰ ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਚੋਰਟੀ ਮੁਸਮੁਸਲਾ ਵਹਿਹਾਟ ਏ ਕਬੀਰਾ ਨਾਮ ਸਹਿ ਜਿਨ ਕੀਨੀ ਬਾਰੈ ਬਾਟ ਕਬੀਰ ਸੂਖ ਨਾ ਇਹ ਜੁਗ ਕਰੈ ਜੋ ਬਹੁਤੈ ਮੀਤ ਜੋ ਚਿਤ ਰਾਖੈ ਏਕ ਸਿਉ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਨੀਤ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਆਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਕਹਿ ਕਬੀਰਾ ਗਾਂਠ ਨਾ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਪਟ ਨਹੀਂ ਪਾਰਖੂ ਨਹੀਂ ਗਾਕ ਨਹੀਂ ਮੋਲ ਕਬੀਰ ਤਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜਾਂ ਕੋਠਾ ਕਰ ਰਾਮ ਪੰਡਿਤ ਰਾਜੇ ਭੂਪਤੀ ਆਵੈ ਕੌਨੇ ਕਾਮ ਕਬੀਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇਕ ਸਿਉ ਕੀਏ ਅੰਨ ਦੁਬਦਾ ਜਾਏ ਭਾਵੈ ਲਾਂਬੇ ਕੇਸ ਕਰ ਭਾਵੈ ਕਰ ਰਮੁੜਾਏ ਕਬੀਰ ਜਾ ਕਾਜਲ ਕੀ ਕੋਠਰੀ ਅੰਧ ਪਰੇ ਤਸਮਾਹੇ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਉ ਪੈਸ ਜੋ ਨਿਕ ਸਜਾਹੇ ਕਬੀਰ ਇਹੋ ਤਨ ਜਾਏਗਾ ਸਕੋ ਤਾਂ ਲਿਹੋ ਬਹੋਰ ਨਾਂਗੇ ਪਾਵੋ ਤੇ ਗਏ ਜਿਨ ਕੇ ਲਾਖ ਕਰੋਰ ਕਬੀਰ ਇਹੋ ਤਨ ਜਾਏਗਾ ਕਵਨੈ ਮਾਰਗ ਲਾਏ ਕਹਿ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਾਧਕੀ ਕਹਿ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੂਆ ਮਰ ਪੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕੋਏ ਐਸੇ ਮਰਨੇ ਜੋ ਮਰੈ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੈ ਬਾਰ ਜਿਉ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਪੋਏ ਗਰੈ ਬਹੁਰ ਨਾ ਲਾਗੈ ਡਾਰ ਕਬੀਰਾ ਤੁਹੀਂ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ਕਬੀਰ ਆਰਾਮ ਰਤਨ ਤਾ ਪਾਈਐ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤਜੈ ਸਰੀਰ ਕਬੀਰ ਚੰਖ ਨਾ ਚੰਖੀਐ ਤੁਮਰੋ ਕਹਿਓ ਨਾ ਹੋਏ ਕਰਮ ਕਰੀਮ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਟ ਨਾ ਸਾਕੈ ਕੋਏ ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਝੂਠਾ ਟਕੈ ਨਾ ਕੋਏ ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਸੋ ਸਹਿ ਜੋ ਮਰ ਜੀਵਾ ਹੋਏ ਕਬੀਰ ਉਜਲ ਪੈਰੈ ਕਾਪਰੇ ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਹੇ ਇਕ ਸਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਂਧੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਹੇ ਕਬੀਰ ਬੇੜਾ ਜਰ ਜਰਾ ਫੂਟੇ ਛੇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਹਰੂਏ ਹਰੂਏ ਤਰ ਗਏ ਡੂਬੇ ਜਿਨ ਸਰਪਾਰ ਕਬੀਰ ਹਾਰਡ ਜਰੇ

कबीर बैसनों की कूकर भली सागत की बुरी माए, ओह नित सुने हर नाम जस ओ पाप बिसाहन जाए। कबीर हरना दुबला एहो हरियारा ताल, लाख अहेरी एक जियो केता बंचो काल। कबीर गंगा तीर जो कर करे पीवे निर्मल नीर, बिन हर भगत ना मुक्त होए इयों कह रमे कबीर। कबीर मन निर्मल पया जैसा गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर हर दीपी अरी चूना उज्जल पाए, राम स्नेही तो मिले दोनों बरन गवाए। कबीर हर दीपी रतन हर है चून चहन ना रहाए, बलिहारी यह प्रीत कहो जे जात बरन कुल जाए। कबीर मुक्त द्वार।

गुण की लहर चबक जब देखियो बेड़ा जर्जरा, तब उतर पड़े हों फर्क। कबीर पापी भक्त ना पावई हर पूजा ना सुहाए, माखी चंदन पर हरै जय बगंत जाए। कबीर बैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सब संसार एक कबीरा नाम हुआ जे नाही रोवनहार। कबीर राम ना त्यायो मोटी लागी खोर, काया हांडी काठ की ना उचरे बहोर। कबीर ऐसी होए परी मन को पावत कीन, मरने ते क्या डरपना जब हास दौरा लीन। कबीर रस को गंडो चूसी है, गुण को मरिए रोए, अवगुण यारे मानस है पलो न कह है कोए। कबीर गागर जल परी आज काल जय है फूट, गुर जो नाचे तय अपनो अध माज ली जय गे लूट। कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाओ, गले हमारे जेवरी जय खिंचे तै जाओ। कबीर जपनी काठ की क्या दिखलावे लोए, हृदय राम ना चेत ही ये जपनी क्या होए। कबीर बिरो पुजंग मन बसे मंत ना माने कोए, राम बियोगी ना जिये जिये ता बौरा होए। कबीर पारस चंदन तिन है एक सुगंध, तेह मिलते ऊ तुम पहे लो काठ निर्गंध। कबीर जम का ठेंगा बुरा है, ओ नहीं सहया जाए। एक जो साधु मोहे मिले ओ तेन लिया अंचल लाए। कबीर बैद कहे हों ही भला दारू मेरे वस, ए तो बस्त गोपाल की जब पावे लेखस। कबीर नौबत अपनी दिन दस लिहो बजाए, नदी नाव संजोग ज्यो बौर न मिल है आए। कबीर साथ समुद मस करो कलम करो बन राए, बसदा कागज जो करो हर जस लिखन ना जाए। कबीर जात जुलाहा क्या करे हृदय बसे गोपाल, कबीर रमैया कंठ मिल चूके सर्व जंजाल। कबीर ऐसा को नहीं मंदिर दे जराए, पांचो लड़के मार कह रह राम लियो लाए। कबीर ऐसा को नहीं एहो तन दे वै फूक, अंधा लोग ना जान नहीं रहो कबीरा कूक। कबीर सती पुकारे चह चढ़ी सुनो वीर मसान, लोग सबाया चल गयो हम तुम काम निदान। कबीर मन पंखी पयो उड़ उड़ दे दिस जाए, जो जैसी संगत मिले सो तै सो फल खाए। कबीर जां को खोजते पायो सोई ठौर, सोई फिर कह तू पया जा को कहता और। कबीर मारी मरो कुसंग की, केले निकट जो बेर, ओह चूले ओह चीरी है साकत संग नहेर। कबीर पार पराई सिर चरै, चलो चाहे बाट, अपने पारे ना डरै आगे औकट काट। कबीर बन की दादी लकरी ठंडी करे पुकार, मत बस परो लोहार के जारे दूजी बार। कबीर एक मरण ते दोए मुए, दोए मरण ते चार, चार मरण ते छह मुए, चार पुरख दोए नार। कबीर देख देख जग ढूंढया कहू ना पायो ठाओर, जिन हर का नाम ना चेतियो कहां पुलाने और। कबीर संगत करिए साध की अंत करे निर्वाहो, साकत संग ना कीजिए जाते हुए बिना हो। कबीर जग में चेतियो जान कै, जग में रहो समाए, जिन हर का नाम ना चेतियो बंद है जन्मे आए। कबीर आसा करिए राम की अवरै आस निरास, नरक परे ते मन नहीं जो हर नाम उदास। कबीर सिख साखा बहुते किए केसो कियो न मीत, चाले थे हर मिलन कहो बीचे अटके उचित। कबीर कारण

कबीर माए मुंडोते गुरु की जाते परम ना जाए, आप डुबे चौबे मैं चेले दिए बहाए। कबीर जेते पाप किए राखे तले दुराए, प्रगट पे निदान सब जा पूछे धर्म राय। कबीर हर का सिमरन छाड़ के पाल्यो बहुत कुटंब, तंदा करता रह गया भाई रहा ना बंद। कबीर हर का सिमरन छाड़ के रात जगावन जाए, सरपन होए क्या उतर जाए अपने खाए। कबीर हर का सिमरन छाड़ के अहोई राखे नार, गधी होए क्या उतर पारस है मन चार। कबीर चतराई अत कनी हर जप हिरदय माहे, सूरी ऊपर खेलना ग्रहता ठाहर नाहे। कबीर सोई मुख तन है जामु कहिए राम, देही किसकी बापरी पवित्र होए गो ग्राम। कबीर सोई कुल पली जा कुल हर को दास, जे कुल दास न उपजै सो कुल ढाक पलास। कबीर है गए बाहन सगन कानो, लाख तजा फहराए, या सुख ते पिखिया पली जो हर सिमरत दिन जाए। कबीर सब जग हों फिरयो मांदल कंध चढ़ाए, कोरी कोई काहू को नहीं सब देखी ठोक बजाए। मार्ग मोती बीथरे अंधा निकस्यो आए, जोत बिना जगदीसगी जगतो लंगे जाए। बूढ़ा बंश कबीर का उपजो पूत कमाल, हर का सिमरन छाड़ के कर ले आया माल। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ ना लीजे कोए, पाछे पाव ना दीजिए आगे होए सो होए। कबीर जग बांध्यो जेह जेवरी, तेह मत बंधो कबीर, जह आटा लोन ज्यो सोन समान शरीर। कबीर हंस उड्यो तन गाड्यो सो जाई सैना, अज हूं जियो ना छोड़ई रंकाई नैना। कबीर नैन निहारो तुझ कहो श्रवण सुनो तो नाओ, बैन उचरो तो नाम जी चरण कमल रिद ठाओ। कबीर सुर्ग नर्ग ते मैं रहो सदगुर के प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहो अंत अर्याद। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, कह बे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख कह कह कहो कहे ना को पतियाए, हर जैसा तैसा उही रहो हरख गुन गाए। कबीर चुगे चितारे पी चुगे चुग चुग चितारे, जैसे बचरे कुंज मन माया ममतारे। कबीर अंबर कन हर छाया बरख भरे सरताल, चात्रक जो तरसत रह तिनको कौन हवाल। कबीर चकी जो निस बिछरे आए मिले प्रभात, जो नर बिछरे राम स्यो ना दिन मिले ना रात। कबीर रह नायर बेशोरिया रहोरे संख मजूर, देवल देवल ताहड़ी देसे उगवत सूर। कबीर सूता क्या करे जाग रोए पै दुख, जाका बासा गोर मैं सो क्यों सो वै सुख। कबीर सूता क्या कर है उठ के ना जपै मुरार, एक दिन सोमन होए गो लांबे गोट पसार। कबीर सूता क्या करे बैठा रहो अर जाग, जाके संगते बिछरा ताही के संग लाग। कबीर संत की गल ना छोड़िए मार्ग लागा जाओ, पेखत ही पोनीत होए पेट जपिए नाओ। कबीर साकत संग ना कीजिए दूरे जाइए भाग, बासन कारो परसिए तौ कछ लागे दाग। कबीरा राम ना चेतियो जरा पहुंचो आए, लागी मंदिर द्वार ते आप क्या काढ़िया जाए। कबीर कारण सो पयो जो की नो करतार, तिस बिन दूसर को नहीं एक सृजनहार। कबीर फल लागे फलन पाकन लागे आंब, जाय पहुंचे खसम को जो बीच ना खाही कांब। कबीर ठाकर पूजे मोल ले मानहट तीर्थ जाहे, देखा देखी स्वांग तार पुले पटका खाहे। कबीर पाहन परमेश्वर किया पूजे सब संसार, इस प्रवासे जो रहे बूढ़े काली तार।
ਕਬੀਰ ਕਾਗਦ ਕੀ ਓਬਰੀ, ਮਸਕੇ ਕਰਮ ਕਪਾਟ, ਪਾਹਨ ਬੋਰੀ ਪਿਰਥਮੀ, ਪੰਡਿਤ ਪਾੜੀ ਬਾਟ। ਕਬੀਰ ਕਾਲ ਕਰੰਤਾ ਅਬ ਹੈ ਕਰ, ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੋਏ ਤਾਲ, ਪਾਛੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜਬ ਸਿਰ ਪਰ ਆਵੈ ਕਾਲ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਜਨਤਿਕ ਦੇਖਿਆ, ਜੈਸੀ ਧੋਈ ਲਾਖ, ਦਿਸੈ ਚੰਚਲ ਬਹੁਗੁਣਾ, ਮਤਹੀਨਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਕਹੋ, ਜਮ ਨਾ ਕਰੈ ਤਿਸਕਾਰ, ਜਿਨ ਇਹੋ ਜਮੁਆ ਸਿਰਜਿਆ, ਸੋ ਜਪਿਆ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਕਬੀਰ ਕਸਤੂਰੀ ਪਇਆ, ਭਵਰ ਭਏ ਸਬਦਾਸ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕੀ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਕਬੀਰ ਗਹਿ ਗਜ ਪਰਿਓ ਕੁਟੰਬ ਕੈ, ਕੰਠੈ ਰਹਿ ਗਿਓ ਰਾਮ, ਆਏ ਪਰੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੇ, ਵਿਚੈ ਤੂੰ ਮਾ ਤਾਮ। ਕਬੀਰ ਸਾਗਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ, ਰਾਖੈ ਅੱਛਾ ਗਾਓ, ਉਹ ਸਾਗਤ ਬੱਪਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਲਹਿ ਨਾਓ। ਕਬੀਰ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋਰ ਕੈ, ਜੋਰੇ ਲੱਖ ਕਰੋਰ, ਚਲਤੀ ਬਾਰ ਨਾ ਕਛ ਮਿਲਿਓ, ਲਈ ਲੰਗੋਟੀ ਤੋਰ। ਕਬੀਰ ਬੈਸਰੋਂ ਹੁਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਇਆ, ਮਾਲਾ ਮੇਲੀ ਚਾਰ, ਬਾਹਰ ਕੰਚਨ ਬਾਰਹਾ, ਪਿੱਤਰ ਭਰੀ ਪੰਗਾਰ। ਕਬੀਰ ਰੋਣਾ ਹੋਏ ਰਹੋ ਬਾਟਕਾ, ਤਜ ਮਨ ਕਾ ਅਭਮਾਨ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਮਿਲੈ ਭਗਵਾਨ। ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ

हर जने ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग कबीर पानी हुआ ता क्या पया सिरा ताता होए। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए ऊच पवन कर कामनी शिखर तजा फहराए ताते पली मधुकरी संत संग गुण गाए। कबीर पाटन ते उजर पहला राम भगत जेठाए राम स्नेही बाहरा जमपुर मेरे पाए। कबीर गंग जमन के अंतरे सहज सुन के काट तहां कबीर है मटकिया खोज तुम जन बाट। कबीर जैसी उपजी पेड़ ते जो तैसी निभ ओड़ हीरा किसका बापरा पुजे नरतन करोड़। कबीरा एका चंबो देखियो हीरा हट बिकाए बंजन हारे बाहरा कौडी बदले जाए। कबीरा जहां ज्ञान तह धर्म है जहां झूठ तह पाप जहां लोभ तह काल है जहां खिमा तह आप। कबीर माया तजीता क्या पया जो मान तजया नहीं जाए मान मुनि मुनमर गरे मान सबे कौ खाए। कबीर साचा सतगुर मैं मिलया शब्द जो बाहया एक लागत ही पोए मिल गया परया कले जे शेक। कबीर साचा सतगुर क्या करे जो सिखा मह चूक अंधे एक न लाग गई जो बास बजाई है फूक। कबीर है गए बहन सगन कहन छत्रपति की नार ताश पटंतर ना पुजय हर जन की पनिहार। कबीर निरप नारी क्यों निंदी है क्यों हर चेरी कौ मान ओ मांग सवार बिखै कौ ओ सिमरै हर नाम। कबीर थूनी पाई थित पई सतगुर बंदी तीर कबीर हीरा बन जया मान सरोवर तीर। कबीर हर हीरा जन जहोरी लेके मांडे हाट जब ही पाई है पारखू तब हिरन की साट। कबीर काम परे हर सिमरी है ऐसा सिमरो नित अमरापुर बासा करो हर गया बहोर बित। कबीर सेवा को दोए पले एक संत एक राम राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम। कबीर जे मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर एक अवकट काटी राम की तेह चढ़ रहे हो कबीर। कबीर दुनिया के दोखे मुआ चालत कुल की कान तब कुल किसका लाज सी जबले तरह मसान। कबीर डूबे गोरे बापरे बहु लोगन की कान पारोसी के जो हुआ तू अपने पी जान। कबीर पली मधुकरी नाना बिद को नाज दावा काहू को नहीं बड़ा देश बड़ राज। कबीर दावे दा जिन होत है निर्दावे रह निसंक जो जानु निर्दावे रह सो गर इंद्र सो रंक। कबीर पाल समूहा सरवर परा पी ना सके कोई नीर भाग बड़े तै पायो तू पर पियो कबीर। कबीर पर बाते तारे खिसे त्यों एहो खिसे शरीर ए दो अखर ना खिसे सो गह रहे हो कबीर। कबीर कोठी काठ की दैदस लागी आग पंडित जल मुए मूर्ख उबरे पाग। कबीर संसा दूर करो काग दे बिहाए बावन अखर सोध कै हर चरणी चितलाए। कबीर संत ना छड़े संतई जो कोट कमलै असंत मलयागर भुजंगम बेड्यो ता शीतलता नात जंत। कबीर मन शीतल पाया ब्रह्म ज्ञान जिन जो आला जग जा रहा सो जन के उदक समान। कबीर सारी सृजन हार की जाने नाही कोए कह जाने अपन तनी कह दास दीवानी होए। कबीर पली पई जो पौ परिया दिशा गई सब पूल ओरा घर पानी पया जाए मिलियो टलकूल। कबीरा तूर सकेल कै पुरिया बांधी देह दिवस चार को पेखना अंत खेहे की खेहे। कबीर सूरज चांद कै उदय पही सब देह गुर गोबिंद के बिन मिले पलट पही सब खेह। जह अन पौत है पह नहीं जह पौत है हर ना है
कहो कबीर विचार क संत सुनो मन माए। कबीर जिनो किशु जानिया नहीं तिन सुख नींद बिहाए, हमो जो बूझा बूझना पूरी परी बलाए। कबीर मारे बहुत पुकारिया पीर पुकारे और, लागी चोट मरम की रहो कबीरा ठौर। कबीर चोट सुहेल की कबीर चोट सुहेली सेल की, लागत ले ओ सास चोट सहारे शब्द की तास गुरु मैं दास। कबीर मुल्ला मुनारे क्या चढ़ा साई ना बैरा होए, जा कारण तू बांग दे दिल ही पीतर जोए। शेख सबूरी बाहरा क्या अज काबे जाए, कबीर जाकी दिल साबत नहीं ता को कहां खुदाए। कबीर अल्लाह की कर बंदगी जे सिमरत दुख जाए, दिल में साई प्रगटै बुझै बलंती नाए। कबीर जोर किए कबीर जोरी किए जुल्म है कहता ना हलाल, दफ्तर लेखा मांगिया तब होएगो कौन हवाल। कबीर खूब खाना खिचरी जा मैं अमृत लोन, हेरा रोटी कारने गला कटावे कौन। कबीर गुर लागा तब जानिए मिटे मोह तन ताप, हर सोग दाजे नहीं तब हर आपे आप। कबीर राम कहन में भेद है ता मैं एक विचार, सोई राम सब कह है सोई कौतकहार। कबीर राम है राम कहो कहबे माहे बबेक, एका ने कह मिल गया एक समाना एक। कबीर जाकर साधना सेवी है हर की सेवा नाहे, ते कर मरहट सारखे पूत बसै तिन माए। कबीर गुंगा हुआ बावरा बैरा हुआ कान, पावो ते पिंगल पया मारिया सदगुरबान। कबीर सदगुर सूर में बाहया बाण जो एक, लागत ही पोए गिर परया प्राकृ जे शेक। कबीर निर्मल बूंदिया कास की पर गई भूम बेकार, बिन संगत यो मान नहीं होए गई पठशार। कबीर निर्मल बूंदिया कास की लीनी पूम में लाए, अनक सियाने पच गए ना निर्वारी जाए। कबीर हज काबे हो जाए था आगे मिलिया खुदाए, साई मुझसे लर परिया तुझे किन फुरमाई गाए। कबीर हज काबे होए होए गया केती बार कबीर, साई मुझ में क्या खता मुखो ना बोले पीर। कबीर जी जो मारे जोर कर कहते है जो हलाल, दफ्तर दई जब कार्ड है होएगा कौन हवाल। कबीर जोर किया सो जो

मुख ते राम समाल, हाथ पाओ कर काम सब, चीत निरंजन नाल। महला पंजवा, कबीरा हमरा को नहीं, हम किसू के नाहे, जिन एहो रचन रचाया तिसी माए समाहे। कबीर की चिड़ियाटा गिर परया, किशु ना आयो हाथ, पीस्त पीस्त चाबिया सोई निभया साथ। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगन करे काहे की कुसलात। हाथ दीप कुए पर है, कबीर लागी प्री सुजान, स्यों बरजै लो गया जान, ता स्यों टूटी क्यों बने जाके जी प्राण। कबीर कोठे मंडप हेत कर, काहे मरो सवार, कार्ज साढ़े तीन हाथ, कहीं ता पौने चार। कबीर जो मैं चितवो ना करे, क्या मेरे चितवे होए, अपना चितव्या हर करे, जो मेरे चेतना होए। महला तीजा, चिंता पे आप कराए सिया, चिंत पे आप पे दे, नानक सो साला ही है, जे सब ना सार करे। महला पंजवा, कबीर राम ना चेते, ओ फिर या लालच माहे, पाप करंता मर गया, औध पुनी खिन माहे। कबीर काया काची कारवी, केवल काची तात, साबत रखे ता राम पाज, नाहे ता बिरठी बात। कबीर केसो केसो कुकिया, ना सोइए आसार, रात दिवस के कुकने, कबहू के सुने पुकार। कबीर काया कजली बन पया, मन कुंचर मैं मंत, अंकस ज्ञान रतन है, खेवट बिरला संत। कबीर राम रतन मुख कोथरी, पारख आगे खोल, कोई आए मिले गो गाहकी, ले गो में गो मोल। कबीर राम नाम जान्यो नहीं, पाल्यो कटक कुटंब, तंदे ही मैं मर गयो, बाहर पई ना बंब। कबीर आखी केरे माटके, पल पल गई बिहाए, मन जंजाल ना छोड़ई, जम दिया दमामा आए। कबीर तारवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग, छाया रूपी साध है, जिन तजया बाद विवाद। कबीर ऐसा बीज बोए, बारह मास फलंत, शीतल छाया गहर फल, पंखी केल करंत। कबीर दाता तरवर दया फल, उपकारी जीवंत, पंखी चले दिसावरी, बिरखा सुभ्र फलंत। कबीर साधु संग प्राप्ति, लिखिया होए ललाट, मुक्त पदार्थ पाई है, ठाक ना या कटकाट। कबीर एक कड़ी आदि करी, आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोष्टे, जो कीने सो लाभ। कबीर भांग माछली सुरा पान, जो जो प्राणी खाहे, तीर्थ व्रत नेम किए, ते सबैर थातल जाहे। नीचे लोहिन कर रहो, ले सजन कट माहे, सब रस खेलो पीसो, किसी लिखावो नाहे। आठ जाम चौ सठ करी, तो निरखत रह जियो, नीचे लोहिन क्यों करो, सब कट देखो पियो। सुन सखी पी मह जियो बसे, जी में बसे के पियो, जियो पियो बूझो नहीं, कट में जियो के पियो। कबीर बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाहे, अर्ज उर्ज के पचमुआ, चारो बेदो माहे। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए, कह कबीर गुर पली बुझाई, कीटी होए कह खाए। कबीर जो तुहे साध ब्रह्म की, शीस काट कर गोए, खेलत खेलत हाल कर, जो किश होए ता होए। कबीर जाओ तुहे साध प्रम की, पाके से ती खेल, काची सरसों पेल कै, ना खल पई ना तेल। ढूंढत डोले अंध गत, अर चिंत नाही संत, कह नामा क्यों पाई है, बिन भगतो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ कै, करे आन की आस, ते नर दोजग जाहेंगे, सत पाखे रविदास। कबीर जाओ ग्रहो करे ता धर्म कर, नाही ता कर बैराग, बैरागी बंधन करे,
ताको बड़ो अपार। श्लोक शेख फरीद के एको अंकार सतगुर प्रसाद। जित दिहाड़े धनवरी साहे ले लिखाए, मलक जे कन्नी सुनी दा मोह दे खाले आए। जिंद ने माणी कड़ी है हड्डा कू कड़काए, साहे लिखे न चलनी जिंदू कू समझाए। जिंद वहुटी मरण वार लै जासी परनाए, अपन हाथी जोल कै कै गल लगे ताए। वालो निकी पुरसलात कन्नी ना सुनी आए,

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद सवैये श्री मुख बाक महला पंजवा आद पुरख करतार करण करण सब आपे सर्ब रहो भरपूर सगल कट रहो ब्यापे व्याप्त देखिए जगत जाने कौन तेरी गत सर्ब की रखिया करे आपे हर पत अविनाशी अवगत।

विचार, जगत पिता है सर्व प्राण को आधार, जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसार, एक जिही क्या बखाना, हां के बल बल बल बल सद बलिहार, अमृत प्रवाह सार अतुल भंडार पार, परै ही ते परै अपरे अपार पर, आपनो पावन कार मंत्र ना दूसरो तार, ओपत परलो एक है निमख तो कार, आन नाही संसार उजियारो निर्मर, कोट प्राप्त जाहे नाम लिए हर हर, जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसार, एक जिह क्या बखाना, हां के बल बल बल बल सद बलिहार, सगल पवन तारे एक थे किए बिस्थारे, पूर रहो सर मैं आप है निरारे, हर गुण नाही अंत पारे जी जंत सब थारे, सगल को दाता एक है अलख मुरारे, आप ही तारन तारे कुदरत है देखारे, वर्ण चिहन नाही मुख नाम सारे, जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसार, एक जिह क्या बखाना, हां के बल बल बल बल सद बलिहार, सर्व गुण निधानं कीमत ना ज्ञान ध्यानं, ऊचे ते ऊचो जानी जय प्रभ तेरो थानं, मन तन तेरो प्राणं एक सूत है जहानं, कौन उपमा देओ बड़े ते बड़ानं, जाने कौन तेरो पेओ अलख्या पार देओ, अकल कला है प्रभ सर्व को तानं, जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसार, एक जिह क्या बखाना, हां के बल बल बल बल सद बलिहार, निरंकार आकार अशल पूर्ण अविनाशी, हर खवंत अनंत रूप निर्मल बेगासी, गुण गावे बेअंत अंत इक तिल नहीं पासी, जा कहो होहे कृपाल सुजन प्रभु तुम्हें मिलासी, तन तन ते तन जन जे कृपाल हर हर पयो, हर गुर नानक जिन परसयो से जन मरण दो थे रहो, सत सत हर सत सत सत्ते सत पणिए, दूसरे अन्न अवर पुरख पौ रतन सुनिए, अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए, जेहे रसन चाखेओ तेहे जन तृप्त गाए, जे ठाकर सो प्रसन्न पयो सतसंग ते प्यार, हर गुरु नानक जिन परसयो तिन सब कुल कियो उधार, सच सभा दीवान सच सच्चे पै तरयो, सच्चा तख्त निवास सच तपावस करयो, सच सिरजियो संसार आपया पुल ना पुलो, रतन नाम अपार कीम न हो पवै अमलो, जे कृपाल होयो गोबिंद सर्व सुख तिन्हू पाए, हर गुरु नानक जिन परसयो ते बौड़ फिर जोन न आए, कवन योग कवन ज्ञान ध्यान कवन बिद उस्तत करिए, सिद्ध साधक ते तीस कोर तिरकीम ना परिए, ब्रह्मादिक संकाद से गुण अंत न पाए, अगाव गयो नहीं जाए पूर सर्व रहो समाए, जे काटी सिलक दयाल प्रभ से जन लगे भगते, हर गुरु नानक जिन परसयो ते इत्युत सदा मुक्ते, प्रभ दाता दातार परयो जाच के कसरना, मिले दान संतरेन जेह लग पौ जल तरना, बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकर पावै, देहो दर्श मन चाओ भगत्यो मन ठहरावै, बलियो चिराग अंधियार मैं सब कल उदरी एक नाम धर्म, प्रगट सगल हर पवन मैं जन नानक गुर पार ब्रह्म, सवैये श्री मुख बाक महला पंजवा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद, काची देह मोह फुन बांधी सठ कठोर कुचील कुग्यानी, तावत परमत रहन नहीं पावत पार ब्रह्म की गत नहीं जानी, जोबन रूप माया मदमाता विचरत बिकल बडो अभमानी, पार तान पारे अपवाद नार निंदा यह मिठी जी माय हितानी, बल बंच शब करत्यो पावा पेक्त संत प्रभ अंतर जामी,
ਸੀਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਸੁਚ ਨਾਸਤ ਆਇਓ ਸਰਨ ਜੀ ਕੇ ਦਾਨੀ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸ੍ਰੀ ਧਰ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਕੀਰਤ ਕਰਨ ਸਰਨ ਮਨ ਮੋਹਨ ਜੋਹਨ ਪਾਪ ਬਿਦਾਰਨ ਕਹੋ ਹਰ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸਵੈ ਬਿਦ ਕੁਲੈ ਸਮੂਹ ਉਦਾਹਰਨ ਸਹੁ ਚਿਤ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਜਨ ਸਤਸੰਗਤ ਪਰਮ ਅੰਧੇਰ ਮੋਹਿਓ ਕਤ ਤਾਉ ਮੂਰਤ ਕਰੀ ਚਸਾ ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਸੰਗ ਲਓ ਹੋਛੋ ਕਾਜ ਅਲਪ ਸੁਖ ਬੰਧਨ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕਹਾਂ ਦੁਖ ਪਾਉ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਤ ਨਾਮ ਭਜ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਰੰਗ ਆਤਮ ਸਿਉ ਰਉ ਰੰਚਕ ਰੇਤ ਖੇਤ ਨਿਰਮਤ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਸਵਾਰ ਧਰੀ ਖਾਨ ਪਾਨ ਸੋਧੇ ਸੁਖ ਪੁੰਚਤ ਸੰਕਟ ਕਾਟ ਬਿਪਤ ਹਰੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਅਰ ਬੰਧਪ ਬੂਜਨ ਕੀ ਸਭ ਸੂਝ ਪਰੀ ਵਰਦਮਾਨ ਹੋਵਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਨਿਤ ਆਵਤ ਨਿਕਟ ਬਿਖਮ ਜਰੀ ਰੇ ਗੁਣਹੀਨ ਦੀਨ ਮਾਇਆ ਕ੍ਰਿਮ ਸਿਮਰ ਸਵਾਮੀ ਏਕ ਕਰੀ ਕਰ ਗੈ ਲਿਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦ ਨਾਨਕ ਕਾਟ ਭਰਮ ਪਰੀ ਰੇ ਮਨ ਮੂਸ ਬਿਲਾ ਮੈਂ ਗਰਬਤ ਕਰਤਬ ਕਰਤ ਮਹਾਮੁਗਨਾ ਸੰਪਤ ਦੋਲ ਚੋਲ ਸੰਗ ਚੂਲਤ ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਪ੍ਰਮਤ ਕੁਗਨਾ ਸੁਤ ਬਣਤਾ ਸਾਜਨ ਸੁਖ ਬੰਧਪ ਤਾਂ ਸਿਓ ਮੋਹ ਬਡਿਓ ਸੋ ਕਨਾ ਬੋਇਓ ਬੀਜ ਅਹੰ ਮਮ ਅੰਕਰ ਬੀਤ ਤਿਉਧ ਕਰਤ ਅਗਨਾ ਮਿਰਤ ਮਜਾਰ ਪਸਾਰ ਮੁਖ ਨਿਰਖਤ ਪੁੰਚਤ ਪੁਖਤ ਪੂਖ ਪੁਖਨਾ ਸਿਮਰ ਗੋਪਾਲ ਦਿਆਲ ਸਤਸੰਗਤ ਨਾਨਕ

है वर्ष एक हो फिर ओ किने नो पर चौलायो कहते है कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो हर नाम छोड़ दूजे लगे तिन के गुणों क्या कहो गुरदय मिलायो पिखिया जिव तू रखे तिव रहो पहर समाज सुना हो ज्ञान है आसन चढ़े आओ धर्म तनख कर गहे हो भगत सीले सर लड़े आओ पह निरपो हरा टल मानो शब्द गुर ने जा गड्डे आओ काम क्रोध लो मोह अपत पंच दूत बेखंडे आओ पलो पुहाल तेजो तना निरपद नाथ नानक बार गुर अमरदास सल पान तैं दल जितो इव युद्ध कर कन हर बूंद बसोरो मावल कुसुम बसंत गणंत नयावै रव सस्करण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्ह जो गावै पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवै सवैये महल्ले चौथे के एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक मन पुरख निरंजन त्यावो गुर प्रसाद हर गुण सदगावो गुण गावत मन होए बिगासा सतगुर पूर जिने की आसा सतगुर से परम पद पायो अब नासी अब गाते आयो तिस भेटे दर दरना चंपै कल सहार तास गुण जंपै जंपो गुण बिमल सुजन जन के रे अमे नाम जा को फुरिया इन सतगुर सेव शब्द रस पाया नाम निरंजन और धरिया हर नाम रस गोविंद गुण गाहक चाहक तत् समत सरे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे छुटत प्रवाह अमे अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया ते पीवै संत करै मन मज्जन पुबजनो सेवा करिया तिन पहु निवार अन पै पादीना शब्द मात्र ते उदर धरे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे सतगुर मत गूढ़ बिमल सत संगत आत्म रंग चलूल पया जागया मन कवल सहज प्रकाशया अपै निरंजन करै लहा सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया तिस प्रसाद वस पंच करे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे अनपौ उन्मान अकल्यव लागी पारस पेटिया सहज करे सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार परे मेटिया जन्मात मरण पौ भागा चित लागा संतोख सरे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे अपर परे पायो अपार हृदय अंतर तारियो दुख पंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारियो सदा चाहे हर पाए प्रेम रस आपे जाने सतगुर कै प्रसाद सहज से तीरंग माने नानक प्रसाद अंगद समात गुर अमर अमर वरतायो गुर रामदास कलुचरै तै अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बसै अमे रस रसन प्रकाशै मिलत सांत उपजै दुरत दूरंतर नासै सुख सागर पायो दिनत हर मग न हुटै संजम सत संतोख सीर सनहु फुटै सतगुर प्रमाण बिदनै सिरयो जग जस तूर बजायो गुर रामदास कलुचरै तै अपै अमर पद पायो जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो नवनिध नाम निधान रिद्ध सिद्ध ता की दासी सह सरोवर मिलियो पुरख भेट्यो अबनासी आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दृढ़ायो गुर रामदास कलुचरै तै हर प्रेम पदार्थ पायो प्रेम भगत प्रवाह प्रीत पुबली ना हुटै सतगुर शब्द अथाह अमे तारा रस गुटै मत माता संतोख पिता सरसै समायो आजोनी संपावयो जगत गुर बचन तरायो आप गात्या गोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कलुचरै तैं जगत उदाहरण पायो
जगत उदाहरण नाम निदान भगत पवतारण अमृत बूंद हर नाम बिसकी बिखै निवारण साहित रोवर फलो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जनवट पागे ते मुक्ते पए सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कलुचर ते शब्द निशान मजायो से सदा सहे शावान संतोख सराय चाओ सदा सीर सन्ना हो सो है गुर शब्द समाचरियो नाम टेक संगाद बो है आजोनियो पालिया माल सदगुर संग निवास गुर रामदास कलुचर तो सह सरोवर वास गुर जिनको सो प्रसन्न नाम हरदय निवास है जिनको गुर सो प्रसन्न दुरत दूर अंतर नास है गुर जिनको सो प्रसन्न मान अभमान निवार है जिनको गुर सो प्रसन्न शब्द लग भव जल तार है परचो प्रमाण गुर पायो तिन सके अथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुक्त सब गुरु लग सतगुर खेमा ताने जुग जूत समाने अनपौ नेजा नाम टेक जित भगत्या गाने गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने एहो राज जोग गुर रामदास तुमहू रस जाने जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ तरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावै एहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बने आवै सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो तारन तरन खिन मात्र जा को दृष्ट तार है शब्द रिद विचार है काम क्रोध खोवै जियो जियन सवन दाता अगम ज्ञान बिख्याता एहन इस ध्यान तावै पलक ना सोवै जियो जा को देख तिर जावै नाम सो निदान पावै गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल धोवै जियो सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो धर्म कर्म पूरै सतगुर पाई है जाकी सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचै शब्द सार एक लिव लाई है फुन जानै को तेरा अपार निरपौ निरंकार अकथ कथनहार तुझै बुझाई है परम पूले संसार छुट्टो जूनी संगार जम को ना डंड काल गुरमत त्याई है मन प्राणी मुक्त विचार अहनिस जप धर्म करम पूरे सतगुर पाई है हम बल बल जाऊ सतगुर साचे नाम पर कवन उपमा देओ कवन सेवा सिरेओ एक मुख रसना रसो जुग जोर कर फुन मन बच कर्म जान।